0: अल्लाह के नाम से जो बे इंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। यकीनन फलाह पाई है ईमान लाने वालों ने जो अपनी नमाज में खुशू इख्तियार करते हैं, लघवियात से दूर रहते हैं, जकात के तरीके पर आमिल होते हैं, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं सिवाय अपनी बीवियों के और उन औरतों के जो उनकी मिलके यमीन में हों कि उन पर महफूज न रखने में वो काबिले मुलामत नहीं हैं। अलबत्ता जो उसके अलावा कुछ और चाहें वही ज्यादती करने वाले हैं, अपनी अमानतों और अपने अहदो पैमान का पास रखते हैं और अपनी नमाजों की मुहाफिजत करते हैं, यही लोग वो वारिस हैं जो मीरास में फिरदौस पाएंगे और उसमें हमेशा रहेंगे। हमने इंसान को मट्टी के सत से बनाया, फिर उसे एक महफूज जगह टपकी हुई बूंद में तब्दील किया, फिर उस बूंद को लोथड़े की शक्ल दी, फिर लोथड़े को बोटी बना दिया, फिर बोटी की हड्डियां बनाई, फिर हड्डियों पर गोश्त चढ़ाया, फिर उसे एक दूसरी ही मखलूक बना खड़ा किया। बस बड़ा ही बाबरकत है अल्लाह सब कारीगरों से अच्छा कारीगर। फिर उसके बाद तुमको जरूर मरना है, फिर कयामत के रोज यकीनन तुम उठाए जाओगे और तुम्हारे ऊपर हमने 7 रास्ते बनाए। तखलीक के काम से हम कुछ नाबलद न थे और आसमान से हमने ठीक हिसाब के मुताबिक एक खास मकदार में पानी उतारा और उसको जमीन में ठहरा दिया। हम उसे जिस तरह चाहें गायब कर सकते हैं। फिर उस पानी के जरिए हमने तुम्हारे लिए खजूर और अंगूर के बाग पैदा कर दिए। तुम्हारे लिए इन बागों में बहुत से लजीज फल हैं और उनसे तुम रोजी हासिल करते हो। और वो दरख्त भी हमने पैदा किया जो तूर सीना से निकलता है, तेल भी लिए हुए उगता है और खाने वालों के लिए सालन भी। और हकीकत यह है कि तुम्हारे लिए मवेशियों में भी एक सबक है, उनके पेटों में जो कुछ है उसी में से एक चीज यानी दूध हम तुम्हें पिलाते हैं और तुम्हारे लिए उनमें बहुत से दूसरे फायदे भी हैं। उनको तुम खाते हो और उन पर और कश्तियों पर सवार भी किए जाते हो। सदकल्लाहुल अज़ीम।
1: उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामीन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में फजर की अजान का वक्त हो गया है। अल्लाह

من المقبول فنهني ومن المطرود فنعزي.

فلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी
2: दिल को है नूरत पानू मीन द्रोनिंग के बाद पोखलू

0: आइटम्स का ही इस्तेमाल करें। हमेशा किसी प्रोफेशनल इलेक्ट्रीशियन से मशवरा लें। एसी से पानी टपकता है, वहां स्विच या सॉकेट लगाने से बिजली का करंट या शॉर्ट सर्किट हो सकता है। याद रखें, हमेशा किसी एक्सपर्ट इलेक्ट्रीशियन से इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस करवाएं। अगर एसी से अजीब स्मेल, आवाज या ज्यादा गर्म हवा आ रही हो तो फौरन उसे बंद करें और चेक करवाएं। FM 107 कहता है कि आपकी आगाही और एहतियात ना सिर्फ आपकी बल्कि आपके घर वालों की जिंदगी बचा सकता है।
1: Values are values. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं नाजिया आपके साथ एंड वेलकम टू द सेगमेंट कॉल्ड आवर वैल्यूज। दोस्तों, आज का जो सेगमेंट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है फॉर द सॉलिड रीजन, क्योंकि आज हम पहचानने की कोशिश कर रहे हैं अच्छे वाले इंसान को। मेरा मतलब है कि आज का जो टॉपिक है वो है, क्या एक अच्छा इंसान अपने एक्शन से पहचाना जाता है या फिर अपने इंटेंशन से पहचाना जाता है। देखिए, सवाल अपने आप में बहुत ही दिलचस्प है। ये सवाल इंसानी जिंदगी का सबसे पुराना और गहरा सवाल भी है। क्या एक अच्छा इंसान वो होता है जिसके इरादे साफ हों, या वो जिसके अमल दूसरों के लिए अच्छाई लेकर आए। अक्सर हमने ये कहते हुए सुना है कि नीयत साफ होनी चाहिए, और कभी ये भी सुना है कि जी आपका काम ही बोलता है। अब हकीकत ये है कि दोनों अपनी जगह अहम है, मगर इंसानी सोसाइटी में इन दोनों का रिश्ता बड़ा ही नाजुक और गहरा है। इंसान अपनी जिंदगी का हर कदम किसी न किसी नियत के साथ उठाता है। इंटेंशंस हमारे दिल और जहन में जन्म लेते हैं। जब कोई मदद का इरादा करता है, जब कोई सच बोलने का फैसला करता है, जब कोई नुकसान न पहुंचाने का सोचता है, ये सब नियत के अमाल है। बगैर अच्छी नियत के कोई अच्छा काम सस्टेन्ड हो ही नहीं सकता। अगर नियत में ही खुदगर्जी, शोहरत या फायदा छुपा हो तो अच्छा लगने वाला अमल भी धीरे धीरे अपनी असल शक्ल दिखा देता है। लेकिन यहाँ एक और सच भी है, और वो सच है कि सोसाइटी आपकी नियत तो नहीं देखती, उसे आपका सिर्फ और सिर्फ अमल नजर आता है। दुनिया हमारे दिल का हाल नहीं जानती, बल्कि हमारा रवैया हमारे फैसलों और एक्शंस के जरिए हमें जज करती है। अगर कोई शख्स ये कहे कि उसकी नीयत बहुत अच्छी थी लेकिन उसके अमल से दूसरों को नुकसान पहुंचा, तो उसकी ऐसी नीयत का क्या फायदा। इसलिए कहा जाता है कि गुड इंटेंशंस विदाउट राइट एक्शंस आर इनकम्प्लीट। एक मिसाल सोचिए, अगर कोई शख्स कहता है कि वो गरीबों के लिए दिल में दर्द रखता है मगर कभी प्रैक्टिकल जिंदगी में किसी की मदद नहीं करता, तो क्या उसे अच्छा इंसान कहा जा सकता है। इसी तरह अगर कोई शख्स मदद करता है सिर्फ अपना नाम बनाने के लिए और उसका अमल फायदा पहुंचाता है, मगर उसकी नीयत सवाल के दायरे में आ जाती है। यहाँ पर सवाल उठता है कि इंसान अच्छाई का मेयार जो तय कर रहा है, क्या वो मेयार वाकई होना चाहिए। देखिए, असल में अच्छा इंसान बनना एक बैलेंस का नाम है, नियत और अमल के दरमियान। नियत कदम की बुनियाद है और अमल उस कदम का असर। अगर नियत अच्छी हो और अमल गलत हो जाए तो भी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। इसी तरह अगर अमल ठीक हो लेकिन नियत सिर्फ फायदे पर मबनी हो तो वो अमल अपनी रूह खो देता है। जिंदगी में बहुत दफा ऐसा होता है कि हम कहते हैं मेरा इरादा गलत नहीं था, माई इंटेंशंस वर क्लियर, या माई इंटेंशंस वर गुड। ये जुमला अक्सर अपनी गलतियों का बोझ हल्का करने के लिए बोला जाता है, मगर मैच्योरिटी का मतलब ये होता है कि हम अपनी नियत के साथ साथ अपने एक्शंस का भी जायजा लें। अगर हमारे अमल से किसी को दुख पहुंचा तो सिर्फ नियत का सहारा लेना काफी नहीं होता। अच्छा इंसान वही है जो अपनी गलती तस्लीम करे और उसे ठीक करने की कोशिश करे। मजहब, एथिक्स और फिलॉसफी ये तमाम इस बात पर इत्तेफाक रखती हैं, नियत और अमल को अलग नहीं किया जा सकता। दिल का साफ होना जरूरी है लेकिन हाथ का साफ होना भी उतना जरूरी है। इंसानी रिश्ते एक्शंस पर

0: बहुत ही अजीब ज़बान है शेख मोहतरम। कभी कभी हरकत में चेंजिंग आ गई, तब्दीली आ गई, गलती से इंसान ने पेश को कसरा बना दिया, ओह माना एकदम एकदम उल्टा, माना एकदम गलत, मतलब उसमें बदली बहुत आती है इससे। शेख मोहतरम देखिए अभी ये जैसे अन्नल्लाह बरीउ मिनल मुश्रिकीन व रसूलह, अगर खुदा ना खास्ता रसूलह में लाम के नीचे इंसान ने लाम के ऊपर जो दम्मा है इसको चेंज करके नीचे फतह से इसको पढ़ लिया, ओह माना एकदम चेंज, एकदम बदल बदल गया माना। तो इसीलिए एहतियात ज़्यादा करना चाहिए। हमारे सामीन कराम से यही अर्ज़ करूँगा मैं कि आप हर दिन थोड़ा टाइम निकाल कर आपकी जो मस्जिद है उसमें इमाम या मुअज्जिन के पास बैठ कर 10 मिनट क्यों ना हो, कम अज़ कम शेख मोहतरम ये नमाज के जो अल्फाज हैं और जो छोटे छोटी जो सूरतें हैं कुछ इसको सही कर लें इंसान।
1: बस उसमें चूँकि वो ज़बान नहीं जानते हैं, वाकिफ नहीं है और उनको पता नहीं कि मीनिंग किस तरह तब्दील हो रहा है, इस तरह तवज्जो नहीं है, तो उस बिना पर वो गलती का इरतकाब उस पर ज़्यादा उन्हें तवज्जो देने की ज़रूरत होती। लेकिन जहाँ तक ज़बान की बात है ना, तो ये सिर्फ अरबी नहीं है शेख साहब, दूसरी ज़बानों में भी ये हाल है। आप इस किसी ज़बान का मतलब उर्दू है, इसी में गुफ्तगू करते एक दफा फ़ौरन मैंने कहा कि जी हमारे उर्दू में भी ऐसा होता है, अगर आप किसी ज़बर को देर पढ़ देंगे तो माने बदल जाएंगे। तो कहते हैं कोई मिसाल है, मैंने कहा हाँ पैर है ना, आप पैर को पीर पढ़ दें, पीर सब पैरों के नीचे आ जाएंगे,
0: बिल्कुल
1: कौन इसको कबूल करेगा। तो सिर्फ ज़बर देर का फ़र्क है ना, पैर ज़बर पढ़ेंगे तो पैर है वो पाँव है, और पीर है नीचे देर है तो वो एक शख्सियत जो कि जिसकी कई सिफात होती हैं और वो
0: भी पुकारते हैं।
1: जी जी तो फर्क बिल्कुल पड़ता है हर जुबान में। ये आप फारसी बोलते हैं, आपके यहाँ
0: बिल्कुल है,
1: वहाँ पर भी अल्फाज में तब्दीली हर इसको जैन या जबर या आ ए फर्क से उसको भी नहीं बदल देंगे।
0: कम अज कम वो चीज़ों से मुराद नहीं होगी या सुनने वाला नहीं समझेगा कि आपने क्या कहा, मकसद क्या है आपका।
1: सही
0: शंबा जो है शेख, हम हफ्ते का जो दिन है उसको शंबा पुकारते हैं।
1: जी जी।
0: तो एक बार हमारा एक उस्ताद जो है वो इसके बारे में ये बात आ गई, किसी हमारे अरब भाई ने ये दिने जो है इसके नाम याद किए थे फारसी में, तो फिर उसको इस शेख को पूछ रहे थे कि शनबा
1: जब हम कॉलेज में एक प्रोफेसर थे जो हमें फारसी पढ़ाते थे, उन्होंने ये वाक्य बताया था, कहते हैं कि फारसी जबान में हरूफ की जो अदायगी उसमें तब्दीली, दो हरूफ ऐसे हैं कि उनको उलट देते हैं वो लोग, और उसमें जैसे तब्दीली मिसाल क्या दी थी उन्होंने कि अच्छा ये जी अब ठीक कर लीजिए, चलिए उन्होंने मिसाल दी थी कि हम जिस तरह काफ और गैन, काफ को गैन पढ़ देते हैं, गैन को काफ पढ़ देते हैं, और ये इफेक्ट भी है। जैसे हमारे यहाँ आका का लफ्ज़ है, आका अब काफ को गैन पढ़ के आगा बनाया, अब वो आगा हमारे यहाँ बड़े भाई को भी कहते हैं, आगा एक बड़ी शख्सियत को भी कहते हैं वो भी, और आका भी उसी को कहते हैं, बड़े भाई को भी आका कहते हैं, तो है असल में आका, उसको आगा किया और वो इस तरह बयान करना शुरू कर दिया। और उसमें फिर एक लतीफ़ा भी उन्होंने सुनाया था वो भी, लेकिन वो उस लतीफे से सिर्फ वही लोग मुस्तफ़ीद हो पाएंगे जो कि अरबी जानते हैं। आप तो फ़ौरन समझ जाएंगे, लेकिन लोग ऐसे ही फिर कहेंगे ये पता नहीं क्या इसने लतीफ़ा बना दिया, है बड़ा दिलचस्प लतीफ़ा था। और उन्होंने काफ और गैन की मिसाल दे के वो नहीं कहा कि आप लोग क्यों इस तरह बदलते हैं, तो उन्होंने क्या कहा, अस्तग़फिरुल्लाह मय्यकूल ज़ालिक,
0: फिर उसी चीज़ में वापस
1: वही गलती है दोबारा हो गया। और ये सारी गुफ्तगू सामिन इस बिना पर हमें करने का मौका मिल गया कि कोई और कॉल आई नहीं थी, और अगले हफ्ते इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। उस वक्त तक ज़रा पहले से जहन में रखिए कि अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो उसे आपके पास नोट कर लें, और 4 बजे आइंदा जुमे के रोज़ आपसे बेइज़्निल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। उस वक्त तक लिए शेख साहब, शेख मोहम्मद मूसा साहब और सैफ रहमान आपसे इजाज़त चाहेंगे, और मिल्लत के हालात, उम्मत के हालात जो भी हैं आपके सामने हैं, और ऐसे

0: FM 107 presents Your Health Matter. Your Health Matter with RJ Shruti.
1: वेल आज हम बात कर रहे हैं फाइंडिंग इनर पीस की. इनर पीस का मतलब ये नहीं है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होगी. प्रॉब्लम्स तो होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है, डेडलाइंस भी होती है. वेल इनर पीस का मतलब होता है कि उन सब के बीच अपने आप को बैलेंस करना. हम अक्सर सोचते हैं पीस तब मिलेगा जब सब कुछ सेटल हो जाएगा, बस मेरा ये काम हो जाए उसके बाद मुझे सुकून मिलेगा, वो काम हो जाए उसके बाद सुकून मिलेगा. बट ये गलत है. पीस का वेट मत कीजिए, क्योंकि काम तो आपके कभी खत्म होगे ही नहीं. इनर पीस का कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक डेली प्रैक्टिस होती है. जब हम हर चीज पर रिएक्ट करते हैं, जब हर थॉट को सीरियसली लेते हैं, तो माइंड थक जाता है, और जब माइंड थकता है बॉडी भी रेस्टलेस हो जाती है. इसीलिए इनर पीस का पहला स्टेप होता है पॉज. एक छोटा सा पॉज, एक डीप ब्रेथ, बस इतना ही. सांस लेने का तरीका आपके नर्वस सिस्टम को सिग्नल देता है कि अब सब ठीक है. जब हम धीरे सांस लेते हैं, हार्ट रेट काम होता है, मसल्स रिलैक्स होते हैं, और थॉट्स थोड़े से स्लो डाउन हो जाते हैं. इनर पीस का दूसरा स्टेप है एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा हल्का करना. वेल, हर चीज परफेक्ट तो नहीं हो सकती, हर दिन प्रोडक्टिव तो नहीं हो सकता, और हर मूड पॉजिटिव नहीं हो सकता. तो जब हम इम्पॉसिबल एक्सपेक्टेशंस रखते हैं

0: फ्रस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली आता है और इनर पीस हमारा खराब होने लगता है। इसीलिए कभी कभी पीस साइलेंस में मिलता है और कभी नेचर के बीच, और कभी किसी अपने के साथ बिना बात करे जस्ट बैठे रहने वाला पीस। कभी कभी पीस सिर्फ इतना होता है कि आज हम खुद को जज ना करें कि मैं कैसी दिख रही हूँ, मेरा वेट पुट ऑन हो गया या क्या मैंने काम गलत कर दिया। इनर पीस का कनेक्शन हेल्थ से बहुत ज्यादा गहरा होता है। जब हम अंदर से शांत होते हैं तो हमारी स्लीप साइकिल ऑटोमेटिकली बेटर होती है, डाइजेशन इम्प्रूव होता है और इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होती है। मतलब पीस सिर्फ फीलिंग नहीं, हीलिंग होती है। तो आज एक सॉफ्ट रिमाइंडर, पीस ढूंढने के लिए लाइफ को परफेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, बस अपने साथ थोड़ा जेंटल होने की जरूरत है। हर रोज थोड़ा सा वक्त अपने लिए निकालिए, जो मैं हर बार कहती हूँ, बिना फोन के, बिना किसी शोर शराबे के और बिना किसी प्रेशर के। और जब इनर पीस फील होगा तो जिंदगी और थोड़ी सी लाइट और मैनेजेबल लगने लगेगी। एंड याद रखिए, योर हेल्थ मैटर।
1: FM 107 presents Your Health Matter with RJ Shruti.
2: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से देसी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.
1: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। स्ट्रे डॉग्स के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर्स ने कुछ खास प्रोटोकॉल्स रखे हैं जिन्हें फॉलो करना बेहद जरूरी है। जैसे अगर अग्रेसिव स्ट्रे डॉग से आपका सामना होता है तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर मशवरा देती है कि काम रहें, डायरेक्ट आई कॉन्टेक्ट से बचें और पुलिस K9 सेक्शन को 2346555 पर कॉल करें। इसके अलावा डेंजरस एनिमल्स के लिए है लॉ नंबर 10 ऑफ 2019, जिसके मुताबिक डेंजरस डॉग्स जैसे रॉटवीलर्स, डोबरमैन वगैरह या वाइल्ड कैट्स और दूसरे डेंजरस पेट्स की रजिस्ट्री करवाना बेहद जरूरी है। नॉन कंप्लायंस पर 1,00,000 रियाल तक का फाइन हो सकता है। इसके अलावा इंपोर्टिंग पेट्स के लिए भी मिनिस्ट्री ऑफ म्यूनिसिपैलिटी एनिमल रिसोर्सेज से वैलिड इंपोर्ट परमिट लेना जरूरी है। साथ ही वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और माइक्रोचिप भी चाहिए।
2: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
3: आज ही राब्ता करें
2: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
4: Values are values. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं नाजिया आपके साथ एंड वेलकम टू द सेगमेंट कॉल्ड आर वैल्यूज। दोस्तों एक कोट है, बड़ा ही कमाल का, वो पहनने वाला कोट सूट नहीं है, एक कोटेशन की बात कर रही हूं। बड़ा ही पावरफुल मैसेज देता हुआ है ये। ये कुछ इस तरह से है, द मोस्ट इफेक्टिव वे टू डू इट इज टू डू इट। ये जो कोट सुनने में जितना सिंपल लगता है ना, इसे देखा जाए तो एक्चुअल में इसके अंदर जो पावर है, जो गहरी बात है, जो प्रैक्टिकल अप्रोच है, उसे समझ लिया जाए तो जिंदगी हम सब की कितनी आसान हो जाए। द मोस्ट इफेक्टिव वे टू डू इट इज टू डू इट। असल में हमें ये याद दिलाती है लाइन कि जिंदगी में अक्सर हम ज्यादा सोचते रहते हैं, ज्यादा प्लान बना लेते हैं, मगर एक्शन लेने में देर कर देते हैं, और यहाँ पर ज्यादा लोग रुक जाते हैं। हम सब के लिए जहन में आइडियाज होते हैं, कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है, कोई

लेकिन अक्सर हम कहते हैं कल शुरू करेंगे, जब टाइम मिलेगा, जब रेडी हो जाऊंगा। ये जो वर्ड कल नहीं जब है, ये अक्सर कभी नहीं आता। और इस कोट का सीधा सा मैसेज भी ये सोचने पर हमें मजबूर करता है कि प्लानिंग तो जरूरी है, सोचना भी जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है शुरू करना आज के आज। इस दुनिया में कोई भी काम परफेक्ट प्लानिंग के साथ शुरू हो ही नहीं सकता। जो लोग आज सक्सेसफुल नजर आते हैं, उन्होंने भी पहले इम्परफेक्ट स्टेप्स लिए, लेकिन उनकी खास बात ये थी कि उन्होंने वेट नहीं किया, स्टेप्स लिए। उन्होंने शुरू किया, सीखा, गलतियां की, फिर इम्प्रूव किया। एक्शन लेने से ही लर्निंग होती है, सिर्फ सोचने से नहीं। अक्सर हमारी सबसे बड़ी जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन जो होता है वो कौन है? नहीं, आपके रिश्तेदार नहीं, और अगर आप बहू हैं तो सास भी नहीं। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका फियर होता है, फेलियर का डर। दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो ये चाहे कि जी मैं इस चीज में पार्टिसिपेट करूंगा क्योंकि मुझे फेल होना अच्छा लगता है। नहीं, हर इंसान को ना तारीफ सुनना बड़ा अच्छा लगता है, उसे सेलिब्रेटेड फील करना बहुत अच्छा लगता है। फेलियर का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर, या ये डर कि मैं इनफ नहीं हूँ, या आज मैं तैयार नहीं हूँ, या अभी मैं प्रिपेयर नहीं हूँ, और बस डर के बाद डर के बाद डर। ये जो लाइन है ये हमें ये समझाती है कि फियर को खत्म करने का सबसे इफेक्टिव तरीका एक्शन ही है। जब हम कोई काम करना शुरू कर देते हैं, डर धीरे धीरे कम होने लगता है। कॉन्फिडेंस प्लानिंग से नहीं आता, प्रैक्टिस से आता है। इसी तरह प्रोकेस्टिनेशन भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। हम काम पोस्टपोन करते रहते हैं, खुद को एक्सक्यूजेस देते रहते हैं, लेकिन सच ये है कि

मूव करने लगती हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि मोमेंटम एक्शन से पैदा होता है, मोटिवेशन से नहीं। इस लाइन का एक और पावरफुल पहलू भी है दोस्तों, और ये है परफेक्शनिज्म को चैलेंज करना। बहुत से लोग इसलिए काम शुरू नहीं करते क्योंकि वो परफेक्ट रिजल्ट्स चाहते हैं, लेकिन परफेक्शन पहले दिन तो नहीं होता, परफेक्शन जर्नी के दौरान आता है। अगर आप वेट करते रहे कि सब कुछ परफेक्ट हो जाए, तो मुमकिन है कि आप कभी स्टार्ट ही ना कर पाए। इसीलिए सबसे इफेक्टिव तरीका ये है कि जो है जैसा है उसी के साथ स्टार्ट करो। प्रोफेशनल लाइफ में ये भी कोड बहुत अप्लाई होता है। स्किल्स डेवलप करने के लिए, रिलेशनशिप सीखने के लिए।

0: लिए। बुक्स पढ़ना काफी नहीं है, समझना भी जरूरी है। जब तक हम रियल सॉल्यूशंस में काम नहीं करते, हम ग्रो नहीं करते। एक्शन ही एक्सपीरियंस लाता है और एक्सपीरियंस विजडम। पर्सनल लाइफ में भी ये बात बिल्कुल सही बैठती है। अच्छा इंसान बनना हो, रिश्ते इंप्रूव करना हो, हेल्थ का ख्याल रखना हो, सिर्फ नियत करना काफी तो नहीं है ना। जब तक हम प्रैक्टिकल स्टेप्स ना ले कुछ चेंज हो पाएगा? शायद कभी भी नहीं। चाहे वो एक ऑनेस्ट कन्वर्सेशन हो, एक अपॉलॉजी हो, एक हेल्दी हैबिट हो, डू इट नाउ ही असली फॉर्मूला है। इस लाइन की ब्यूटी ये है कि ये हमें ओवरवेल्म नहीं करती, ये हमें ये नहीं कहती कि सब कुछ एक दिन में कर लो, बल्कि ये हमें कहती है कि बस स्टार्ट तो करो, छोटा सा कदम तो लो, क्योंकि छोटी शुरुआत ही बड़ी चेंज की बुनियाद है। आखिर में जाते जाते बस यही कहा जा सकता है कि जिंदगी उन लोगों के लिए बदलती है जो सोच से बाहर निकल कर अमल में आते हैं। आइडियाज बहुत लोगों के पास है, लेकिन उन्हें रियलिटी में बदलने वाले लोग बहुत कम हैं। अगर आप किसी चीज को सच में हासिल करना चाहते हैं, तो सबसे इफेक्टिव और सबसे सिंपल और सबसे पावरफुल तरीका क्या है? सोचना कम, करना शुरू। द मोस्ट इफेक्टिव वे टू डू इट इज टू डू इट। चलिए, मैंने तो कर लिया, अब आपकी बारी है कि आप क्या करने वाले हैं। फिलहाल मैं आपसे लेती हूँ यहाँ पर इजाजत। स्वादे के साथ के नए सेगमेंट में एक और नए इंस्पायरिंग से टॉपिक पर हम बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्पोर्ट्स हाइलाइट्स में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद अमीन और आज हम बात करेंगे एक स्टार टेनिस प्लेयर के बारे में, एलेना रिबाकिना। जी हाँ दोस्तों, एलेना रिबाकिना आज के दौर की उन टेनिस स्टार्स में से एक हैं जिन्होंने अपनी कंसिस्टेंसी और पावरफुल गेम से दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई। कजाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने वाली रिबाकिना ने अपनी मेहनत से एलिट लेवल पर अपनी जगह मजबूत की। अगर उनकी करंट फॉर्म की बात की जाए तो वो इस वक्त WTA रैंकिंग्स में वर्ल्ड नंबर 2 पर हैं, जो उनके करियर का हाईएस्ट लेवल भी रहा है। उनकी सबसे बड़ी कामयाबी ग्रैंड स्लैम स्टेज पर आई, जहां वो अब तक 2 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स जीत चुकी हैं। पहला विंबलडन चैंपियनशिप 2022 में और दूसरा 2026 में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतकर। रिबाकिना का प्लेइंग स्टाइल दोस्तों थोड़ा एग्रेसिव है। उनका पावरफुल सर्व और स्ट्रॉन्ग बेसलाइन गेम उन्हें बाकी प्लेयर से अलग बनाता है। वो प्रेशर मोमेंट्स में भी बहुत काम रहती हैं, जो उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। आज वो विमेंस टेनिस की टॉप कंटेंडर्स में शामिल है दोस्तों, और हर ग्रैंड स्लैम के टॉप लिस्ट में उनका नाम होता है। इंजरीज और टफ कंपटीशन के बावजूद उन्होंने बार बार प्रूव किया है कि वो हाईएस्ट लेवल पर कम्पीट कर सकती हैं। एलेना रिबाकिना दोस्तों सिर्फ एक चैंपियन नहीं, बल्कि एक मॉडर्न डे टेनिस फोर्स हैं, जो हर मैच में डोमिनेंस और कंपोजर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन दिखाती हैं। उम्मीद है आपको आज का ये स्पोर्ट्स हाइलाइट्स पसंद आया होगा। अगली बार एक और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ हाजिर होते हैं। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी। FM 107 पेश करते हैं प्रोग्राम
2: फ्रॉड अवेयरनेस।
3: आजकल इतने सारे OTP प्लेटफॉर्म्स भी आ चुके हैं जिसमें आप सब सब्सक्राइब करके रखते हैं, तो यहीं से एक और स्कैम आता है, सब्सक्रिप्शन स्कैम। आपको ईमेल या मैसेज आता है, योर सब्सक्रिप्शन एक्सपायर्स टुडे, प्लीज पे नाउ, और लिंक वहीं पे होती है। बस आपको लगता है वो ये सब्सक्रिप्शन तो इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, चलो कर देते हैं। फेक ईमेल्स आपके फेमस पॉपुलर OTT प्लेटफॉर्म्स या एंटीवायरस के नाम पे आती है, लिंक पे क्लिक करते हैं, सारी डिटेल्स भरते हैं और पेमेंट फेक हो जाती है। तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन रिन्यू करना है तो वो सिर्फ ऑफिशियल ऐप से ही रिन्यू होता है, ईमेल के लिंक से नहीं। तो भाई आप खुद ही अपने ऐप में जाके चेक कर सकते हैं, ऐसे किसी ईमेल पे भरोसा ना करें, क्योंकि ईमेल इतने रियल दिखते हैं जितने रियल कंपनी वाले नहीं करते, तो कोई भी धोखा खा सकता है।
2: सतर्क रहे, सावधान रहे, फ्रॉड अवेयरनेस
1: ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: Absolute Cinema.
2: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मर्तबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं। पर डोंट वरी, मैं हूं ना। भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है एफएम 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा।
3: भाई देखो, साफ बात है, आज का रिव्यू करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूं, गेट ओवर हियर। अभी भी नहीं बोल पाया उसके तरह, बट आज जो समझ गए वो समझ गए। ओनली गेमर्स एंड इस मूवी के सबसे बड़े फैन समझ पाएंगे कि आज कौन सी मूवी का रिव्यू हो रहा है। आई एम सो एक्साइटेड। मेरे अंदर जो एक वो 15-16 साल का बच्चा है वो ऐसे चहक रहा है जिसकी हद नहीं। सो वेलकम टू रिव्यू ऑफ द वीक। मैं हूं दुहा वाला कबीर, एफ 107 पे एंड रोलिंग। तो आज का रिव्यू ऑफ द वीक उस मूवी का है जिसकी वजह से गेमर्स भी एक्साइटेड हैं और इस मूवी के फैंस भी एक्साइटेड हैं, और मैं भाई बता नहीं सकता, मतलब मैं ऐसा हो रहा हूँ ना अभी कि बस मैं उछल जाऊँ सीट से और खड़े होके इस पूरी रिकॉर्डिंग को करूँ मैं, पर मैं बैठा हुआ हूँ मजबूरी में, मुझे इतने सारे डायलॉग जहन में आ रहे हैं, आई कैन नॉट इवन टेल यू। इस मूवी जिसके बारे में बात करने वाला हूँ मैं, आई डू नॉट थिंक कि इससे बढ़िया थीम म्यूजिक किसी और का नेम बन, मैं कॉम्पिटिशन करने को तैयार हूँ, उस पर लड़ लूंगा मैं। इससे बढ़िया थीम सॉन्ग किसी मूवी का आज तक हुआ ही नहीं।

जो है वो है, कोई टक्कर है, कोई नहीं टक्कर में। आज रिव्यू हम करने जा रहे हैं मॉर्टल कॉम्बैट 2 का, इसलिए मैंने स्कॉर्पियन का डायलॉग मारा था, जस्ट फॉर द रेफरेंस, जिन्हें नहीं पता वो था गेट ओवर हियर। तो ये जो डायलॉग है स्कॉर्पियन का, एंड ऑल्सो माई फेवरेट कैरेक्टर, बदलता रहता लेकिन या सो रिव्यू ऑफ द वीक में आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं मॉर्टल कॉम्बैट 2 का। एंड देखो ये मूवी ऐसी है कि इससे पहले मैं मूवी की बात करूँ, वैसे तो इससे पहले भी बनी है, अच्छी बनी थी वो भी अच्छी थी, इससे पहली वाली भी थोड़ी ठीक थी, पर जो मेन थी बहुत ही बढ़िया थी। इसके कैरेक्टर्स बाप रे बाप क्या क्या है। एंड इफ यू हैव प्लेड द मॉर्टल कॉम्बैट गेम्स, अगर कोई गेमर मुझे सुन रहा है जिसने मॉर्टल कॉम्बैट खेला है, वो जानता है कि इसमें कितनी ब्रूटैलिटी है भाई, अलग लेवल का कॉन्सेप्ट है ये। एंड उसको पर्दे पे उतारना इज जस्ट अमेजिंग। इस मूवी में भी रेलम है, बेसिकली दो अलग दुनिया होती है, अर्थ रेलम के फाइटर्स हैं और एक तरफ जो है डेंजरस टूर्नामेंट पार्टिसिपेट करने वाले लोग हैं जिनका मुकाबला है शाओकान से और उनकी आर्मी। सो बेसिकली दो अलग किस्म की टाइमलाइंस हैं, जगहें हैं, रेलम्स हैं, एंड उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होगी, पर मैं वो कॉम्प्लेक्सिटी अगर बताने लग गया तो फिर मुझे 2 घंटे और लगेंगे और वो मैं करना नहीं चाहता। बट नॉनदलेस इफ यू हैव सीन मॉर्टल कॉम्बैट, नहीं देखिए क्या, अरे पहले आप मॉर्टल कॉम्बैट पहली वाली देखिएगा, ठीक है, ये रिव्यू सुन के आपका दूसरा देखने का मन इंशाल्लाह हो ही जाएगा।

फाइटिंग सीन्स कोरियोग्राफी की गई है। पिछली मूवी के लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट था वो यही था कि टूर्नामेंट प्रॉपरली शो नहीं हुआ, ये कॉम्प्लीमेंट और कॉमेंट भी था।

0: मैंने सीक्वल्स में मेकर्स ने फैंस की बात सुन ली, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं ऐसे मेकर्स, बड़े ही क्यूटी पटूटी होते हैं जो अपने फैंस की सुन लेते हैं, एंड दे फाइनली हर्ड आवर ट्रू स्टोरी, एंड उन्होंने जाके इस पूरी मूवी में टूर्नामेंट भर दिया भाई, पूरा का पूरा एक्सपीरियंस। तो मूवी की सबसे अच्छी बात, बहुत फास्ट पेसिंग है एंड आई लव्ड इट, थैंक यू सो मच मॉर्टल कॉम्बैट की मेकर्स, एंटरटेनिंग सीन्स है भाई, और वो डायलॉग्स जो काफी डार्क, काफी पंची एंड आपको हंसाने वाले, तो कुछ रेफरेंसेस हैं, पर अगर कोई नए तरीके से भी देखेगा, he or she will love it.
1: You want to know what makes a hero? It's not destiny. It's not something you're born with. It's searching for greatness.
2: Johnny Cage, you have been chosen for Mortal Kombat.
1: Then realizing you've had it in you this entire time.
0: फुल फैन सर्विस की गई है, लो भाई तुमको क्या चाहिए, ये लो, एवरीथिंग इज देयर, मगर कुछ नेगेटिविटी है, कुछ है, पहली बात तो वही है कि स्टोरी कभी कभी थोड़ी सी इधर उधर निकल जाती है जोश में आके, जो कि थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है बीच बीच में, स्पेशली इफ यू वॉचिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड कुछ कैरेक्टर्स को काफी कम स्क्रीन टाइम मिला है, मतलब मेन कैरेक्टर्स को कम टाइम मिला, ये तो गलत बात है, क्योंकि जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनको थोड़ा सा ज्यादा भाव देने की जरूरत थी, एंड मुझे लगा भी था ये लोग देंगे, पर आई डोंट नो, इट्स देयर विश, ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है ये, है ना, पर थोड़ी बहुत तो है। अब जरा मूवी के कैरेक्टर्स की एक्टिंग के बारे में बात कर लेते हैं।
3: Whoa! I really don't feel comfortable hitting a girl.
4: Don't worry. You won't.
3: Yo! Send me back. I want to go back.
0: The main character of this movie, Mortal Kombat. सबसे पहले है जॉनी केज। भाई जॉनी केज, इस मूवी का मेन पार्ट, सबसे एंटरटेनिंग कैरेक्टर जॉनी केज, जिसे कार्ल अर्बन ने प्ले किया है। क्या कॉमेडी टाइमिंग है भाई, क्या कॉमेडी, यू नो बैक इन द डेज जब अक्षय कुमार एक्चुअली में डंकी कॉमेडी कर रहे थे, वो वाली टाइमिंग है लड़के की भाई, और ऊपर से ये भी एक्शन हीरो निकले, और क्या जबरदस्त एक्शन किया है, क्या जबरदस्त कोरियोग्राफी है, जबरदस्त, एंड प्लीज बॉलीवुड सीखो एक्शन कोरियोग्राफी, हर स्लो मोशन

एक्शन पीस नहीं होता है, हर बार स्लो मोशन डाल देते हैं यार. मतलब अच्छा भला पीस चल रहा होता है उसमें स्लो मोशन. वी नीड टू लर्न फ्रॉम दीज पीपल. स्लो मोशन है पर हर जगह नहीं आता, वो स्लो मो को सही जगह पे यूज किया गया. बाकी अमेजिंग सेट पीसेस. एंड इसके बाद ल्यू कैंग और गेट ओवर हियर, स्कॉर्पियन का जो कैरेक्टर है फैन फेवरेट. मैं तो भाई दीवाना हूँ स्कॉर्पियन का. मैं हर गेम में स्कॉर्पियन बिल्ड ढूंढता हूँ कि कैसे इसको मैं स्कॉर्पियन बना दूँ. अभी भी रिसेंटली आई एम प्लेइंग समथिंग, उसमें मैंने कहा भाई स्कॉर्पियन का आर्मर सेट ढूंढो, कुछ आग वाग चाहिए. तो फैन की फेवरेट कैरेक्टर्स को उनकी फाइट्स को बहुत अच्छे से दिखाया गया है, जो मूवी का दिल बन जाती है. दिमाग इज जॉनी केज, ऑफ कोर्स प्लेड बाय नन अदर देन द वेरी फेमस कार्ल अर्बन. लेकिन दिल मूवी का द फेवरेट कैरेक्टर्स ल्यू कैंग और स्कॉर्पियंस. अब विलन भी तो पावरफुल होना चाहिए, हम हमेशा ही कहते रहते हैं भाई विलन पावरफुल नहीं होगा तो हीरो का वजन कैसे आएगा. बट इसमें है वो मॉर्टल कॉम्बैट के

Mortal Kombat fan, go and watch it in the theaters. Jo entry Shao Kahn ki hai, bhai saab, itni sateek, maza aa jayega aapko. Lagta hai ye character strong hai, lagta hai hero ki pitai kar sakta hai. Villain lagna bhi chahiye na. विलन ऐसा होना चाहिए, या तो आपको बिल्कुल नफरत करा दे, आप बोले यार क्या जहर आदमी है, या तो आपको लगे भाई ये मारेगा. तो ये दोनों में से एक भी फील आ रही है तो विलन कामयाब है, और इसका विलन कामयाब है. तो ये जो लेवल ऑफ एक्टिंग है इस मूवी में, जितनी चाहिए थी उतनी है. अच्छा हुआ कि उन्होंने ज्यादा ओवर नहीं किया, पिछली मूवी में थोड़ा सा ज्यादा ही चले गए थे. एंड कलर ग्रेडिंग, थैंक यू सो मच. पिछली बार में ब्लू और ब्लैक देख के ना स्क्रीन पे मेरी आंखें चौंधिया गई. मैंने कहा भाई क्या देखना है इसमें, किधर देखना है, मतलब मूवी के सिर्फ सब जीरो के हिसाब से बनाइएगा, सब कुछ ठंडा ठंडा रहेगा. तो अब की बार कलर ग्रेडिंग बहुत अच्छी है, एक्शन मूवी के हिसाब से परफॉर्मेंसेस काफी काफी एंटरटेनिंग है. एंड एज आई मेंशनड, आपको जॉनी केज जाना पड़ेगा देखिए. ये बंदा आपको हंसा हंसा के लोटपोट कर देगा इन एवरी टेंस सिचुएशन. क्या चाहिए आजकल, ये तो चाहिए कि टेंस सिचुएशन में भी कोई हंसा दे, बिल्कुल वैसा ही. अब जरा बात करते हैं इस मूवी की सबसे मेन कोर स्ट्रेंथ की, जो कि है इसका एक्शन. मूवी में इतनी ब्रूटल फाइट्स हैं, फैटलिटीज हैं, ये वो समझ पाएंगे जो गेमिंग दुनिया से जुड़े हुए हैं. फैटलिटी एंड वो भी है ब्रूटलिटी एंड मार्शल आर्ट सीक्वेंसेस, बड़े ही स्टाइलाइज मार्शल आर्ट सीक्वेंसेस हैं जो बड़े एक्साइटिंग हैं. और बीच बीच में आपको एक दो बार वो भी आवाज आएगी, राउंड टू फाइट, वो जो है ना ओए होई होई होई, वजन लाता है. आपका भाई भी कर सकता है वैसे तो कमेंट्री, समझ गया ना. एंड इसके जो फाइटिंग सीक्वेंस है, सिर्फ हाथ पैर की लड़ाई नहीं, पिछले मूवीज में काफी ज्यादा कॉम्बेट ही कॉम्बेट दिखाते थे, मगर इस बार मेले वेपन भी हैं. सो मेले वेपन एज इन के शॉर्ट फाइट्स हैं इसमें, जो फायर पावर्स हैं उनकी भी लड़ाई है, आइस अटैक्स हैं. सब जीरो भाई अपना बर्फ नहीं छोड़ेगा तो काएगा सब जीरो है, तो वो ठंडाई भी दे रहा है और ऊपर से स्कॉर्पियन जो है वो आग भी छोड़ दे रहा है. तो ये दोनों का होना बड़ा जरूरी है. एंड ये जो तैयारी है हैंड टू हैंड कॉम्बैट की, वो भी बड़ी जरूरी है. जो हैंड टू हैंड कॉम्बैट है वो भी बहुत अच्छे से दिखाया गया है, एंड दैट इज हाउ इट इज, और वही चाहिए था. तो जो कुल मिला के इसकी कॉमेंट्री में अबव करना चाहूँ, तो कुछ फाइट सीन्स क्यों इतने खूबसूरत है पता है. रिवीलर लिटरल गेम से लिए गए भाई, ये तो उन्होंने कमाल ही कर दिया. ठीक है मूवी एक्सपेरिमेंट करती करती अपनी जगह, लेकिन सबसे बेहतरीन जो उन्होंने बात करी है, अगर आपने मॉर्टल कॉम्बैट का गेम खेला है, एग्जैक्ट उन सीक्वेंसेस को उठा के उन्होंने पिक्चर में डाल दिया. मैं तो कह रहा हूं इतनी ही मेहनत करनी चाहिए लोगों को, जब लोग कहते हैं ना बेस्ड ऑन अ वीडियो गेम, अरे तो उससे उठाओ तो कुछ. मैं तो कह रहा हूं लिटरल सीन बाय सीन उठा के डाल दो, चल जाएगी पिक्चर. फाइनली किसी ने सुनी इस बात को, सुना इस बात को. ज्यादा क्रिएटिव बनने की जरूरत नहीं है, एक फैन को क्या चाहिए, जो उसे पसंद है वही स्क्रीन पे देखना है ना, उसे नहीं देखना कुछ आगे का, उसे नहीं देखना आप कितने क्रिएटिव हैं, उसको वही चाहिए जो वो अभी खेल के आ रहा है गेम, है ना. अब अगर आई विल गिव यू एन एग्जांपल, अगर आप स्कॉर्पियन जानते हैं मॉर्टल कॉम्बैट का, है ना, अगर वो ये ना बोले गेट ओवर हियर, मजा आएगा क्या, नहीं आएगा ना. ये कहाँ सुना आपने, ये आपने गेम्स में सुना, लगा कि भाई ये तो मेरे को पिक्चर में देखना है, तो पिक्चर में आदमी वेट करता है स्कॉर्पियन आएगा बोलेगा गेट ओवर हियर, तो वो भी है इसमें. एंड दैट इज व्हाई इनके एक्शन सेट पीसेस बहुत बहुत बढ़िया है. अब आते हैं विजुअल इफेक्ट्स पे, दिस इज वन ऑफ द की एलिमेंट्स ऑफ द

0: प्रीवियस मूवी से मुझे बहुत शिकायत थी विजुअल्स को लेके, बहुत अजीब सीजीआई थे, लेकिन इस बार सीजीआई और साथ में फैंटेसी वर्ल्ड इन्होंने बनाया है विद द राइट कलर ग्रेडिंग, बहुत बहुत बढ़िया है, फैंटास्टिक। पिछली मूवी में क्या दिक्कत थी पता है, दे वर यूजिंग सीजीआई एंड फैंटेसी वर्ल्ड ही बनाया वो ठीक था, लेकिन फिर वो जो ब्लू एंड ब्लैक कलर का मिक्सचर था इतना डिम कर दिया स्क्रीन को, अरे भाई क्यों, मतलब इतनी सैड मूवी थी नहीं जितनी वो बना दी। तो अब जाके इन्होंने बहुत इंप्रेसिव काम किया है, एंड इट इज अमेजिंग टू सी, विजुअली स्टनिंग है पिक्चर, ग्रेट कलर्स, ग्रेट कॉम्बिनेशंस, ग्रेट कलर ग्रेडिंग, और फिर आ जाता है वो जो मुझे बहुत पसंद है, यहां मेरा दिल पकड़ गया भाई, मॉर्टल कॉम्बैट का थीम ट्रैक, इसका कोई है क्या कोई टक्कर, म्यूजिक और साउंड, द बैकग्राउंड स्कोर जो लड़ाई के दौरान है वो इतना पावरफुल है, आपको एकदम वो क्रेशेंडो, वो बिल्डअप होता है एकदम से, होता है वाह क्या बात है, और वो जो क्लासिक मॉर्टल कॉम्बैट थीम सुनने को मिलती है पुराने फैंस को, हम जैसे फैंस को नॉस्टैल्जिया फील कराती है भाई, प्लीज यहाँ बीच में चला दो यार, सुना दो पब्लिक को। तो ये जो क्लासिक मॉडल कॉम्बैट थीम है इसका कोई तो
1: एब्सोल्यूट सिनेमा,
0: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मर्तबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं, पर डोंट वरी मैं हूं ना, भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है एफएम 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग। आप जरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और वीक पॉइंट्स को जरा खुल के डिस्कस कर लेते हैं बिकॉज ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जो फैन सर्विस की गई है अक्सर लोग क्रिटिसाइज करते हैं, अरे तो फैन सर्विस है, अरे तो क्या हो गया, फैंस के लिए तो बनाई है तो क्या गलत कर दिया, तो फैन सर्विस पूरी पूरी की गई है भाई, स्पेशल ट्रीट दी गई है, यूं समझ लीजिए कि दोस्त को ले जा रहे थे पैटीज खिलाने, पूरा पिज्जा खिला दिया, तो वो वाला सीन है, भर भर के फैन सर्विस करी है हर कैरेक्टर के साथ, विच इज अमेजिंग, कमांडेबल, तालियां बजाता, लेकिन हाथ में मेरे फोन है अभी। एंड एक अच्छी बात और है, बेटर टूर्नामेंट स्ट्रक्चर, जो एक्चुअल मॉर्टल कॉम्बैट की थीम थी वो फाइनली उठाई गई है, जब हम गेम खेलते हैं तो उसमें एक कॉम्बैट टावर होता है ना, उस टावर पे आप जैसे जैसे बीट करते हैं ओपोनेंट को वैसे वैसे ऊपर जाते हैं, इसमें मॉर्टल कॉम्बैट के टूर्नामेंट का जो असल स्ट्रक्चर है वो उतारा गया है, बहुत बढ़िया किया है, थैंक यू सो मच अगेन टू द मेकर्स, रो देगा मेकर इतनी तारीफ कर दूंगा मैं, एंड मूवी कहीं पर आपको बोर नहीं करेगी, ये सबसे बेस्ट पार्ट है, बीच में इधर उधर जाएगी बोर नहीं करेगी, और बोलेंगे ठीक है ये भी चलेगा 5 मिनट का ये भी होना चाहिए, एंड वन ऑफ द बेस्ट पार्ट्स ऑफ द मूवी अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग, जॉनी केज की कॉमेडी और एनर्जी जो है वो जबरदस्त है। मैं अब प्लॉट बता रहा हूं देर में क्योंकि अब मेरे पास मौका है बताने का, जब मैंने सारी अच्छाइयां बता दी। तो प्लॉट बड़ा सिंपल, जितने भी बाकी बींग्स हैं जो मॉर्टल कॉम्बैट में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, दुनिया की लड़ाई चल रही है, उसमें उनको एक आम आदमी चुनना है और वो है जॉनी केज का कैरेक्टर। जॉनी केज जो है वो एक हॉलीवुड का एक्टर, वो कंफ्यूज है कि भाई मुझे क्यों चुन रहे हो, मेरे पास तुम्हारी जैसी पावर भी नहीं है, मैं तो आग भी नहीं छोड़ता, फायर भी नहीं छोड़ता, मुझे क्यों चुन रहे हो, एंड द स्टोरी बिकम्स एंड रिवॉल्व्स अराउंड हिम कि जॉनी केज क्यों, और फिर जॉनी केज की इस बहुत ही वियर्ड सिचुएशन में जो कॉमेडी है और जो एनर्जी है वो मूवी को फ्रेश बनाती है, एंड बहुत बहुत बढ़िया जॉब किया इस कैरेक्टर के साथ राइटर्स ने भी, कैरेक्टर जो प्ले किया है कार्ल साहब ने वो तो अच्छा किया ही है, बट राइटर्स डिड अ ग्रेट ग्रेट जॉब, एंड डायलॉग जिसने लिखे हैं भाई, किसने लिखे डायलॉग, ये उसके हाथ बांध दो, आगे से ना लिख पाए, नहीं लिखे बहुत अच्छे डायलॉग्स लिखे हैं, कमाल कर दिया, पर कुछ वीक पॉइंट्स है, अगेन कमिंग बैक टू ये साउंड इफेक्ट मेरा खुद का है बट यू कैन यूज इट, नो कॉपीराइट। एनीवे तो कहानी सिंपल है, आप कुछ बोलेंगे इतना कुछ डेप्थ तो था नहीं इसमें, डेप्थ अगर डेप्थ तलाशने जाओगे तो भाई नहीं है, आई एम सो सॉरी आपके लिए नहीं, अब ये आपको दे रहा हूं वीक पॉइंट है, वैसे तो वीक पॉइंट ये है, पर हाँ अगर डेप्थ ढूंढ रहे हो तो देर इज नो डेप्थ, देर इज नो मोरालिटी, मूवी आउट एंड आउट मॉर्टल कॉम्बैट ही है। कुछ मेन कैरेक्टर्स अगेन जो मैंने पहले मेंशन किया था प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं है, मतलब बराका को दिखाया गया बढ़िया करके, ठीक है बराका भाई लड़ रहे हैं, कानो लड़ रहा है, रेडन को थोड़ा और फुटेज मिल जाती बढ़िया रहता, सब जीरो को थोड़ा सा है ना ज्यादा भाव दिए नहीं, कुछ कुछ

करेक्टर्स का डेवलपमेंट थोड़ा ज्यादा नहीं है बल्कि होना चाहिए था, जो जो कि मेन करेक्टर्स हैं. एंड ऑफकोर्स जिसके लिए मॉर्टल कॉम्बैट जानी जाती है, तो ये फेयर शेयर वार्निंग पहले वार्न कर दूं, प्लीज ये 18 साल से ऊपर के बच्चों के लिए मत ले जाना बच्चों को. ये मूवी जो है ये ओवर द टॉप वायलेंट है, हर व्यूअर को एक्सट्रीम वायलेंस मिलेगा इसमें, मगर कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगा. तो अगर पहली बार आप बिना जाने पहचाने मॉर्टल कॉम्बैट देखने जा रहे हैं, आपको नहीं पता कि मॉर्टल कॉम्बैट किस चिड़िया का नाम है, मत जाना भाई, क्योंकि इसमें बहुत वायलेंस होता है, गेम में भी है, बर-बर के है, इसलिए मैंने वो वर्ड यूज किए फेटैलिटी और ब्रूटैलिटी, ये सब कुछ है मूवी में भर भर के, बट इट इज फन एंड एंटरटेनिंग.

भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपको शायद मूवी परफेक्ट ना लगे, लेकिन अगर आप एक्शन और गेमिंग फैन हैं तो आपके लिए भाई ये फुल ऑन मसाला है, फुल ऑन मसाला, क्योंकि इसमें जॉनी केज के एक्शन सीन्स और जो

0: है ना, जैसे मैंने कहा ना कि अब ल्यू कैंग अगर आग छोड़ रहा है तो भाई मेरे को मूवी में दिखाओ ना आग छोड़ रहा है. मेन प्रॉब्लम क्या होती है जब गेम्स को ये लोग डेवलप करते हैं ना मूवी, वो भूल जाते हैं कि गेम चला क्यों था. अब मुझे पता है कंपटीशन और डर किस बात का लग रहा है. रिव्यू भी पूरा नहीं हुआ है बाय द वे, बीच में एक और बात रैंडमली कर देना चाहता हूँ. एक और मूवी आने वाली है भाई, उसने भी सेम वादा किया है और वो भी बहुत फेवरेट फ्रेंचाइजी है और उसमें हमारे बॉलीवुड के एक्टर भी हैं. विद्युत जामवाल, मूवी है स्ट्रीट फाइटर. अब मैं बता रहा हूँ डायरेक्ट कंपैरिजन होने वाला है स्ट्रीट फाइटर का मॉर्टल कॉम्बैट से, क्योंकि स्ट्रीट फाइटर भी रिलीज होने वाली है कुछ टाइम में. बट कमिंग बैक टू मॉर्टल कॉम्बैट, जिसने आके अपना काम कर दिया, अब स्ट्रीट फाइटर को इससे ऊपर जाना है या इसको इसके बराबर रहना है, नीचे जाना है, व्हाटएवर. 10 वाले स्टोरी लाइन को मैं एज अ गेमर दूंगा 7 में से 10. मैंने 3 नंबर इसलिए काटे हैं, 1 नंबर कटा है इस बात के लिए कि मूवी जो है वो नए लोगों को शायद ना जमे, कन्फ्यूजन लगे, सारे रेलम्स वगैरह समझाना, तो इसीलिए. दूसरा पार्ट जो मैंने स्टोरी काटा है, कैरेक्टर को थोड़ा और डेवलप कर लेते, फेवरेट कैरेक्टर को थोड़ा कैमरे पे लाते तो मज़ा आता, बाकी 1 मेरा मन था इसलिए काट दिया, तो 3 नंबर हो गए. 7 में से 10 कहानी को दूंगा मैं. अब एक्शन सेट पीसेस पर जाते हैं, इसमें मैं सॉरी मैं नहीं काट पाऊंगा, 9.5-10 में से आधे नंबर काट रहा हूं, क्योंकि मैं वो मास्टर हूं जो पूरे नंबर नहीं देता. चलो 10 दे देते हैं. एक्शन 10 on 10 मज़ा ही आ गया. मैं 9.5 नहीं दे पाऊंगा, 1 नंबर है इसका एक्शन. अब आ जाते हैं विजुअल इफेक्ट्स पर. विजुअल इफेक्ट्स आई विल गो फॉर 9 out of 10. अमेजिंग विजुअल इफेक्ट्स. कई जगह पर थोड़ी सी लाइटिंग कुछ ज़्यादा ही है और ब्लू और येलो कलर थोड़े से ज़्यादा ही पॉप आउट होते हैं, बट दैट इज़ फाइन. उसके 1 नंबर ही काटूंगा, ज़्यादा नहीं. 9 नंबर 10 में से फॉर विजुअल इफेक्ट्स. एंड इसके बाद एंटरटेनमेंट भाई, साढ़े नौ आधे नंबर काटने पड़ेंगे, आई एम सॉरी, 9.5 दे रहा हूँ मैं. 9.5 out of 10 इन टर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट. क्या मूवी बना दी इन्होंने. ट्रेलर आया था तो मुझे लगा नहीं था, मुझे पहले लगा कि ठीक है जॉनी केज तक सीमित रहेगा और उसके बाद शायद मूवी बोरिंग हो जाएगी, बट जॉनी केज को इन्होंने मेन कैरेक्टर बना के टेकिंग सच अ हाई रिस्क इन्होंने कहाँ तक पहुँचा दिया. दिस इज वॉट आई वॉन्टेड एंड दिस इज वॉट दे हैव डन.
1: Belongs to me.
2: We do not kneel.
3: Our only chance is to face this together.
4: Let's go, baby.
3: You, Johnny Cage, are a part of this now.
0: अब जरा फाइटिंग गेम्स और उनकी बात कर लेते हैं जो इस मूवी को बनाते हैं. देखिए अगर आपने गेम नहीं खेला है, प्लीज़ गो एंड वॉच अ गेम प्ले. अगर आपके दोस्त के पास है कंसोल या फिर पीसी तो उनसे भी जाके आप बात कर सकते हैं, एंड सजेशन के बाद जाइएगा. एंड डोंट थिंक कि फैमिली को लेके आप पहुंच जाएंगे, वो तो नहीं हो पाएगा क्योंकि ये मूवी नहीं है बच्चों के लिए. और अगर कोई बच्चा गेम भी खेल रहा है मॉर्टल कॉम्बैट का, भाई प्लीज़ उसे दूर कर लो. क्यों खेल रहा है वो मॉर्टल कॉम्बैट, फिर आप ही बोलेंगे, फिर आप ही वीडियो गेम को क्रिटिसाइज करेंगे, अरे वीडियो गेम तो वायलेंस फैलाती हैं. नहीं फैलाते बेचारे, कुछ नहीं करते. अब पेरेंटल कंट्रोल रखना भी तो कोई चीज़ होती है, तो वो रखनी भी तो ज़रूरी है ना, तो वो रखिए. बाकी आप टेंशन मत दीजिए, कोई वीडियो गेम आप और कोई ऐसा गेम आपको आपको या बच्चों को नहीं बिगाड़ेगा. सो टेक अ चिल, ओके. एंड अब ज़रा मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात कर लेता हूँ. इस मूवी का जो लुक है, जो इसे इस बार अमली जामा पहनाया गया है, वो बड़ा ज़रूरी है. वो है फिल्म की सिनेमेटोग्राफी. हाँ सही बोल रहा हूँ, ओके. तो अगर सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो मूवी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज़ पर टिकी हुई है. उनमें से एक पिलर जो है, अगर 4 पिलर हैं तो 1 सिनेमेटोग्राफी ज़रूर है.

बाकायदा, ऐसा नहीं कि शॉर्टकट्स हैं और कट कट कट कट कट कट लड़ाई हो रही है, जल्दी जल्दी कैमरा मूव हो रहा है, नहीं, बड़े स्टाइलाइज्ड और डार्क विजुअल्स हैं, बहुत स्टाइलिश एंड अमेजिंग, वो सिनेमैटिक फील आपको आएगा, इसलिए मूवी बना ही थिएटर के लिए गई है। मूवी में रेड ऑरेंज ब्लू कलर्स का यूज़ किया गया बहुत ज़्यादा और फाइट्स को काफ़ी ड्रामेटिक बनाया गया है इन्हीं कलर्स की वजह से, जो कि बहुत अच्छा काम किया गया। कुछ कैरेक्टर हैं जिनको पर्पली पहनना पड़ा है इस मूवी में, बट दैट इज वाइन, वो उनकी कैरेक्टर की डिमांड है। अपना फेवरेट मॉर्टल कॉम्बैट कैरेक्टर आपने बताया, अभी तक नहीं बताया ना, बता दीजिए मुझे, बता दो जरूर मुझे। 666-22107 नंबर है, 666-22107 एंड ऑल्सो सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar FM107 कतर, इस नाम से हर जगह मौजूद है। एंड मॉर्टल कॉम्बैट का मेरा फेवरेट कैरेक्टर अगर आप मुझसे पूछे तो मेरे दो हैं, इनफैक्ट तीन हैं, लू कैंग और स्कॉर्पियन, एंड थर्ड वुड बी सब जीरो। थर्ड सब जीरो क्या, हाँ ठीक है सब जीरो ले लो, सब जीरो ले लो, ये दोनों के दोनों हैं, बहुत बहुत बहुत बढ़िया है भाई, बहुत ही बढ़िया है। देखा मैं क्या कह रहा हूँ, एनिमी की जो एंट्री है, जो मेन बॉस की एंट्री है, उस तक पे इन्होंने फोकस किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेटेज सिर्फ हीरो के अटायर में नहीं होना चाहिए, विलन के प्रेजेंस होना चाहिए। विलन भले ना दिखे, उसका चेहरा ना हो, बट उससे जो डील कर रहा है वही जानता है कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक विलन का काफ़ी स्ट्रांग होना, और शाहरुख खान इसमें बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अच्छा, इसमें आप जो मोमेंट हैं जिन्हें मतलब है, थोड़ा सा इमोशनल होना चाहते हैं, तो इसमें सीन्स हैं, क्लोजअप इमोशनल शॉट्स हैं और इंटेंस मोमेंट्स हैं, जो क्लोजअप शॉट्स को काफ़ी इफेक्टिव वे से दिखाते हैं, मतलब आपको लगेगा कि ये तो मज़ा नहीं आया, फिर आप बोलेंगे हाँ यार। इसमें काफ़ी क्लियर अप शॉट्स हैं, जैसे कि इमोशनल और जो इंटेंस मोमेंट्स हैं क्लोजअप के साथ, वो तो आ ही रहे हैं। इसके साथ साथ सिनेमाटोग्राफी और CGI का जो कॉम्बिनेशन है इस मूवी के अंदर, काफ़ी काफ़ी ज़्यादा इमर्सिव है, मतलब जो आगे वो नेचुरल लगती है आपको, फैंटेसी एरियाज जो हैं वो डिटेल नज़र आते हैं, एंड जो क्रिएचर्स हैं वो भाई साहब बहुत बढ़िया बनाए हैं। सिर्फ मेकअप करने से नहीं होता है, उनको भी एक्टिंग करनी पड़ती है। जो लोग क्रिएचर्स बने हैं इस मूवी में, मॉर्टल कॉम्बैट में, उनको मेरा सलाम एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, यू ऑल डिड अ स्प्लेंडेड जॉब, क्योंकि सिनेमाटोग्राफी का CGI का कॉम्बिनेशन क्या है कि वो कभी कभार अच्छा लग जाता है, कभी कभार नहीं लगता है, मगर इस बार इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा। लाइटिंग की बात करूँ तो मूड पर डिपेंड करता है कि मूड सेट करना हो तो कैसे करें, मूवी को देख के क्या ऐसा मिलेगा आपको, सबको पता लग जाए, क्योंकि मूवी के लाइटिंग सीन जो है वो बहुत अच्छे हैं। ये है कुल मूवी का जो हमारा प्लान था। अब आप बता दीजिए आपको क्या लगता है, आपका क्या प्लान बन रहा है, कब जा रहे हैं आप मूवी के लिए और मॉर्टल कॉम्बैट के लिए। अगर पिछली वाली मॉर्टल कॉम्बैट के मुकाबले इस मूवी को मैं तोड़ना शुरू कर दूँ, तो इस बार की मॉर्टल कॉम्बैट, इट्स शो टाइम।

जो आपको थिएटर में एक स्पेक्टिकल लग सकती है. तो मेरी एक एडवाइस है, जो हस्बैंड लोग हैं जो गेमिंग से जुड़े हुए हैं, जिन्हें मॉडल कॉम्बैट पता है, अपनी वाइफ्स को लेके जाएं. हो सकता है कि उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आए, और हो सकता है कि वो मॉडल कॉम्बैट का कैरेक्टर बन के निकले. दैट डिपेंड्स. तो अगर आप ये रिस्क लेना चाहते हैं तो आप जाइए, बिल्कुल जाइए. पर मेजरली जो गेमर्स हैं, एक साथ ग्रुप बना के जाओगे, इकट्ठे होके, तब मजा आएगा इसमें. एंड ये रिव्यू अगर आप सुनते सुनते रिकॉर्ड करना चाहें और स्टोरी बनाना चाहें सोशल मीडिया हैंडल्स पे, तो डू टैगर्स FM 107 Qatar, FM 107 Qatar. मैं तो कर रहा हूँ

0: मगर बताऊंगा कौन सी बढ़िया है, वरना हम सीरीज का भी रिव्यू करेंगे. ओके, तो दिस इज दुहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ. अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आप बेहद बेहद बेहद जरूरी है. मास्सलाम.
1: One hits music station. Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa और download the app QMC now.
3: एक अच्छी दोपहर वो होती है जहाँ अपनों का साथ हो और दिलों की बात हो. तो अपने अपने कुर्सी की पेटियाँ बांध लें, क्योंकि अब आफ्टरनून का माहौल बदलने वाला है. पेश है आफ्टरनून एक्सप्रेस.
2: जहाँ इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट का होगा एक बेहतरीन संगम. आरजे नाजिया और आरजे सर्वर के साथ
3: हर टॉपिक पर होगी खुलकर बात, हंसी मजाक, लाइव इंटरेक्शन
2: और बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स.
3: चाहे आप घर पर हो या अपनी कार में, बनाइए अपनी आफ्टरनून को यादगार.
2: तो ट्यून इन करें आफ्टरनून एक्सप्रेस संडे टू थर्सडे आरजे नाजिया और आरजे सर्वर के साथ
3: सुबह 11 बजे से दोपहर के 1 बजे तक सिर्फ FM 107 पर. दिल से देसी.
4: कोई ऐसी किताब है जो किताबों को समझने में मदद करे, या फिर कोई ऐसा दोस्त जो मस्ती मजाक में ही सही लेकिन लाइफ के लेसन्स भी दे पाए.
5: कस के जूता, कस के बेल्ट, खोस के अंदर अपनी शर्ट, मंजिल को चली सवारी.
4: वेल, ये कोई सुपरफिशियल एड नहीं है, सच्चाई है. क्योंकि FM 107 लेकर आया है एक खास शो फॉर स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स गाइड. तो सुनिए हर मंडे दोहा वाले कबीर के साथ, कबीर के साथ द स्टूडेंट्स गाइड एंड बी द गाइडिंग लाइट फॉर स्टूडेंट्स. हमारे साथ दोपहर 3:30 बजे से सिर्फ FM 107 पर. दिल से देसी.
6: साथियों, जिंदगी के सफर के लिए एक सही डायरेक्शन चाहिए, और जब बात हो पैसे की तो सही गाइडेंस भी सबसे ज्यादा जरूरी होती है. सेविंग, बजटिंग, फ्यूचर प्लानिंग या स्मार्ट इन्वेस्टिंग, इंट्रोड्यूसिंग प्रोग्राम मनी नेविगेटर, एक ऐसा गाइड जो आपको लेके जाता है फाइनेंशियल अवेयरनेस के सफर पर. बिल्कुल प्रैक्टिकल, बिल्कुल रियल लाइफ. सुनिए प्रोग्राम मनी नेविगेटर एवरी मंडे 10 AM ऑनवर्ड्स, ओनली ऑन FM 107. दिल से देसी, योर गाइड फॉर ए स्मार्टर स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल डिसीजन. सिर्फ सुनना ही नहीं, समझना भी शुरू कीजिए.
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से. कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.
2: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी.

0: Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa और download the app QMC now.
2: सेहत की बात हो तो एतमाद चाहिए माहिरीन की राय पर. लीजिए, हाजिर है आपके लिए प्रोग्राम हेल्थ गाइड, जहां आपके सवालात के मिलेंगे मुस्तनद जवाबात। स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट डॉक्टर्स करेंगे रहनुमाई, बीमारियों की पहचान से लेकर इलाज और एहतियात तक। सुनिए हर वेंसडे बुध की रात 8 बजे हेल्थ गाइड डॉक्टर

जिसमें 37 ममालिक के 520 से ज़ायद पब्लिशिंग हाउसेज शरीक हैं, जबकि तकरीबन 910 स्टॉल्स पर 18,50,000 से ज़ायद किताबें और 2,31,000 से ज़्यादा उनवानात पेश किए जा रहे हैं। मेले में दिलचस्पी सिर्फ किताबों की ख़रीदारी और नई इशातों के हसूल तक महदूद नहीं रही, बल्कि उसके साथ मुनाकिद होने वाली सकाफती सरगर्मियों ने भी बड़ी तादाद में शायकीन को अपनी जानिब मुतवज्जे किया है। ख़ास तौर पर फ़िक्री नशस्तें, अदबी शामें और किताबों की रौनुमाई व दस्तखत की तकरीबात, जिनमें अदब और सकाफत से दिलचस्पी रखने वाले अफराद ने भरपूर शिरकत की है। दूसरी जानिब बच्चों की किताबों के हिस्सों, नौमर अफराद के लिए तैयार की गई इंटरेक्टिव सरगर्मियों ने भी ख़ानदानों की खास तवज्जो हासिल की है, जहाँ वालदैन अपने बच्चों को साथ लेकर मुताले, ड्राइंग और कहानी सुनाने की मुख्तलिफ वर्कशॉप्स में शरीक होते दिखाई दिए, जो नई नस्ल में मुताले के फरोग और सकाफती शऊर में इजाफे की अक्कासी करता है। अरब और बैनुल अक़वामी सतह पर मुतनव्वे शिरकत, सकाफती इदारों, तालीमी तंजीमों की मौजूदगी ने भी मेले की रौनक को मज़ीद बढ़ाया, और यूँ ये नुमाइश सिर्फ किताबों की नुमाइश तक महदूद न रही बल्कि इल्म, सकाफत और फिक्री तबादले के एक मुतहर्रिक मरकज़ बन गई, जहाँ अदीब, नाशरीन, दानिश्वर और अवाम एक ही जगह पर इकट्ठे दिखाई दिए। दोहा इंटरनेशनल बुक फेयर के मुख्तलिफ हिस्सों में कायम नुमाइश अर्रहला मिनल बूम इला नाकिला ज़ायरीन की खास तवज्जो हासिल कर रही है, जो एक मुनफरद फ़नी और दस्तावेज़ी तजुर्बे के ज़रिए कतर की तारीख के एक अहम दौर की अक्कासी करता है, यानी मोतियों की तलाश के ज़माने से लेकर तेल के दौर के आगाज़ तक का सफ़र, जिसने मुल्क की माशी और समाजी ज़िंदगी में बड़ी तब्दीलियाँ पैदा की। ये नुमाइश तस्वीरी फनपारों के ज़रिए कतरी अवाम की ज़िंदगी और जद्दोजहद की कहानी पेश करती है, जहाँ समंदर को रोज़गार के बुनियादी ज़रिए के तौर पर दिखाया गया है और फिर शहर दुखान के तेल के मैदानों की दरियाफ्त के साथ तामीर और तरक्की के एक नए दौर का आगाज़ नुमाया किया गया है। नुमाइश में समाजती तब्दीली को भी उजागर किया गया है, जो रिवायती कश्तियों और पुरसकून गोताखोरी के सफ़र से शुरू होकर तेल की तलाश, पाइपलाइनों की तनसीब और तेल और गैस बर्दार जहाज़ों के जहूर तक पहुँची। ये फ़नी नुमाइश सन 1949 में कतर से खाम तेल की पहली बरामद जैसे तारीखी लम्हे को भी खराज तहसीन पेश करती है, जिसने कतर को आलमी इक्तसादी नक्शे पर एक नई शनाख्त दी, जबकि नुमाइश में वर्से जदीदियत, अवामियत, दाश्त और तरक्की के जज्बे को खूबसूरत अंदाज में यकजा किया गया है। ये खबरें उर्दू रेडियो FM 107 से नशर की जा रही है। अमरीकी इदारे खारजा ने लबनान और इसराइल के दरमियान जारी जंग बंदी में मजीद 45 दिन की तोसी का ऐलान किया है, ताकि मुजाकराती अमल को आगे बढ़ाने में मदद मिल सके। अमरीकी खारजा के तर्जुमान टॉमी पेगट ने बताया कि 16 अप्रैल को नाफिज की गई जंग बंदी को मजीद 45 दिन के लिए बरकरार रखा जाएगा, जबकि फरीकैन के दरमियान मुजाकरात का चौथा दौर आइंदा 2 और 3 मई को दोबारा शुरू होगा। हालिया कशीदगी और बराह रास्त मुजाकरात के एक मरहले के अख्तिताम के बावजूद अमरीकी खारजा ने उम्मीद जाहिर की है कि यह बातचीत दोनों फरीकों के दरमियान पायदार अमन के क़याम में अहम किरदार अदा करेगी। उधर जारी मुजाकरात इस वक्त जंगबंदी को मुस्तहकम बनाने पर मरकूज़ हैं, जिसके बाद कैदियों की रिहाई, जनूबी लुबनान से बेघर होने वाले अफराद के अपने इलाकों में वापसी और तामीर नौ जैसे अहम मामलात ज़ेर बहस हैं। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्टिस ने कल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू में मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल और रूस यूक्रेन तनाज़ुए से मुतालिक पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया है। चांसलर मर्टिस ने बताया कि यह रابطہ उस वक्त हुआ जब सदर ट्रंप चीन के दौरे से वापसी के सफ़र में थे। दोनों रहनुमाओं ने ईरान की मुजाकराती अमल में वापसी, आबनाए हुरमुस को खुला रखने और तेहरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकने की ज़रूरत पर जोर दिया है। उन्होंने इस बात की भी निशानदेही की कि बर्लिन और वाशिंगटन के दरमियान बहरान बहरानों से निमटने के हवाले से वाज़ह हम आहंगी पाई जाती है।

आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से देसी।

0: number one hits music station.
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
3: FM 107 पर अपना business advertise करने के लिए आज ही राबता करें.
4: आज ही राबता करें.
3: हमारी Qatar Media Corporation की marketing team से. कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.
5: आप सुन रहे हैं कतर 2026.

7 सुन रहे हैं आप. मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता और लेकर आई हूँ आपके लिए कतर 2026 का ब्रांड न्यू एपिसोड. तो जनाब ये काफी ग्लोरियस मे आफ्टरनून है और मुझे लगता है कि जो ये मे का कैलेंडर है ना, लाइक इवेंट्स का हैपनिंग का कैलेंडर, उफ बड़ा कमाल का होने वाला है. टेम्परेचर थोड़ा बढ़ रहा है और ये गर्म हवा भी हमें महसूस हो रही है. उफ वल्दुआ की स्काई लाइन हमेशा की तरह डायमंड की तरह चमक रही है और माहौल बिल्कुल कमाल का हो रहा है. बस आप और मैं और हमारा ये खूबसूरत सा मुल्क, हमारा कतर. Well, today we are going on a journey across the city. हाँ, फिर चाहे हम cruising down कर रहे हो लुसेल एक्सप्रेसवे पर या फिर हम

शानदार कैफे में कॉफी पी रहे हैं, करक पी रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं अपने हर एक मोमेंट को कतर के। और इस पर सोने पे सुहागा तब हो जाता है जब हमको पता चलता है कि हमारे कतर में क्या खास हो रहा है। पहले जो मई का महीना है ना, ये हमारे कतर में हमेशा ट्रांजिशन का वक्त होता है। इट्स दैट स्वीट स्पॉट बिफोर द पीक समर हिट्स। हाँ जी, तो सिटी बिल्कुल एब्सोल्यूट एनर्जी से बज कर रही होती है और मौसम चेंज हो रहा होता है, लेकिन हमारा दिल जो है ना, वो हमेशा की तरह वैसा ही मजेदार है, एंटरटेनिंग है, और उसे और भी ज्यादा एंटरटेनमेंट चाहिए होती है। तो मैं कहूंगी कि बिल्कुल आप सही जगह पर आ गए। कदर 2026 का ये ब्रांड न्यू एपिसोड इस हफ्ते का बिल्कुल आपके उस एंटरटेनमेंट वाली जो वाइब है ना, वो जो फील है, वो जो क्रेविंग है, उसको पूरा कर देगा। पर आज के इस एपिसोड में हम कवर करेंगे क्लासिकल म्यूजिक का मैजिक, दोहा का एक्सप्लोडिंग आर्ट सीन, और मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे कमाल के सीक्रेट्स जो शायद आपने अभी तक डिस्कवर नहीं किए हैं। Well, हमारे पास आज फुल पैक कैलेंडर है, तो इस पर हम थोड़ी सी एक नजर मारते हैं। तो अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, शोल्डर्स को लूज कीजिए और रेडियो सेट का वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, क्योंकि अब आगे आपको बहुत मजा आने वाला है। सो डोंट गो एनीवेयर, बने रहिए FM 107 पर दिल से देसी। चलिए जनाब, शुरुआत कर दी जाए एक काम, एकदम सूदिंग, एक एलिगेंस के साथ। यस, इस भागदौड़ भरी जिंदगी में ना, हमें थोड़ा सा सोल फूड चाहिए ही होता है। मतलब एक तो हमें फूड यानी कि एक तरह तो हमें खाना चाहिए होता है जो कि हमारी सिर्फ जुबान के लिए होता है, फिर दूसरा हमारे पेट के लिए होता है, और तीसरा हमारे खुद के लिए होता है जो कि हमें पूरी तरह से सेटिस्फाई करता है, हमारे माइंड को एकदम से तेजी से दौड़ा देता है और दिल में एक सुकून भी पैदा करता है। So, we'll talk about the soul food. तो जनाब, मई के महीने की शुरुआत करते हैं एक सॉफ्ट फ्लिकर के साथ, जहां पर ढेर सारी नहीं मतलब कहीं हजारों की मात्रा में या हजारों की तादाद में फ्लेम्स होने वाली हैं। Yes, this week होने वाला है the candlelight concert series। हाँ जी, इसने वापसी की है हमारे कतर में। एंड इमेजिन कीजिए कि एक सीक्रेट इंडोर लोकेशन हो, यूजुअली एक बड़ा सा बॉल रूम हो, एकदम स्टनिंग म्यूजियम का कोई कोर्टयार्ड हो, और फिर वहां पर कोई भी एलईडी स्क्रीन ना हो, कोई फ्लैशी स्टेज लाइट ना हो, यहाँ तक कि वहां पर आपका खुद का फोन, मोबाइल फोन ले जाना भी अलाउड ना हो, क्योंकि परफॉर्मेंसेस बड़ी उमदा होती है। बस आप होंगे और हजारों की तादाद में होंगी कैंडल्स और उनकी वो हल्की हल्की रोशनी। वेल, इस बार ये एक हैवी वेट बैटल है मास्टर्स की, एंड दोज मास्टर्स आर मोजार्ट वर्सेस चोपिन। वेल, मैंने लास्ट ईयर एक चोपिन का कॉन्सर्ट अटेंड किया था, एंड ऑनेस्टली इट फील्स लाइक टाइम हैज स्टॉप्ड। हाँ, जब वो पियानो की धुन शुरू होती है ना, तो आप बहुत मतलब एक अलग ही दुनिया में ऐसे पहुंच जाते हो, एक अलग सी ट्रांजिशन हो जाती है। यस, इट फील्स लाइक यू हैव बीन ट्रांसपोर्टेड वो 19th सेंचुरी के यूरोप में। हाँ जी, और वैसे आपको पता है कि मोजार्ट ने, जो कि बड़े ही फेमस कलाकार रहे हैं, उन्होंने अपनी पहली सिम्फनी कब लिखी थी? जब वो सिर्फ 8 साल के थे। हाँ जी, ये सब म्यूजिक के मास्टर्स हैं। एंड इमेजिन, हम 8 साल की उम्र में क्या कर रहे थे? खेल रहे थे अपने खिलौनों से, अपने दोस्तों के साथ आइसक्रीम खा रहे थे, घूम फिर रहे थे, लेकिन 8 साल में मोजार्ट ने अपनी पहली सिम्फनी लिखी थी। और उसके बाद हम दूसरे मास्टर चोपिन की अगर बात करें, तो उन्हें पोएट ऑफ द पियानो कहा जाता है। हाँ, उन्हें बड़े ऑर्केस्ट्रास बिल्कुल पसंद नहीं है, बड़े बड़े मतलब भीड़ उनको ज्यादा पसंद नहीं थी, पर वो हमेशा चाहते थे कि एक इंटीमेट या इंटीमेसी के साथ कॉन्सर्ट हो, और वही इंटीमेसी हम उनके म्यूजिक और उनके कॉन्सर्ट्स में महसूस करते हैं। यस, एंड ये कैंडल लाइट सीरीज जो होने वाली है हमारे कतर में, कैंडल लाइट कॉन्सर्ट सीरीज, ये आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो इसके जो स्लॉट्स होते हैं ना, ये बड़े कमाल के होते हैं, तो उसके लिए क्या करना होता है, हमको अपनी टिकट जो है ना, वो पहले ही ऑनलाइन जाके बुक करनी होती है, क्योंकि इनके टिकट जो होते हैं ना, हॉट केक्स की तरह बिक जाते हैं। और जब भी आप इस कॉन्सर्ट में जाएं, सो मेक श्योर करें कि 45 मिनट्स
अर्ली जाएं ताकि जो सीटिंग अरेंजमेंट होता है ना, जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर होता है, उसमें आपको ना किसी भी तरह की दिक्कत

ना हो और आराम से आप जाके अपनी सीट पर बिल्कुल स्टेज के सामने बैठ सके। और हमारी लेडीज के लिए एक छोटी सी टिप है। देखिए जनाब, हमारा जो कतर है ना, उसके जो वेन्यूज हैं और वहाँ के जो एसीज हैं, हमेशा हमको ना आर्कटिक मोड पर ले जाते हैं मतलब बहुत ठंड होती है। सो कैरी अ लाइट पश्मीना और अ शॉल और फिर जाके आप मोजार्ट की सोनाटा तभी इंजॉय कर पाएंगे और फुल ऑन एंटरटेन्ड हो पाएंगे। सो डोंट मिस क्या द कैंडल लाइट कॉन्सर्ट सीरीज, जो कि इस हफ्ते सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने वाला है। और इसके बाद क्या है, चलिए जान लेते हैं। वैसे अक्सर लोग कहते हैं कि अमिता, म्यूजियम्स तो थोड़ा सा मतलब ज्यादा ही वहाँ पे नॉलेज हो जाता है, ज्यादा मतलब ज्यादा पढ़ाई लिखाई की बातें हो जाती हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें एक साथ पता चल गई है। वेल मैं आपको कहूंगी कि वहाँ सिर्फ पुरानी चीजें नहीं होती हैं। हाँ, अगर आप ऐसा सोचते हो ना, तो लेट मी चेंज योर माइंड राइट नाउ। मई जो है वो ऑफिशियली 8 मंथ है हमारे कतर का, और दोहा का आर्ट सीन 2026 में कोई पुराना किस्सा नहीं है जनाब। इट इज वाइब्रेंट, इट इज डिजिटल एंड इट इज वेरी वेरी क्यूट एंड इट इज वेरी वेरी वाइब्रेंट। वेल आज मैं आपको दो ऐसी जगहों पर ले चलूंगी जो आपके सोशल मीडिया फीड्स को एक अलग अलग लुक देगा और आपके सोचने का नजरिया भी बदल देगा। यस, तो हमारा पहला स्टॉप है कटारा कल्चरल विलेज। सोचिए कटारा की वो कॉबल स्टोन स्ट्रीट्स, वो ब्लू टाइल्ड वाले वॉल्स और समुन्दर की ठंडी हवा। पर इस बार वहाँ कुछ अलग है। अलग क्या है? कटारा इज होस्टिंग द कंटेम्पररी ग्राफिक आर्ट एग्जीबिशन। वैसे ग्राफिक आर्ट क्या है? ये सिर्फ पेंटिंग्स नहीं है जनाब, ये वो आर्ट है जो पोस्टर्स, डिजिटल स्क्रीन्स और बोल्ड टाइपोग्राफी से निकल कर आता है। एंड मिडल ईस्ट में इसका एक एक्सप्लोजन हुआ है। हाँ, हम बात कर रहे हैं ऐसे आर्ट वर्क्स की जिसमें अरेबिक कैलीग्राफी के नियॉन लाइट्स के साथ अरेबिक कैलीग्राफी को मिक्स किया गया है। इट्स वेयर द स्ट्रीट मीट्स द गैलरी। वेल, मैं कल वहां से गुजरी थी और मैंने एक

0: परक लीजिए और कटारा की गलियों में घूमिए और इस मॉडर्न रेवोल्यूशन का हिस्सा बनिए। ये एग्जीबिशन हमें बताता है कि कतर सिर्फ अपनी हिस्ट्री की इज्जत नहीं करता बल्कि फ्यूचर को एम्ब्रेस करना भी जानता है। अब चलिए थोड़ा वेस्ट की तरफ चलते हैं, एजुकेशन सिटी के हार्ट में। वहां पर हमें मिलेगा मताफ। व्हाट इज मताफ? इट्स एन अरब म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट। अगर आपने मताफ अभी तक नहीं देखा तो आपने दोहा का एक बहुत बड़ा हिस्सा, एक बड़ी वाइब मिस कर दी है। वेल, इनका नया शो है रेजोल्यूशंस इवॉल्विंग रियलिटीज। टाइटल थोड़ा सा हैवी लग रहा है ना, पर इसका मतलब बहुत सिंपल और डीप है। ये एग्जीबिशन दिखाता है कि कैसे टेक्नोलॉजी, एआई और क्लाइमेट चेंज हमारी डेली लाइफ को रिजॉल्व यानी बदल रहा है। वहाँ कुछ ऐसे इमर्सिव रूम्स हैं जहाँ आप जब खड़े होंगे ना तो लाइट्स और साउंड्स आपके मूवमेंट्स के साथ एकदम से चेंज होते रहेंगे। इट्स लाइक बीइंग इनसाइड अ मूवी। और ये इतना प्रोवोकेटिव, इतना डीप और इतना कमाल का है कि आपके सोशल मीडिया के लिए ये परफेक्ट है। पर आपका हर एंगल एक मास्टरपीस लगेगा। पर जनाब, सिर्फ फोटो मत खींचिएगा, उस आर्ट के पीछे की स्टोरी को भी ना फील कीजिएगा। वो हमें बता रही है कि 2026 में हम कहाँ खड़े होंगे। वैसे अगर आप मताफ जाने के बारे में सोच रहे हैं तो मैं आपको एक प्रो टिप देने वाली हूँ, क्योंकि जब आप उस तरफ जाएंगे तो हो सकता है आप ट्रैफिक में फंस जाएं। तो क्या करना है, इंस्टेड यूज द मताफ बस। ये एक फ्री शटल सर्विस है जो म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट और मताफ को कनेक्ट करती है। इमेजिन आप MIA के हेरिटेज से शुरू करते हैं, बस में बैठते हैं और पूरे शहर का एक मिनी टूर लेते हुए एजुकेशन सिटी पहुँचते हैं। ये बस राइड अपने आप मेरा एक एक्सपीरियंस है जनाब, सो डोंट मिस इट अगर आपने ट्राई नहीं किया है। प्लस बजट फ्रेंडली भी है। वैसे आपको पता है कि मताफ की बिल्डिंग जो है वो हमेशा से म्यूजियम नहीं थी? कितने लोगों को पता है? हाँ, जिनको नहीं पता है चलिए मैं बताती हूँ। ये बिल्डिंग पहले एक स्कूल थी। आर्किटेक्ट जॉन फ्रांसवा बोरन ने इस पुराने स्कूल बिल्डिंग को ट्रांसफॉर्म किया, इसे एक स्टनिंग मिनिमलिस्ट स्पेस बनाया। हाँ, तो जब आप वहाँ वॉक करते हैं ना तो सोचिए वहाँ पर एकदम आसपास की चीजों को देखते हुए कि यहाँ पर पहले कोई स्कूल होता था, बच्चे पढ़ा करते थे और आज हम कमाल की जगह पे खड़े हैं जहाँ दुनिया भर का मॉडर्न आर्ट हमें देखने को मिल रहा है। ये मॉडर्न आर्ट यहाँ हमारी आंखों के सामने चमक रहा है। वैसे जनाब, एक आखिरी सीक्रेट तो मैं आपसे शेयर करना भूल ही गई। जब आप मताफ एग्जीबिशन रेजोल्यूशंस देखकर निकलेंगे ना तो उनके गिफ्ट शॉप को इग्नोर मत कीजिएगा। अक्सर हम गिफ्ट शॉप्स को महंगा समझ कर ना छोड़ देते हैं, पर यहाँ लोकल कतरी डिजाइनर्स के लिमिटेड एडिशन प्रिंट्स मिल रहे होंगे। मैंने वहाँ कुछ ऐसे स्टिकर्स और स्मॉल प्रिंट्स देखे हैं जो शायद 2030 तक कलेक्टर्स आइटम बन जाएंगे। इट्स अ ग्रेट वे टू सपोर्ट आवर लोकल आर्टिस्ट। तो मैं आपसे बस यही कहूंगी कि चाहे आप मोजार्ट की धुनों में खोना चाहते हैं जो हमने पहली बात की थी, या मताफ में फ्यूचर को टच करना चाहते हैं, हर किसी के लिए कुछ ना कुछ खास है। सो डू नॉट मिस इट। अब देखिए, हम सब जानते हैं कि कतर इज नॉट जस्ट अ कंट्री, इट इज द स्पोर्टिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड कप हो, एशियन गेम्स हो या फॉर्मूला 1, यहाँ की मिट्टी में स्पोर्ट्स ना बिल्कुल बसता है, इनफैक्ट लोगों के दिलों में भी। पर जनाब, कभी आपने सोचा कि जब एक एथलीट पोडियम पर खड़ा होता है और उसके गले में वो चमकता हुआ गोल्ड मेडल डाला जाता है तो वो फील कैसा होता होगा, उसे क्या लगता होगा? व्हाट डज इट फील लाइक टू होल्ड अ पीस ऑफ हिस्ट्री? हमने मेडल्स को टीवी पर देखा है, एथलीट्स को उन्हें चूमते हुए देखा है, बट द डिजाइन, द वेट, और वो कहते हैं ना कि सोल बिहाइंड दैट मेडल, उफ, वो एक अलग ही कहानी है। हाँ, और वही कहानी आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि 3-2-1 कतर ओलंपिक एंड स्पोर्ट्स म्यूजियम लेकर आ रहे हैं एक अमेजिंग इवेंट, द गोल्डन मेडल डिजाइन वर्कशॉप। तो पहले बात करते हैं वेन्यू की। अगर आप 3-2-1 म्यूजियम गए हैं तो आपको पता ही होगा, इट्स नॉट जस्ट अ बिल्डिंग, इट्स एन एक्सपीरियंस। और ये म्यूजियम हमें स्पोर्ट्स की जर्नी दिखाता है, फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स टू द मॉडर्न एरा। और अब ये म्यूजियम सिर्फ देखने के लिए नहीं रहा, हाँ, इट्स गेटिंग हैंड्स ऑन। ये वर्कशॉप द गोल्डन मेडल डिजाइन वर्कशॉप सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है. नो बॉस, दिस इज फॉर द डिजाइनर्स, द स्पोर्ट फैंस, द ड्रीमर्स एंड द क्रिएटर्स. अगर आपके अंदर एक आर्टिस्ट छुपा है ना, या आप स्पोर्ट्स हिस्ट्री के फैन हैं, तो ये 15th मई 2026 आपके कैलेंडर में ना मार्क हो जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ आप सिर्फ सुनेंगे नहीं लेकिन आप क्रिएट करेंगे. चलो थोड़ी खास बातों पर बातें कर लेते हैं कि आपको क्या ये पता था कि एक ओलंपिक गोल्ड मेडल प्योर गोल्ड का नहीं होता. क्या पता है? चले बताती हूँ मैं. एक्चुअली थोड़ा सा जो ये सच्चाई है ना, वो थोड़ी सी सरप्राइजिंग है. जो स्पोर्ट फैंस हैं उनको शायद थोड़ा बहुत पता है, और जिनको नहीं पता है मैं बताने वाली हूँ कि जो ओलंपिक का गोल्ड मेडल है वो एक्चुअली सिल्वर का बना होता है. हाँ, उसमें सिर्फ 6 ग्राम प्योर गोल्ड होता है, बाकी का पोर्शन हाई क्वालिटी सिल्वर से बनाया गया होता है. इस वर्कशॉप में आपको यही मेटलर्जी सिखाई जाएगी, मेटल्स का मिक्सचर, उनकी ड्यूरेबिलिटी और वो शाइन कैसे आती है जो पूरी दुनिया को अट्रैक्ट करती है. लेकिन ये सिर्फ उस मेटल के बारे में नहीं है, इट्स आल्सो अबाउट द सिंबोलिज्म. हर होस्ट सिटी अपने मेडल में अपने कल्चर, अपनी पहचान डालती है. टोक्यो ने रिसाइकल इलेक्ट्रॉनिक्स से मेडल्स बनाए, पेरिस ने आइफल टावर का लोहा यूज किया. तो सोचिए अगर दोहा एक दोहा गेम्स होस्ट करेगा तो उसके मेडल में क्या होगा? पर्ल्स, ड्यून्स, स्काईलाइंस या हमारा ट्रेडिशनल हॉस्पिटैलिटी? वेल, वर्कशॉप में आपको यही मौका मिलेगा टू डिजाइन योर ओन कॉन्सेप्ट फॉर अ फ्यूचर दोहा गेम्स मेडल. इमेजिन कीजिए आप वहाँ बैठे हैं, एक्सपर्ट डिजाइनर्स आपको गाइड कर रहे हैं, आपके हाथ में स्केचेस हैं, टूल्स हैं, और आपका दिमाग आइडियाज से बिल्कुल मतलब भरा हुआ है. आइडियाज आपके दिमाग में दौड़ रहे हैं, रश हो रहा है. वेल, आपको सिखाया जाएगा कि कैसे एक छोटे से राउंड पीस ऑफ मेटल में एक पूरे देश की उम्मीद और गर्व, जिसे हम प्राइड कहते हैं, उसे समेटा जाता है. This is where art meets sport. अब पता है इसका बेस्ट पार्ट क्या है? It is free. Yes. Registration बिल्कुल मुफ्त है. आपको बस अपना पैशन और अपनी क्रिएटिविटी लेकर आना है. 15th में शाम 4 से 6 बजे तक. 2 घंटे जो शायद आपका पर्सपेक्टिव हमेशा के लिए बदल देगा. Well, जब आप अपने मेडल डिजाइन कर लें, उसे फाइनलाइज कर लें और वो जो क्रिएटिव एनर्जी है ना वो थोड़ा सेटल हो जाए, तो सीधे जाइए 321 कैफे में. हाँ, ये कोई आम कैफे नहीं है. इसका मेन्यू मिशलन स्टार शेफ्स ने डिजाइन किया है. कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, हेल्दी बट इंडल्जेंट. यस, मतलब खाना टेस्टी भी होगा और आपकी फिटनेस के लिए बिल्कुल बढ़िया होगा. वहाँ एक कॉर्नर पकड़िएगा, ठीक है? एक कप बढ़िया सी कॉफी लीजिएगा और अपने स्केच को फाइनलाइज कीजिएगा. और व्यू, उफ, आपके सामने होगा मैजेस्टिक खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम. सूरज ढल रहा होगा, स्टेडियम की लाइट्स ऑन हो रही होंगी. इट्स द परफेक्ट प्लेस टू फील लाइक अ विनर. तो जनाब, एक बार फिर से दोहरा देती हूँ सारी डिटेल्स. हमारा ये खासम खास इवेंट है गोल्डन मेडल डिजाइन वर्कशॉप 3-1 कतर ओलंपिक एंड स्पोर्ट्स म्यूजियम में होने वाली है 15th मई को शाम 4 से 6 के दौरान. एंड इट्स एब्सोल्युटली फ्री. तो चाहे आप एक एस्पायरिंग डिजाइनर हो या बस एक क्यूरियस सोल है, ये वर्कशॉप आपको कुछ नया सिखाएगी. हिस्ट्री को टच करने का और फ्यूचर को डिजाइन करने का ये मौका मिस मत कीजिएगा. सो कतर रेडी है, म्यूजियम रेडी है, क्या आप रेडी हैं? तो मैं मिलूंगी आपको वहीं, यू नेवर नो, 321 कैफे में कॉफी के साथ. तब तक के लिए क्या करना है आपको? बड़े बड़े सपने देखने, बड़े बड़े ख्वाब संजोने हैं और अपने अंदर के उस चैंपियन को बाहर लेकर आना है जब आप इस वर्कशॉप के लिए जाएंगे. तो अभी बने रहना है हमारे साथ कतर 2026 सुनते हुए अपनी अमिता के साथ FM 107 पर दिल से देसी.
1: आप सुन रहे हैं कतर 2026
2: only on FM 107 दिल से देसी.
0: So welcome once again. पिछले सेगमेंट पे हमने बात की म्यूजियम की, हिस्ट्री की और गोल्ड मेडल्स की. एंड सच में वो गोल्डन टच बड़ा कमाल का था, है कि नहीं? लेकिन अब वक्त है थोड़े गियर्स बदलने का. इनफ ऑफ बीइंग कल्चर एंड आर्टिस्टिक, अब थोड़ा शोर और थोड़ा स्पीड हो जाए. हम निकल रहे हैं दोहा से नॉर्थ की तरफ. एक ऐसी जगह जो फ्यूचर का फेस है. गैस कर लो कौन सी जगह है. Yes, I'm talking about Lucelle, the city of the future. आपने वो वाइब तो फील की ही होगी जब भी आप Lucelle की रोड्स में या आपकी वो स्काईलाइन देखते हुए या वो एटमॉस्फियर. आई मीन इट्स रियली नाइस. और वहां जाओ तो ऐसा लगता है कि हम 2026 में नहीं 2050 तक पहुंच गए. बट वहाँ हम सिर्फ बिल्डिंग्स देखने नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं वहाँ पर अपनी एनर्जी को बूस्ट करने, पंप करने. Lucelle Carting is calling. Yes, जनाब, yes. ट्रैक पर उतरने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक कर लेते हैं. Lucelle इंटरनेशनल सर्किट कोई मामूली ट्रैक नहीं है बॉस. वैसे आपको पता है कि Lucelle सर्किट पूरे मिडल ईस्ट का पहला ऐसा सर्किट है जिसने मोटो जीपी और फॉर्मूला 1 दोनों को होस्ट किया है. आई मीन जस्ट इमेजिन उस ट्रैक पर ल्यूइस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टैपन और वैलेंटिनो रोसी जैसे लेजेंड्स ने अपने टायर्स के निशान छोड़े हैं. आप वहां अपनी कार चला रहे होंगे. यस, यू आर लिटरली ड्राइविंग ऑन द ग्राउंड्स ऑफ लेजेंड्स. हाँ, जब आप वहां कार्टिंग जोन में होते हैं ना, तब आप वही हवा फील कर रहे होते हैं जो 300 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर F1 ड्राइवर्स फील करते हैं. इट्स नॉट जस्ट अ हॉबी जनाब, इट्स अ पिलग्रिमेज फॉर स्पीड लवर्स. अब बात कर लेते हैं थोड़ी टाइमिंग्स की. देखो, मई का महीना है ना, तो जाहिर सी बात है अब गर्मियां थोड़ी बढ़ रही हैं, धूप वगैरह भी निकली रहती है. तो अगर हमको कतर की ब्यूटी को इंजॉय करना है, देन आई शुड से अगर आप नाइट कार्टिंग का एक्सपीरियंस लेंगे, दैट्स गोना बी द बेस्ट वन. हाँ, तो नाइट कार्टिंग एट Lucelle एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस है. इमेजिन कीजिए, ब्लैक स्काई होगा, मैसिव स्टेडियम की वो जो स्टाइल फ्लड लाइट्स होंगी, और वो 1.2 किलोमीटर्स का एक लंबा ट्रैक, उफ, चमचमा रहा होगा. और आपको ऐसा

सीरीज आपका इम्तिहान लेगा, हर मोड़ एक नई कहानी आपके लिए होगा. वैसे मैंने काफ़ी जो इस तरह के रेसेस पे पार्टिसिपेट करते हैं, प्लस हमारे कुछ फ्रेंड्स भी हैं जिन्होंने मुझे गाइडेंस दी और कुछ टिप्स दी हैं जो मुझे लगता है कि अगर मैं आपसे शेयर करूंगी तो बड़ी काम आएगी. यहाँ पर सिर्फ पेडल दबाने से रेस नहीं जीती जाती, मैं तो कहूँगी स्पीड के साथ साथ थोड़ा सा दिमाग लगाना इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो फिर चलो टिप्स की तरफ आगे बढ़ते हैं. तो एक सीक्रेट सॉस है. सीक्रेट सॉस क्या है कि ट्रैक पर एक सेक्शन है टर्न 4. यस, सबसे ज्यादा लोग यहाँ पर ही गलती करते हैं, वो जल्दी टर्न ले लेते हैं. सो व्हाट आई विल से, डोंट डू दैट. टर्न 4 पर थोड़ा रुकिए, वेट फॉर इट, और फिर कॉर्नर को क्लिप कीजिए. हाँ जी, इससे क्या होगा, आप अपनी स्पीड को नेक्स्ट स्ट्रेट स्ट्रेच पर कैरी कर पाएंगे. एंड इट्स अबाउट बीइंग स्मार्ट, नॉट जस्ट फास्ट. और दूसरी चीज, ड्रेस कोड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ अच्छा दिखने के लिए नहीं, बट फॉर सेफ्टी पर्पस. हाँ जी, मैंने लुसेल में देखा है कि लोग मस्त स्लाइड से या चप्पल पहनकर आ जाते हैं. बॉस वहां से आपको वापस भेज दिया जाएगा. क्लोज्ड टो शूज आर मस्ट, आपको स्पोर्ट्स शूज पहनने ही पड़ेंगे, वरना आप सिर्फ साइड लाइन से रेस देख पाएंगे. स्टाइल अपनी जगह है, सेफ्टी और रूल्स अपनी जगह है, सो थोड़ा सेफ्टी पर हमें ध्यान देना है. उसके बाद फिजिक्स ऑफ ग्रिप, ये तो आपको पता ही होगा. चलो नहीं पता तो बता देती हूँ. कार्टिंग में स्टेयरिंग को बहुत टाइट मत पकड़िए, रिलैक्स योर शोल्डर्स. यस, जितना आप स्मूथ रहेंगे ना उतनी ही कार्ट तेज चलेगी. तो जनाब, अगर आप टिकट्स वगैरह बुक करने का सोच रहे हैं फॉर द कार्टिंग, रात 9 बजे की ही करें, वही स्लॉट बेस्ट होगा. क्यों? देखो मेरे तरफ से दो रीजन से. पहला तो टेम्परेचर बिल्कुल सेट रहेगा, इस टाइम तक ट्रैक का जो टेम्परेचर है वो परफेक्ट हो जाता है, टायर्स को जो ग्रिप चाहिए होती है ना वो इसी वक्त बेस्ट मिलती है. एंड ह्यूमिडिटी फैक्टर, कदर में हमें पता ही है कि मई के महीने में गर्मियां बढ़ रही हैं, ह्यूमिडिटी थोड़ी सी ना ट्रिकी हो जाती है. तो अगर रात 9 बजे की बात करें तो उसका लेवल थोड़ा सा ना पीक से हटते हटते हटते इट्स लाइक स्वीट स्पॉट. हाँ, थोड़ा ठीक हो जाता है, पर आपको ठंडक भी मिलेगी और पसीना भी कम आएगा. और हाँ, भूलना नहीं है आपको कि ये बड़ा ही पॉपुलर इवेंट है, सो डोंट वेट फॉर द लास्ट मोमेंट. हाँ, अपनी टिकट्स वगैरह बुक करें, ऑनलाइन करें, और लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं है, सीधा लाइन बनाए वहां जाकर, ठीक है, और इंजॉय करें उस फ्लडिंग एनर्जी को. तो जनाब, हमने डिजाइन से शुरू किया और स्पीड पर खत्म किया. मतलब 3-2-1 म्यूजियम में मेडल डिजाइन करना है हमको, ठीक है, फिर वहां के कैफे में कॉफी इंजॉय करना है, देन लुसेल की तरफ आकर रेस जीतना है. ओ माय माय, लिस्ट तो बहुत ही ज्यादा लंबी है कि नहीं. पर इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जो हम कतर में इंजॉय कर सकते हैं खुद के साथ, अपने दोस्तों के साथ और अपनी फैमिली के साथ. वो क्या है, चले बताते हैं. तो जनाब, आप सभी का वेलकम है फिर से. वैसे जब भी मैं बात करती हूँ कतर के बारे में तो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि इस मिट्टी के नीचे, इन गलियों के पीछे और इन पुराने किलों के अंदर कौन सी कहानियां छुपी हुई है. पर मैं कहूंगी कि कतर से अगर दोबारा प्यार करना है ना तो इनके बारे में जानना और इन जगहों पर जाना बहुत जरूरी है. एग्जैक्टली, क्योंकि कतर एक ब्यूटीफुल बुक की तरह है, एक ऐसी किताब कि अगर आप सिर्फ उसके कवर को देखकर छोड़ दोगे ना तो आपको असली स्टोरी कभी पता नहीं चलेगी बॉस. इसलिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस जर्नी पर चलें, और जहाँ हिस्ट्री, एडवेंचर हो और कुछ ऐसी जगहें जहाँ पर आपको फुल एंजॉयमेंट ही एंजॉयमेंट मिले, प्लस आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिए कमाल के पिक्चर्स, वीडियोस मिले, तो मैं कहूँगी ऐसी वाइब वाली जगहों को ना बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए. हाँ जी, सबसे ज्यादा टॉक्ड अबाउट इज सुख वाकिफ, द हार्ट बीट ऑफ दोहा. हाँ, ये टाइमलेस जगह है. मतलब सबसे पहले ना वहां चलेंगे जहां से शुरू होती है सारी कमाल की चीजें. जब भी आप कतर में एंट्री मारते हैं तो सबसे पहले जब कोई किसी से पूछता है कि कहां जा रहा है तो हर कोई ये रेकमेंड करेगा, भाई अब सुख वाकिफ चले जाए. ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी हिस्ट्री जो है ना वो 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है. इमेजिन कीजिए, जो बेदुविन लोग थे वो अपने ऊंट पर आते थे, यहाँ सामान खरीदते थे, 100 साल पहले से ये चीज चली आ रही है, और वो अपना माल भी बेचते थे, जैसे कि वूल हुआ, सिल्क हुआ, इसे ट्रेड भी करते थे. तो सोचिए, मतलब

वो माहौल क्या खूबसूरत रहा होगा. तो सुख का मतलब है मार्केट और वाकिफ का मतलब है स्टैंडिंग. यस, तो ये नाम क्यों पड़ा, कभी आपने सोचा इसके बारे में? चले आपको बताते हैं कि पुराने जमाने में समंदर का जो पानी था ना, वो यहाँ तक आ जाता था. कैन यू इमेजिन? तो वेंडर्स क्या करते थे, वेंडर्स को दिन भर खड़े होकर अपना सामान बेचना पड़ता था और इसीलिए इसका नाम सुख वाकिफ रख दिया गया. ओ हो, क्या बात है. वैसे लोग यहाँ अक्सर कई सारे रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, कुछ एकदम ही ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट्स हैं, कुछ फैंसी रेस्टोरेंट्स हैं, और यहाँ पर सामान खरीदना और बेचना बड़ा खूबसूरत लगता है. वैसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं जब भी सुख जाती हूँ ना,

यहाँ की जो आर्किटेक्चर है उसे देखकर आपको ऐसा लगेगा कि किसी पुरानी ओरिएंटल फिल्म में आप आ गए हैं. और ये कतर का सबसे पुराना मैप नेम है, यस, जो 150 एडी में था. हाँ, यहाँ जो बड़े बड़े पीजन टावर्स है ना, वो सिर्फ डिजाइन के लिए नहीं है जनाब, पर वो यूज भी होते हैं. इस विलेज को बनाया गया है एज अ मेल्टिंग पॉइंट, जहाँ ईस्ट और वेस्ट मिलते हैं. हाँ, जब आप कटारा जाएंगे ना, तब आपको ये भी एक चीज मिलेगी कि जो पीजन ड्रॉपिंग्स होती है, उसके वेस्ट होता है, उसे कलेक्ट किया जाता है फार्म्स के लिए, क्योंकि माना जाता है इट्स अ वर्ल्ड क्लास फर्टिलाइजर. एंड नेचर्स गोल्ड है भाई, गोल्ड है. वेल, सनसेट के वक्त टार्स देखेंगे आप.

ट्रैक करती थी इन पिजन्स को ताकि उनका वेस्ट कलेक्ट किया जा सके और फिर उसे खाद बनाकर इस्तेमाल किया जा सके खेतों में. इतना सस्टेनेबल है कि अगर आप धीरे से भी बोलेंगे ना तो पूरे थिएटर में सुनाई देगा. हाँ, इट्स सच अ ब्यूटीफुल प्लेस. वेल, तरारा में एक एम्फी थिएटर है, वहाँ सनसेट के टाइम पर अगर आप जाएंगे तो इट्स अ परफेक्ट परफेक्ट प्लेस फॉर द मेन कैरेक्टर फोटो. आप वहाँ खड़े हो, पीछे समंदर है और ऊपर खूबसूरत आसमान है, एंड इट्स एंड द प्लेस इज सो ब्यूटीफुल कि जब आप वहाँ पर पिक्चर्स लेंगे, वीडियोस बनाएंगे तो एक अलग वाइब आएगी. और अगर ये सब ना भी करेंगे और वहाँ खड़े रहेंगे सो यू विल फील कि क्या कमाल की जगह है बॉस. तो जनाब, आज हमने इतनी सारी जगहों के बारे में बात की, आई एम वेरी सर्टेन कि आप यहाँ घूमने फिरने जा सकते हैं. प्लस बड़ी कमाल कमाल की चीज़ें, हैपनिंग्स, इवेंट्स हमारे कतर में हो रही हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया. तो कतर 2026 के इस एपिसोड में इस हफ्ते बस इतना ही. अगले एपिसोड में देखेंगे और क्या क्या खास हो रहा है, कौन कौन सी जगहें हैं जहां आप जा सकते हैं और कौन कौन से इवेंट्स और हैपनिंग्स को आप कवर कर सकते हैं, उन्हें इंजॉय कर सकते हैं, उन सब के बारे में डिटेल में बात होगी. सो डोंट मिस दैट. ठीक है, अभी के लिए क्या करना है, अपने कैलेंडर की डेट्स को फ्रीज करना है कि हमें कहाँ जाना है, क्या करना है और कैसे कैसे अपने दिन को एंजॉय करना है. सो यू मेक योर प्लान्स. और इसके साथ आप हमसे जुड़े रहिए, FM 107 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए, हर जगह पर वी आर अवेलेबल. और हमारा जो ये व्हाट्सएप नंबर है 666-22-107, इस पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी आर्जमिता को भी आप सोच

सोशल मीडिया पे ढूंढ सकते हैं। तो फिलहाल के लिए enjoy your day, plan your days, plan your weeks और अपना खूब सारा ख्याल रखें, ठीक है? और अभी क्या करना है, मुझे दीजिए इजाजत। And yes, जाने से पहले ये कहना तो बनता है, हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। Stay tuned to FM 107, दिल से

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: तो दोस्तों वो दिन आ गया है जिसका आपको होता है इंतजार। FM 107 पे ऐसे बेहतरीन गाने जो आप अपने टॉप 10 की प्लेलिस्ट में ऐड करना चाहते हैं, और इस हफ्ते ऐसे कौन से गाने हैं जो हैं जबरदस्त, जो चल रहे हैं ट्रेंड में और जो हैं FM 107 के प्लेलिस्ट में टॉप 10 के अंदर। ये है एपिसोड टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक। इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का, मेरा नाम फजील और चलिए शुरू करते हैं इस खास शो को। गाना जो है ना ये हमेशा से हमारा साथी रहा है। आप देखें कि इंस्ट्रूमेंट के जरिए हमारे दिल को बहलाना, उसके अलावा फिर उसके बाद धीरे से वोकल्स आ गए, वोकल्स आने के बाद फिर कॉम्पोजिशन यानी कि गाने के अंदर जो म्यूजिक है उसको बेहतरीन किया गया, और फिर धीरे धीरे ये कमर्शियल बन गया। यानी कि ये जो गाने हैं ये लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, और ये आज के दौर के नहीं, ये बहुत पुराने दौर के हैं। और हमारा साथी ऐसे है कि हमें चाहे कोई फंक्शन हो, चाहे कोई मैरिज पार्टी हो, चाहे कोई इवेंट हो, बगैर म्यूजिक के, इवन कोई सफर हो, बगैर म्यूजिक के कटता ही नहीं है। तो ये बड़े मजेदार पल होते हैं जब हम घूमने फिरने जाते हैं, कहीं पहाड़ वादियों पे जाते हैं तो वहां के गाने अलग हो जाते हैं, कहीं सेलिब्रेशन करने जाते हैं तो वहां के गाने अलग हो जाते हैं। लेकिन ये जो टॉप 10 के गाने हैं ये इस तरीके से तो नहीं होते कि भाई सफर वाला गाना कौन सा है कौन सा नहीं, जो गाना अच्छा होगा वो टॉप 10 की लिस्ट में आ जाएगा। तो चलिए आज आपके सफर के कौन से गाने साथी हैं ये डिस्कवर करते हैं। नंबर 10 से लेकर नंबर 1 तक के बारे में हम बात करेंगे। वेल सबसे पहले नंबर 10 के बारे में
2: FM 107 टॉप 10।
1: दोस्तों नंबर 10 पे पिछले हफ्ते जो गाना ट्रेंड कर रहा था वही गाना अभी भी ट्रेंड कर रहा है। दिस इज आशिकों की कॉलोनी फ्रॉम द मूवी ओ रोमियो। जबरदस्त ये ट्रैक है जिसके सिंगर हैं मधुबन बागची और जावेद अली, और लेजेंडरी गुलजार साहब ने ये लिखा भी है इस गाने को। और उसके अलावा इश्क का इत्र महंगा है पर ले लिया, पिछले हफ्ते आपको बताया था ना, ये जो लाइन है लोगों को बड़े मजे से ये रील में इस्तेमाल करने में मजा आ रहा है, दिल खुश हो रहा है उनका। उसके अलावा इस गाने में विशाल भारद्वाज भी हैं। 2026 की ये रोमांटिक एक्शन थ्रिलर मूवी है ओ रोमियो, जिसका ये गाना बहुत ही लंबे वक्त से ट्रेंड कर रहा है। वेल मुझे लगता है कि शायद नेक्स्ट वीक ये गाना निकल जाएगा, लेकिन इसके टक्कर का वो गाना आना भी चाहिए। ऑल्दो कई गाने इस हफ्ते आए हैं जो टॉप 10 की लिस्ट में आते ही नंबर 3 पर आ गए हैं भाई साहब, और नंबर 3 वाला गाना बहुत नीचे पहुंच गया है। वेल वो कौन कौन से गाने हैं आपको पता चलेगा। फिलहाल नंबर 10 का ये गाना अभी ट्रेंड कर रहा है, और इसके लायक कोई अभी तक गाना नहीं आया जो इस गाने को रिप्लेस कर सके। दिस सॉन्ग इज आशिकों की कॉलोनी फ्रॉम द मूवी ओ रोमियो। कंपोजर है इसके।

0: विशाल भारद्वाज। इंस्ट्रूमेंट की अगर हम बात करें तो इसे अरेंज किया, इंस्ट्रूमेंट को अरेंज किया है मैकदीप बोस ने और इसको सुपरवाइज्ड किया है संजीव सेन ने। अगर हम इंस्ट्रूमेंट पे देखें तो तबला है, घुंघरू है, ढोलक है, ओवरऑल मॉडर्न एलिमेंट का इस्तेमाल है, जैसे गिटार है, बेस है, मॉड्यूलर सिंथेसाइजर है, तो ओवरऑल ये 90s के रेट्रो से लेकर अभी तक जबरदस्त ये गाना है। कव्वाली इन्फ्लुएंस भी आपको इस गाने में मिलेगा। दिस सॉन्ग इज आशिकों की कॉलोनी। और फिर नंबर 9 पे है रांझा। पिछले हफ्ते 3 नंबर पे था, तो सोचिए इसके टक्कर को कोई तो सॉन्ग आया होगा और ये ड्रास्टिकली नीचे आ गया है। ये गाना है दिलजीत दोसांझ का फीचरिंग सिया एंड डेविड। रांझा बड़ा ही लाजवाब गाना है, लेकिन क्योंकि और भी गाने लगातार रिलीज हो रहे हैं, इस हफ्ते जो हमारे लिस्ट में गाना आया है जो नंबर 3 पर पहुंच गया, वो एक्चुअली काफी लंबे वक्त से रिलीज हो चुका, करीब मेरे ख्याल से 15-17-18 दिन हो गए उसको रिलीज हुए, लेकिन हमारी प्लेलिस्ट में अब वो ऐड हुआ है, इसके वजह से रांझा नंबर 9 पे आ गया है। इसे गाया है दिलजीत दोसांझ ने, लिरिसिस्ट है अगेन दिलजीत दोसांझ एंड दिस सॉन्ग इज कंपोज बाय डेविड। इंस्ट्रूमेंट पे देखो यार, पंजाबी फोक में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते हैं, ट्रेडिशनल पंजाबी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल होता है, और इस बार रांझे गाने में ये करके दिखाया है दिलजीत साहब ने, लाजवाब ये गाना है। ट्रेंड कर रहा था, पिछले हफ्ते नंबर 3 पर था, बट अब आ गया है नंबर 9 पे। इस गाने को एंजॉय करें, वापस आएंगे तो फिर हम बात करेंगे नंबर 8 और नंबर 7 के बारे में कि चांद का ये कौन सा गाना है जो दोनों पिछले हफ्ते भी सेम पोजीशन पे थे। सुनते रहे FM 107, दिल से देसी।
1: FM 107 टॉप 10, नंबर 10।

0: FM 107 Top 10.
1: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, क्या है हाल चाल? FM 107 पे दोस्तों फजील के साथ हैं आप, ये शो है टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक। वेल, नंबर 10 पे आशिकों की कॉलोनी और नंबर 9 पे रांझा गाना।

0: सुना जो नंबर 3 से खिसक के नंबर 9 पे आए, लेकिन अब नंबर 8 और नंबर 7 पे वो सेम गाने जो पिछले हफ्ते भी थे। नंबर 8 पे है चांद मेरा दिल, ये टाइटल ट्रैक है जिसमें लक्ष्य है, अनन्या है, सचिन जिगर, फहीम अब्दुल्ला और अमिताभ भट्टाचार्य।
1: चांद मेरा दिल, चांद मेरा दिल।
0: वेल, फहीम और अमिताभ का रोल तो आपको पता ही होगा। चांद मेरा दिल ये टाइटल ट्रैक बहुत ही रोमांटिक और प्यारा गाना है। उसके अलावा ये काफी ट्रेंड कर रहा है। क्रिटिसाइज करने वाले क्रिटिक्स ने भी इस गाने को बहुत ज्यादा पसंद किया है। अगर हम म्यूजिकल और लिरिकल हाईलाइट के बारे में बात करें तो सचिन जिगर की कॉम्पोजिशन पिछले 2-3 साल में और ज्यादा इतनी स्ट्रांग हो गई है कि अगर इनकी कॉम्पोजिशन है तो गाना एक्चुअली कॉम्पोजिशन की वजह से भी हिट होने लगा है, ये सचिन जिगर ने बताया है ना। उसके अलावा रॉकी हैवी साउंड आपको इसमें सुनने को मिलेगा विद कंटेम्प्रेरी लिरिक्स विद अ क्लासिक सोलफुल वाइब। वोकल्स पे ऑब्वियसली फहीम अब्दुल्ला हैं, और जब हमने अमिताभ भट्टाचार्य की बात करी तो आपको पता चल गया होगा कि कागज पे आग लिखने वाले आजकल तो अमिताभ भट्टाचार्य ही हैं। उसके अलावा ये इफेक्टिव गाना जिसमें आरव और चांदनी की लव स्टोरी है आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। विजुअल केमिस्ट्री में भी लक्ष्य और अनन्या बहुत पसंद किए गए हैं। इस गाने को एंजॉय करें, कॉल्ड चांद मेरा दिल। और नंबर 7 पे है मातृभूमि का ये ट्रैक कॉल्ड चांद देख लेना।
2: तुम चांद देख लेना, तुम्हें हम नजर आएंगे।
0: अगेन जैसे कि आपको पिछले हफ्ते बताया था, वैसे ये बात मैं बार बार इसलिए बता देता हूँ कि कुछ लोग नए लोग हैं जिन्होंने हो सकता है ऐसा कि देखा ही ना हो या पता ना हो, चांद देख लेना ये एक अच्छा गाना है। इस गाने में ज्यादा बड़ा रोल सलमान खान का है। इसकी वजह है कि निहाल और अनगुना को मौका दिया है सलमान खान ने। इसके लिरिसिस्ट हैं समीर अंजान और कंपोजर हैं हिमेश रेशमिया। उसके अलावा सितार, फ्लूट, गिटार का इस्तेमाल, वायलिन का इस्तेमाल लाजवाब किया है। सितार पे सुनील कटी हैं, जितेंद्र हैं वायलिन पे, लोकेश हैं फ्लूट पे और गिटार बजाया है दीपक सिन्हा ने। ये 2026 का रिलीज होने के बाद ट्रेंडिंग वाला ये गाना सलमान खान की वजह से भी पसंद किया जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली यार सलमान खान है और सलमान खान ने नए फ्रेश आवाज को मौका देना या फ्रेश चेहरे को मौका देना नहीं छोड़ा है। इसलिए सलमान खान ने इन दोनों को मौका दिया और बता दिया कि निहाल और अनगुना काफी लंबे वक्त तक रुकेंगे, क्योंकि ये गाना अच्छा खासा ट्रेंड कर रहा है। लेकिन हाँ, खिसक के धीरे धीरे अब नंबर 7 पर जरूर आ गया। नंबर 7 पे इस गाने को एंजॉय करें। वापस आएंगे तो बात करेंगे हम नंबर 6 के बारे में। जो नंबर 6 का गाना था वो हट गया, ऐसा नहीं कि नंबर 6 का गाना नंबर 9 पर गया हो, 10 पर गया हो, नंबर 6 का गाना गायब ही हो गया। सोचो एक ऐसे गाने आए हैं या एक दो ऐसे गाने आए जिसके वजह से वो गाना गायब हो गया, नंबर 3 पर आया कोई गाना और नंबर 3 वाला नंबर 6 पे आ गया। बात करेंगे नंबर 6 और नंबर 5 के बारे में। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, दिल से
3: देसी। FM 107 Top 10 Number 8।

0: FM 107 Top 10.
1: अस्सलाम वालेकुम, FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों, आप सभी का ये खास शो टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक आप सुन रहे हैं और ये गाना रोमांटिक वर्जन है, उम्मीद है पसंद आया होगा। लेकिन अगला गाना मैं कैसे इसे डिस्क्राइब करूं, रोमांटिक तो नहीं है लेकिन हाई बीट भी नहीं कह सकते, बट फील हाई बीट का है, ठीक है, लो बीट कह सकते हैं बट फील भी लो बीट का है। आई डोंट नो, मतलब ये तो आप देखिए आप ही डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि ये गाना बहुत से लोगों में इसलिए सिर्फ पसंद किया जा रहा है कि इसके लिरिक्स अच्छे हैं और गाने का जो तरीका है वो बड़ा ही लाजवाब है। इससे पहले कि नंबर 6 के बारे में हम बात करें, जो अभी FM 107 जिन्होंने ट्यून इन किया है उनको बता दें, नंबर 10 पे ओ रोमियो का ट्रैक आशिकों की कॉलोनी था, नंबर 9 पे दिलजीत दोसांझ का गाना रांझा, और नंबर 8 पे चांद मेरा दिल टाइटल ट्रैक है ये, और उसके बाद नंबर 7 पे आ गया था मातृभूमि का चांद देख लेना। एंड नाउ अबाउट नंबर 6, धुरंधर द रिवेंज मूवी का ये गाना बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, नंबर 1 पर थे कुछ दिन पहले, मेरे ख्याल से 2-3 हफ्ते पहले ये भाई साहब नंबर 1 पर थे, अब ये खिसक के नंबर 2 या नंबर 3 पर, नंबर 3 पर आए थे और अब शायद नंबर 6 पर ये काफी लंबे वक्त तक शायद ट्रेंड कर सकता है अगर बहुत अच्छा कोई गाना नहीं आया। दिस सॉन्ग इज सो स्ट्रॉन्ग कि ये नंबर 6 पर आ गया है नए गाने आने के बावजूद, स्ट्रॉन्ग नए गाने आने के बावजूद। जाइए सजना,
2: सारियां विसर गईयां रावा वे खेड़े पासे जाइए सजना।
1: धुरंधर द रिवेंज मूवी का पंजाबी सूफी एलिमेंट वाला जिसमें मॉडर्न सिनेमा है वायरल सेंसेशन गाना जाइए सजना, एंड दिस सॉन्ग इज कंपोज बाय शाश्वत सचदेव जिसे गाया है जैस्मीन ने, और सतिंदर सरताज के जो रॉ वोकल है वो बड़ा लाजवाब है। कॉम्पोजिशन के बाद अगर हम लिरिक्स की बात करें तो अगेन ये सतिंदर और जैस्मीन ने लिखा है, साथ में कॉन्ट्रीब्यूशन दोनों का है। ये पोएटिक मेटाफर का इस्तेमाल, मॉडर्न एलिमेंट, इमोशन, हर एक चीज अगर किसी गाने में हो सकती है तो वो शायद यही गाना है। जबरदस्त ट्रेंड कर रहा है नंबर 6 पर। और नंबर 5 पर बात कर लेते हैं, नंबर 5 पे है ये कॉकटेल 2 मूवी का ट्रैक जब तलक। छोटा सा गाना है लेकिन इसे गाया है लेजेंडरी रिटायर हो गए सिंगर अरिजीत सिंह ने, अकाशा सिंह है और मधुबंती बागची है। वेल

0: आकाशौर मधुबंती बागची ने रिटायरमेंट नहीं लिया है। वैसे अरिजीत के बारे में ये था कि भाई अरिजीत आपने तो इतने सारे प्रोजेक्ट ले के रखे हैं, आप रिटायरमेंट कैसे ले सकते हैं? तो उन्होंने बताया कि अब रिटायरमेंट ले रहा हूँ, बाकी 3-4 साल तक लगातार बुकिंग जो है वो है, तो वो गाने तो गाएंगे। सो जब तक कॉकटेल 2 मूवी का ट्रैक है बड़ा ही लाजवाब और लिसनर्स इसे बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, केयरफ्री बीच पार्टी का इसमें वाइब जो है वो डाला गया है। उसके अलावा अगर हम बात करें अरिजीत अकासा और मधुबंती बागची की जो ट्यूनिंग है वो लाजवाब, और फिर कंपोजिशन है प्रीतम चक्रवर्ती की, ज़बरदस्त ये सॉन्ग रिटन बाय अमिताभ भट्टाचार्य। इस गाने को एंजॉय करें और अब हम बात कर लेते हैं नंबर 4 और नंबर 3 के बारे में, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम इन दो गाने के बारे में बात करेंगे। अगर आपने अभी ट्यून इन किया है तो सुन लो नंबर 5 पे जब तलक, नंबर 6 पे जाइए सजना, नंबर 7 पे चांद देख लेना, नंबर 8 पे चांद मेरा दिल, नंबर 9 पे रांझना बाई दिलजीत दोसांझ, और नंबर 10 पे आशिकों की कॉलोनी फ्रॉम द मूवी ओ रोमियो। सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।
1: FM 107 टॉप 10 नंबर 6।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: दोस्तों, गाड़ियों के ड्राइवर्स और दीगर सड़क इस्तेमाल करने वालों को अर्जेंट इमरजेंसी के दौरान इमरजेंसी व्हीकल्स जैसे के सिविल डिफेंस, एम्बुलेंसेस, फायर इंजन्स और पुलिस की गाड़ियों को गुजरने के लिए रास्ता देना चाहिए। इन गाड़ियों के ड्राइवर्स मल्टी टोन साइरन्स और मखसूस लाइट डिवाइसेस के जरिए आपको बताते हैं कि उस वक्त इन्हें अर्जेंट इमरजेंसी है और इस इमरजेंसी

0: किसी कॉल के दौरान इन गाड़ियों को ओवरटेक करने से या इमरजेंसी व्हीकल्स के पीछे 50 मीटर से कम फासला बनाए रखने से आपको ट्रैफिक वायलेशन का सामना करना पड़ सकता है। ड्राइविंग के वक्त सतर्क रहिए और दूसरों का ख्याल रखना हम सब की जिम्मेदारी है। FM 107 आप सबकी खुशगवार जिंदगी का ख्वाहिशमंद है।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी
3: FM 107 टॉप 10 नंबर 5।

0: FM 107 Top 10.
1: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। FM 107 पे फजील के साथ हैं आप, और नंबर एक का गाना अगर नंबर चार पर आ जाए तो दुख तो होता ही है, और ऐसा ही हुआ है इस हफ्ते के टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक में। तो दोस्तों, मेरा नाम है फजील, और टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक में अभी तक हमने बात करी बेहतरीन से गानों के बारे में, और अब धुरंधर का एक ऐसा गाना जो नंबर एक पर ट्रेंड कर रहा था, फिर वो नंबर दो पर आया, और कुछ गाने ऐसे आए कि अब ये नंबर चार पर आ गया है। इवन आफ्टर अगर नंबर चार पे आ गया, खिसक कर नीचे आ गया, टॉप 10 की लिस्ट से ये बाहर जाएगा नहीं मेरे ख्याल में, दो तीन हफ्ते तक तो शायद ना जाए, बाकी जनता की अपनी डिमांड। धुरंधर द रिवेंज मूवी का ये ट्रैक, आरी यारी यारी, आय हाय, सिंगर नवतेज सिंह रेहाल बॉम्बे रॉकर्स के, खान साहब, जैस्मीन सैंडलेस, सुधीर यदुवंशी, रेबल और टोकन। जब भी मैं धुरंधर मूवी की बात करूं, धुरंधर के गानों की बात करूं, तो आप शाश्वत सचदेव को मत भूलिएगा, क्योंकि सारे गानों की कॉम्पोजिशन शाश्वत ने ही करी है। इस गाने के लिरिक्स में है इरशाद कामिल और बॉम्बे रॉकर्स। उसके अलावा इंस्ट्रूमेंट पे हम बात करें, इलेक्ट्रॉनिक बीट्स, हैवी बेस, पंजाबी फोक का इस्तेमाल इस गाने को और भी ज्यादा पार्टी एंथम, वाइबी, और मतलब कहीं पर भी ऑन कर दे चल जाएगा। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां पर माहौल थोड़ा हल्का हल्का चल रहा होता है, बहुत सोबर लोग होते हैं, आप ये गाना प्ले कर देना, सबके अंदर खून का बहाव जो है वो तेज हो जाएगा। ये वही गाना है, आरी आरी फ्रॉम द मूवी धुरंधर द रिवेंज। और अब बात कर लेते हैं नंबर तीन के बारे में। वैसे अभी तक कई गाने आपने देखे कि ऊपर नीचे, ये नंबर एक पर था नंबर तीन पर आ गया, ये नंबर तीन पर नंबर सात पे आठ पे आ गया, तो उथल पुथल हुई है। किन की वजह से उथल पुथल हुई है? वो पहला गाना है नंबर तीन पर, पति पत्नी और वो दोनों मूवी का ये ट्रैक है, हाई एनर्जी वाला पंजाबी स्टाइल का, और पंजाबी स्टाइल वाले आजकल गाने बहुत ज्यादा चल रहे हैं, और एक एरा होता है ना, तो उस एरा में पंजाबी स्टाइल इस बार और आने वाले कुछ मेरे ख्याल से 5-10 साल और रहेंगे अभी, और मॉडर्न रिक्रिएशनल ये गाना, क्लासिक वर्जन, वाइब और टोन की अगर हम बात करें, हाई स्पिरिटेड ये गाना, डांस नंबर भी है, फिर क्रिटिक्स भी इसे पसंद कर रहे हैं, फैंस ने इसे बहुत प्रेज किया है। एंड अबाउट द केमिस्ट्री एज वेल, आयुष्मान और वामिका गब्बी, साथ में सारा अली खान, राकुल प्रीत, इन सब की जो केमिस्ट्री है वो लाजवाब। गुरु रंधावा और हीर के वोकल्स हैं, एंड दिस सॉन्ग इज नन अदर देन रूप दी रानी।
2: काली तेरी चोटी है परांदा तेरा लाली, वो रूप दी ओ रानी तू परांदे को संभालनी।
1: रूप दी रानी फ्रॉम द मूवी पति पत्नी और वो दोनों। उसके अलावा आयुष्मान बहुत दिनों बाद एक फनी मूवी लेकर आए हैं, और मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा इंतजार किए जाने वाली मूवी है। ढोल और पर्क्यूशन का इस्तेमाल, सिंथेसाइजर, इलेक्ट्रॉनिक बीट्स पे मेलोडिक लेयर के साथ इस गाने को बनाने के बाद शायद व्यूज देखने की जरूरत ही नहीं है, या पसंद कितने लोग करेंगे ये सोचने की जरूरत नहीं है म्यूजिक डायरेक्टर को, क्योंकि ये गाना नंबर तीन पर कर रहा है ट्रेंड, कॉल्ड रूप दी रानी। सुन रहे हैं FM 107, इस गाने को करें एंजॉय, और वापस आएंगे तो नंबर दो और नंबर एक के बारे में करेंगे बात। दिल से देसी।

0: FM 107 Top 10.
1: अस्सलाम वालेकुम, FM 107 पे फजील के साथ हैं आप। ये शो टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक, और वक्त आ गया है नंबर 2 के बारे में बात करने का। नंबर 2 पे है वो सॉन्ग अगेन जिसकी वजह से कई गाने उथल पुथल हो गए हैं इस हफ्ते की टॉप 10 की लिस्ट में। और है जवानी तो इश्क होना है, इस गाने का ये ट्रैक है जिसमें वरुण है, मृणाल है, पूजा है, तनिष है, हार्डी, किरण, रोनी और गिल, इन सब ने मिलकर जो काम किया है तो नंबर 1 पर होना चाहिए, बट स्टिल नंबर 2 पर है। नंबर 1 पर किसने कब्जा जमाया है पता चलेगा कुछ ही देर में। ये पार्टी एंथम सॉन्ग है जवानी तो इश्क होना है मूवी का ट्रैक, और इस गाने में है वरुण धवन, मृणाल ठाकुर, पूजा और ग्लैमरस लोगों का जो पावर पैक डांस नंबर है तो वो उसकी वजह से काफी व्यूज भी आए। ऑल दो नंबर 2 पे ये गाना इसलिए नहीं है कि व्यूज आए, वाइब जबरदस्त, टोन जबरदस्त, कंपोज बाय तनिष बागची, डेविड धवन का जो स्टाइल है सेलिब्रेटरी ट्रैक का वो भी लाजवाब है। उसके अलावा परफॉर्मेंस हार्डी संधू का है, किरण बाजवा का है, दिस सॉन्ग इज वाओ। बिल्कुल वाओ ये सॉन्ग हार्डी, किरण, रोनी, गिल। उसके अलावा इंस्ट्रूमेंट में सही चीजों का इस्तेमाल आपको सुनाई दे जाएगा। एंजॉय करें इस गाने को, बड़ा ही लाजवाब और काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। एक शिकायत आपकी जरूर हो सकती है कि यार ये गाना तो काफी लंबे वक्त से हिट चल रहा है, मतलब लोग बहुत ज्यादा सुन रहे हैं, बट नंबर 8 या 9 पे आना चाहिए अगर इतनी लेट में आपके पास आ रहा है तो। यार ये गाना एक्चुअली हमारे पास लेट में आया वरना ये गाना एक्चुअली में बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है। और ये जो नौजवान लड़के जिनके पास काबिलियत है, कैपेबिलिटी है ट्रेंड कराने की, उन लोगों को ये गाना बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। नंबर 2 पे वाओ ये गाना सुने FM 107 पे, और फिर वापस आइए तो नंबर 1 के बारे में करेंगे डिस्कस।
0: FM 107 टॉप 10 नंबर 2।

0: FM 107 Top 10.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FM 107 पे फजील के साथ है दोस्तों, आप सुन रहे हैं टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक। और अगर आपने अभी ट्यून इन किया है तो आपको बता दें, नंबर 10 से लेकर नंबर 2 के कौन से गाने इस हफ्ते ट्रेंड कर रहे हैं। नंबर 10 पे ओ रोमियो का आशिकों की कॉलोनी, नंबर 9 पे दिलजीत दोसांझ का गाया हुआ रांझा, जिसके लिरिक्स लिखे हैं अगेन दिलजीत ने, कंपोज किया है डेविड ने। चांद मेरा दिल, ये भी बड़ा लाजवाब गाना, और इस गाने को यानी कि चांद मेरे दिल को गाया है फहीम अब्दुल्ला ने, लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने। चांद देख लेना मातृभूमि मूवी का ट्रैक निहाल और अनकुना है, इनके बारे में अब तक तो आपको पता चल गया, नए लोग हैं, इन्होंने गाना गाया है और मौका दिया है सलमान खान ने। लिरिसिस्ट समीर अंजान, कंपोजर हिमेश रेशमिया। नंबर 6 पे जाइए सजना, मुझे पता है हो सकता है आपकी नाराजगी हो कि ये नीचे क्यों आया, क्यों, मैं क्या कर सकता हूँ भाई, हमारे हाथ में थोड़ी है सब कुछ, थोड़ा तो है लेकिन जो बाकी गाने हैं वो बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। धुरंधर का ये गाना जाइए सजना नीचे जरूर आया है। उसके अलावा नंबर 5 पे है जब तलक कॉकटेल 2 मूवी का ट्रैक, नंबर 4 पे आरी आरी अगेन धुरंधर का ट्रैक, नंबर 3 पे पति पत्नी और वो दो का रूप दी रानी, और नंबर 2 पे अभी आपने गाना सुना है जवानी तो इश्क होना है, जिसमें वरुण है, मृणाल, पूजा है, तनिष्क का कॉम्पोजिशन, हार्डी का गाया हुआ ये गाना जिसमें किरण रोनी गिल है, लाजवाब ये गाना। और अब नंबर 1 पे अगेन धुरंधर का ये गाना, और कुछ देर पहले आपको बताया था ना कि जब धुरंधर की बात करें तो कॉम्पोजिशन में सिर्फ आप शाश्वत सचदेव को सोचिएगा। नुसरत फतेह अली खान का आमतौर पे इस गाने को यू नो कह सकते हैं, आमतौर पे ये गाना नुसरत साहब का है, लेकिन क्योंकि लिरिसिस्ट भी नुसरत साहब ही है, सिंगर इसके खान साहब और शाश्वत सचदेव हैं। अभी तक तो शाश्वत बहुत देर से कॉम्पोजिशन कर रहे थे, उन्होंने कहा गा भी देते, जान से गुजरते हैं, ये गाना इतना अच्छा है कि आपको लगेगा कि कॉम्पोजिशन छोड़ के शाश्वत तुम गाते क्यों नहीं हो यार। जबरदस्त ये गाना, जितार हारमोनियम के साथ सूफी फ्यूजन के साथ इस गाने को लॉन्च किया गया है, लोगों में बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है। ऑल्दो इसके काफी व्यूज रणवीर सिंह के कैरेक्टर को लेकर, रणवीर सिंह के वीडियो को लेकर भी बहुत ज्यादा व्यूज आए हैं, लोगों ने पसंद किया है। एक सेंसेशनल गाना अगर आप सुनना चाहते हैं तो वो नंबर 1 पर काफी लंबे वक्त तक बना रहेगा और बना हुआ है। दिस सॉन्ग इज फ्रॉम द मूवी धुरंधर द रिवेंज गॉड। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, एंजॉय करें इस नंबर 1 के गाने को, और इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट एपिसोड में इसी शो में जिसका नाम है टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक। सुनते रहें FM 107, दिल से देसी।
0: FM 107 टॉप 10 नंबर 1।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa। हेल्थ फॉर ऑल, कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी 2030 कहता है हेल्थ फॉर ऑल। और हमारे इस खास शो में बात होगी सेहत से मुतालिक मुस्तनद मालूमात और जिंदगी बचाने वाली आगाही की। सुनिए प्रोग्राम हेल्थ फॉर ऑल डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ फॉर ऑल, जहां हम बात करते हैं सेहत, सुकून और बेहतर जिंदगी की। हेल्थ फॉर ऑल एक ऐसा प्रोग्राम जो आपकी सेहत, जहनी सुकून और बेहतर तर्ज जिंदगी के लिए वक्फ है और कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी 2030 के विजन के मुताबिक सेहतमंद माशरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम एक ऐसे मसले पर बात करेंगे जिसे अक्सर लोग बीमारी ही नहीं समझते या हेल्थ इश्यूज नहीं समझते, लेकिन ये खामोशी से हमारे जिस्म, हमारे दिमाग, नींद और दिल पर गहरा असर डाल रहा होता है और वो मसला है नॉइस पोल्यूशन, शोर की आलूदगी, जिसमें गाड़ियों का शोर है, तामीराती काम है, ऊंची आवाज़ में मौसीकी जो है वो चल रही होती है, हेडफोन्स हैं, इसी तरह मार्केट्स में, बाज़ार में जो मुख्तलिफ आवाज़ें हैं उनका मुसलसल शोर है। तो क्या हम समझते हैं कि ये सिर्फ परेशानी है या वाकई ही हेल्थ के बहुत सारे जो मसाइल हैं उनका सबब भी बन सकता है? आज हम मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ, हमद मेडिकल कॉरपोरेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और NHS UK की रोशनी में इस मौजू को तफसील से समझेंगे। नॉइज़ पॉल्यूशन सनत, ट्रांसपोर्ट, लाउड स्पीकर्स वगैरह जैसे ज़राए से पैदा होने वाली इंतहाई शोर की वजह से हो सकती है और इसमें बहुत सारे जो मसाइल हैं जैसे सर दर्द है, दर्द शकीका है, असाबी खराबी है, दिल के बहुत सारे मसाइल हैं, उसका तमाम चीज़ों को ये सामने रखते हुए ये देखा जा सकता है कि उससे इंसानी सेहत बुरी तरह से मुतासिर होती है। इसी तरह जो नॉइज़ पॉल्यूशन है इंसानों और जानवरों पर भी जो नुकसानदेह असरात के साथ शोर या आवाज़ का एक फैलाव है। दुनिया भर में बैरूनी शोर का ज़रिया बुनियादी तौर पर मशीनों, नकलो हमल और बहुत सारे जो और निज़ाम हैं उनकी वजह से है। इसी तरह से जो नाकस शहरी मनसूबा बंदी है उसमें जो शोर की तकसीम है वो ही इस पूरी पॉल्यूशन को जन्म दे सकती है। इसके साथ साथ सनती और रहायशी इमारतें रहायशी इलाकों में शोर की आलूदगी का बायस बनती हैं। इसी तरह रहायशी इलाकों में शोर के कुछ अहम ज़राए हैं जैसे कि ऊंची आवाज़ में मौसीकी सुनना, इसी तरह ट्रैफिक है, रेल है, एरोप्लेन्स हैं, इस तरह जब लॉन की देखभाल की जा रही होती है या कहीं जो कंस्ट्रक्शन हो रही है या बिजली के जो जनरेटर हैं, इसी तरह जो विंड टर्बाइन है या बाज़ुकात कुछ दिमाग के भी हो सकते हैं और उसमें बहुत सारे लोग भी शामिल होते हैं। शहरी माहौल में शोर से

लिसनर्स ये समझना कि जो शोर की सतह है वो क्या है, जैसे कि डेसिबल है, एक यूनिट है, तो वो उससे शोर की सतह को नापा जा सकता है। जैसे अगर कोई सरगोशी कर रहा होता है तो उसकी जो सतह है वो 30 डेसिबल हो सकती है, यानी आवाज़ की जो सतह है सरगोशी करने पर 30 डेसिबल होती है। और जब आम बातचीत कर रहे होते हैं नॉर्मल जैसे है, तो उसमें जो आवाज़ की सतह है वो 60 यानी 60 डेसिबल होती है। इसी तरह से जो ट्रैफिक है, भारी ट्रैफिक है, वो 85 प्लस डेसिबल होती है। और ये जितनी देर तक इस आवाज़ में रहेंगे तो वो फिर हमारे लिए नुकसानदेह होती चली जाती है। 85 डेसिबल से ज़्यादा आवाज़ ज़्यादा देर तक उसका सामना करना नुकसानदेह हो सकता है। अचानक बुलंद आवाज़ यानी 120 डेसिबल प्लस फौरी नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने इर्द गिर्द की आवाज़ों की सतह का जायज़ा लें और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शोर के ज़राए के बारे में ज़रूर सोचें। नॉइज़ पॉल्यूशन को अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है, जिसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का महज एक झंझलाहट समझा जाता है, मगर हमारी सेहत और माहौल पर शोर के तवील मुद्दती असरात बड़े पैमाने पर हैं। कबल अज वक्त अमवात, इसी तरह दिल के मसाइल, डायबिटीज़ और मेंटल हेल्थ के मसाइल अहम किरदार अदा करते हैं। बच्चे भी ख़ास तौर पर शोर के असरात का शिकार हैं और ये एक मसला है कि तमाम यूरोपियन यूनियन के रुकन ममालिक को फौरी तौर पर हल करने की ज़रूरत है, बल्कि पूरी दुनिया में ही इसकी कोशिशें जारी हैं। अगर हम नॉइस पॉल्यूशन को कम करने के लिए जो 2030 का जो विजन है उसे भी सामने रखें तो बहुत सारे मसले हम हल कर सकते हैं। सड़कों पर ट्रैफिक की शनाख्त नॉइस पॉल्यूशन के सबसे बड़े ज़रिए के तौर पर की जाती है, ख़ास तौर पर गुंजान आबाद शहरी इलाकों में, जहां बहुत सारे लोगों की जो तादाद है मुतासिर होती है। इसी तरह दुनिया में माहौलियाती शोर की हदायत के तहत मुकर्रर करदा जो हदूद हैं उसमें देखा गया है कि तकरीबन 92 मिलियन अफराद जो हैं उन्हें नुकसान पहुंच रहा है, शाम और रात के शोर की सतह से ही देखा जा रहा है। इसी तरह जो मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उनके तहत शोर की हदें दिन और शाम के दौरानिया के लिए 55 डेसिबल और रात की मुदत के लिए 50 डेसिबल रखी गई हैं। इसके मुकाबले में जो रेलवे शोर है वो दिन, शाम और रात की मुदत के दौरान 18 मिलियन अफराद को मुतासिर करता है, जबकि एरोप्लेन का शोर तकरीबन 2.6 मिलियन उसमें दिन, शाम और रात ही उन्हें मुतासिर करता है। अगरचे रेल और हवाई जहाज़ का शोर मजमू तौर पर कम अफराद को मुतासिर करता है, लेकिन वो मुकामी शोर की आलूदगी के लिए अहम ज़राए बने हुए हैं। ख़ास तौर पर बड़े बड़े जो रेल ट्रांसपोर्ट को जो कॉरिडोर्स हैं और इस तरह से जो हवाई अड्डों के करीब हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक जो माहौलियाती शोर के जो मुख्तलिफ सतह रखी गई है उस पर भी काफ़ी गौर व फिक्र जारी है। इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा अफराद ट्रांसपोर्ट से मुतालिक शोर का जो शिकार हैं। जब इनको देखा गया, उनकी सतह पर गौर किया जाए तो ये अंदाज़ा लगाया गया है कि तकरीबन 150 मिलियन अफराद आबादी का 30% से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट के ज़राए से गैर सेहत बख्श शोर की सतह का शिकार हैं। इसी तरह जो नॉइस पॉल्यूशन है ना सिर्फ परेशान कुन है बल्कि ये सेहत के वसी असरात का सबब भी बन सकती है। ये आमतौर पर झंझलाहट और नींद में खलल जैसे असरात से वाबस्ता है। यूरोप में तवील अरसे तक नकल व हमल के शोर से एक अंदाजे के मुताबिक 66,000 कबल अज वक्त अफवात, इसी तरह दिल के अमराज के लिए 50,000 नए केसेस और टाइप 2 डायबिटीज़ के जो हैं 22,000 नए केसेस का ताल्लुक था। इसके अलावा नई तहकीक के मुताबिक शोर डिप्रेशन और डिमेंशिया के हज़ारों मामलात में मुमकिन तौर पर हिस्सा डाल सकता है। इसी तरह बच्चों और जो नौ उम्र अफराद हैं उनमें एक

0: होना चाहिए और यही वो समझ भी रहा है।
1: हेल्थ फॉर ऑल, कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी 2030 कहता है हेल्थ फॉर ऑल। और हमारे इस खास शो में बात होगी सेहत से मुतालिक मुस्तनिद मालूमात और जिंदगी बचाने वाली आगाही की। सुनिए प्रोग्राम हेल्थ फॉर ऑल डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
0: नई नई तहकीकात जिसके सामने आ रही हैं और उसमें जो बहुत सारी तहकीकात हैं उनके मुताबिक मुसलसल शोर जो दिल के मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा कर रहा है। इसी तरह ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि जब शोर होता है तो स्ट्रेस हार्मोन्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, दिल पर दबाव पड़ता है और यही वजह है कि शोर वाले इलाकों में दिल के मसाइल बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं। और वहाँ पर बहुत सारी जो पब्लिक हैं उनका ब्लड प्रेशर जब देखा गया तो वो हाई था, यानी हाई ब्लड प्रेशर भी एक मसला है जो वहाँ पर नज़र आता है, ज़्यादातर देखने में आता है। तो क्या वाकई हम शोर को मामूली समझकर नज़रअंदाज कर रहे हैं? एक बहुत अहम सवाल है। इसी तरह से बच्चे जो हैं वो भी शोर से बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक शोर बच्चों की याददाश्त पर भी असरअंदाज हो रहा है और वो अपनी तवज्जो जो है अपनी पढ़ाई पर कम कर रहे हैं, देख रहे हैं कि उनकी तवज्जो जो है वो कम हो रही है। इसी तरह जो सीखने की सलाहियत है जो कि बच्चों के लिए बहुत अहम है और ज़रूरी है और उस पर भी असरअंदाज हो रहा है ये तमाम शोर। तो ये नॉइस पोल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा बच्चों को मुतासिर कर रहा है। तहकीक में से बहुत सारी रिसर्चेस की जा रही हैं और रिसर्चेस की गई उसमें देखा गया कि शोर वाले स्कूलों के बच्चों की तालीमी कारकर्दगी कम हो सकती है। हमने देखा वहाँ कि ऐसे स्कूल्स जहाँ पर जो शोर है वो ज़्यादा था, बेशक ट्रैफिक का शोर है या कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो उसमें बच्चों की जो तालीमी कारकर्दगी है उसे कम देखा गया। इसी तरह अगर बच्चा हर वक्त शोर में रहे तो क्या वो दिमाग जो है वो सही तरह से उसमें काम करने की सलाहियत पैदा हो सकेगी, या ये कि उसका जो दिमाग है कब सुकून से सीखेगा, ये बहुत अहम सवाल है। इसी तरह से जो हेडफोन कल्चर है, आज के नौजवान जो है घंटों हेडफोन जो है वो इस्तेमाल जो करते हैं, जो हमारी नौजवान नस्ल है वो घंटों हेडफोन पर ही अपना कोई भी डिवाइस जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो इसके भी बहुत ज़्यादा नुकसान सामने आए हैं। बहुत सी रिसर्च के मुताबिक जैसे कि ऊंची आवाज़ है वो हमारे कान के जो बहुत ही सेंसिटिव सेल्स होते हैं या जो हसास खलिये हैं उनको नुकसान देती है, और इस तरह से जो मुस्तकिल हेयरिंग लॉस है वो पैदा कर सकती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन खबरदार करता है कि आज की नौजवान नस्ल मुस्तकबिल में समाती जो मसाइल हैं उनका शिकार हो सकती है। बहुत ही अहम सवाल है और अहमद मेडिकल कॉरपोरेशन के मुताबिक कि शोर वाकई ही इतना नुकसानदेह है, जैसे कि हमने कहा कि बहुत सारे जो हमारे सेहत के मसाइल हैं उन पर वो असरअंदाज होता है, तो उनके मुताबिक ये कहा गया कि बहुत सारे जो अफराद हैं या बहुत सारे मरीज़ वो देखते हैं जिन्हें सर में शदीद दर्द है और मुख्तलिफ किस्म का दर्द जो है वो है। इसी तरह नींद की ख़राबी है, यानी जो नींद पैटर्न है उनका बेहद डिस्टर्ब है, एनजाइटी बहुत ज़्यादा देखने में आ रही है, ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो रहा है और कई बार वजह सिर्फ और सिर्फ शोर होती है। यानी ये तमाम जो सेहत के मसाइल हैं वो तो होते हैं, मगर यह है कि ये देखा जा रहा है कि उसकी बाज़ुकात वजह सिर्फ और सिर्फ शोर है, यानी जो नॉइस पोल्यूशन है। और लिसनर्स, हेडफोन हम समझते हैं कि जो इस बिल्कुल सेफ हैं, मगर ऐसा नहीं है, तो इसमें जो आवाज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है वो भी नुकसानदेह है। और ये कि जो ख़ास तौर पर यंग जनरेशन की बात करें

0: दिल से देसी।
1: दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने हियरिंग इम्पेयरमेंट से मुतासिर लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा अहमियत दी है। उनकी मदद के लिए मिनिस्ट्री ने डेफ इमरजेंसी सर्विस शुरू की है, जो उनकी इमरजेंसी कॉल्स का जवाब देने के लिए 24/7 दस्तयाब है। ये सर्विस उन लोगों के लिए है जो सुन नहीं सकते और जो अपनी इमरजेंसी सिचुएशंस में आसानी से मदद चाहते हैं। डेफ इमरजेंसी सर्विस एक एडवांस्ड और मॉडर्न सिस्टम का इस्तेमाल करती है, जिसके जरिए लोग अपनी इमरजेंसीज रिपोर्ट कर सकते हैं और उन्हें फौरी तौर पर मदद मिलती है। सिर्फ एक सिंपल कॉल 992 से आप इस सर्विस को एक्सेस कर सकते हैं, जो कि स्पेशली डिजाइंड है हियरिंग इम्पेयर्ड इंडिविजुअल्स, यानी वो लोग जो सुन नहीं सकते। ये सर्विस उनकी जरूरत के हिसाब से उनको इमरजेंसी रिस्पांस देती है और उनके लिए सेफ्टी को इंश्योर करती है। यानी अगर आप या आपके आसपास कोई शख्स हियरिंग इम्पेयरमेंट से मुतासिर है तो 992 का नंबर याद रखें और इस सर्विस का फायदा उठाएं। ये इनिशिएटिव सिर्फ एक सर्विस नहीं बल्कि एक अहम कदम है उन लोगों की मदद करने के लिए जो अक्सर अपने हक में मदद हासिल करने में मुश्किलात का सामना करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की ये एफर्ट्स ये दिखाती हैं कि हर शख्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी उनकी पहली प्रायोरिटी है, चाहे उन्हें सुनाई न दे। तो अगर आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो हियरिंग इम्पेयरमेंट से मुतासिर है, उन्हें ये सर्विस जरूर बताएं। ये सर्विस उनके लिए एक नया रास्ता है अपने इश्यूज को सॉल्व करने का और इमरजेंसी सिचुएशंस में मदद लेने का। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: घर में खाना अगर बच्चों की पसंद का हो तो घर में सुकून बना रहता है। अब आप सोचिए अगर आपके घर में ही एक नन्ना शेफ छुपा हो तो प्रॉब्लम जड़ से ही खत्म है ना। इसलिए हम आपके लिए लाए हैं खास शो जिसमें आपके घर के उस नन्हे शेफ को मिलेगी इंस्पिरेशन और रेसिपीज का खजाना। आरजे सर्वर के साथ सुनिए जूनियर शेफ, सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू जूनियर शेफ। भाई वो शो जहां आपका रेडियो बन जाता है किचन और आपकी इमेजिनेशन एक इंडक्शन, और जहां कुकिंग होती है इजी, एक्साइटिंग और फुल ऑफ फ्लेवर। मैं हूं आपका दोस्त सरवर मिर्जा, और अब इस प्रोग्राम में हम करेंगे स्लाइसिंग, टॉसिंग, टेस्टिंग और टॉकिंग फूड, सब कुछ आपके घर या कार की कम्फर्ट के साथ। और दोस्तों प्रोग्राम में आपका किचन बनेगा आपका कम्फर्ट जोन, आपका क्रिएटिव कॉर्नर। और एक जरूरी बात, आप जब इस डिश को, आज की रेसिपी को बना लेंगे तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 6622107 पे जरूर शेयर करें। भाई हम आपकी क्रिएशन देखने के लिए एक्साइटेड हैं। दोस्तों आज का एपिसोड बहुत खास है क्योंकि आज हम बना रहे हैं दुनिया की मशहूर इटालियन डेजर्ट, और वो है तिरामिसू। जी हाँ, वही सॉफ्ट क्रीमी कॉफी फ्लेवर वाली मिठाई जो हर बाइट में दिल जीत लेती है। इस प्रोग्राम में आप सिर्फ रेसिपी ही नहीं सीखेंगे दोस्तों, बल्कि कुकिंग का फन होगा, उसका सुकून होगा और उसके इमोशंस भी महसूस करेंगे। तो अपनी चाय या कॉफी लेकर कंफर्टेबल हो जाएं क्योंकि ये सफर सिर्फ किचन का नहीं, टेस्ट और क्रिएटिविटी का भी है। तो दोस्तों जब हम किचन की बात करते हैं तो अक्सर लोगों को सिर्फ काम या मेहनत याद आती है, लेकिन असल में किचन एक ऐसी जगह है जहां क्रिएटिविटी पैदा होती है। भाई आज हम सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ साथ ये जानेंगे कि कैसे एक क्लासी डेजर्ट बनाई जाती है जो होटल्स में महंगी कीमत पर मिलती है लेकिन आप घर पर भी आसानी से बना सकते हैं। तिरामिसू का मतलब होता है मुझे उठा लो, यानी ये डेजर्ट आपका मूड जो है इंस्टेंटली फ्रेश कर देती है। इसकी जो लेयर्स हैं, इसकी सॉफ्टनेस है और इसका रिच टेस्ट दिल को खुश कर देता है। तो भाई मकसद ये है कि आप कुकिंग से डरना छोड़ दें और इसे एंजॉय करना शुरू करें जब भी मैं आपके साथ हूं। तो आज का जो माहौल है, मौका भी है, दस्तूर भी, और वो बिल्कुल रिलैक्स्ड और फ्रेंडली तरीके से हम आज की डिश बनाने वाले हैं। भाई ये कोई फॉर्मल कुकिंग क्लास नहीं है जहां आपको स्ट्रेस लेना पड़े कि स्टेप्स भूल जाएंगे तो क्या होगा। यहां हम आपके दोस्त बन के बात करते हैं, तो आपको मालूम ही है सरवर मिर्जा के साथ आप स्टेप बाय स्टेप अपना जो डिश है वो बना सकते हैं, समझ सकते हैं, और हर चीज को इतना सिंपल बना दूंगा कि आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही इजी है। तो ये डिश की खूबसूरती ये है कि इसमें बेकिंग की जरूरत नहीं होती, सिर्फ असेंबलिंग होती है। ये उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो ओवन यूज नहीं करना चाहते या वो बिगनर्स हैं। तो आज आप बस रिलैक्स करके सुनते जाएं और अपने जहन में तसव्वुर बनाते जाएं कि आप किचन में क्या कर रहे हैं और किस तरीके से ये डिश बना सकते हैं। भाई अगर आप सोच रहे हैं कि क्या ये डेजर्ट मुश्किल है, तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आप सिंपल इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें तो आप भी एक प्रोफेशनल जैसा तिरामिसू बना सकते हैं। इसमें कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं, क्रीम है, कॉफी है, बिस्किट्स हैं और एक हल्का सा कोकोआ पाउडर डलता है। लेकिन जो चीज इस डेजर्ट को खास बनाती है वो है इसकी लेयरिंग, इसका कॉम्बिनेशन और भैया सब। जल्दी नहीं करनी है, हर लेयर को प्यार से सेट करना है। तो प्रोग्राम में हम हर स्टेप को इतनी डिटेल से कवर करेंगे कि आपको किसी और वीडियो या रेसिपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों एक बात समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है जो इस प्रोग्राम के जरिए मैं बताता

समझाता आया हूं कि कुकिंग सिर्फ एक खाना बनाने का ही मकसद नहीं है, ये एक एहसास है। जब आप किसी के लिए अपने हाथ से कुछ बनाते हैं तो उसमें मोहब्बत भी शामिल होती है। भाई आज का ये एपिसोड और ये रेसिपी, ये डिश, तिरामिसू, ये डेजर्ट आप सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के लिए बना सकते हैं। भाई सोचिए, जब आप इसे सर्व करेंगे और सब आपकी तारीफ करेंगे तो वो मोमेंट कितना खूबसूरत होगा। इसलिए आज के एपिसोड में सिर्फ एक रेसिपी नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस भी होने जा रहा है। आप सीखेंगे कि कैसे सिंपल चीजों से एक इम्प्रेसिव डिश बनाई जा सकती है जो हर किसी को पसंद आती है। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि अब हम धीरे धीरे अपने किचन जर्नी की तरफ बढ़ रहे हैं और आज हम स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि मैंने बताया, तिरामिसू बनाएंगे बिल्कुल रिलैक्स्ड पेस में, ताकि आप हर चीज समझ सकें और फील कर सकें। प्रोग्राम के अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, जहां पर हम किचन सेफ्टी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि भाई हर अच्छा कुक जो है ना पहले सेफ्टी का ख्याल रखता है। तो भाई चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं किचन सेफ्टी में हमें क्या करना है। तो दोस्तों, अब जब हम किचन में काम शुरू करने जा रहे हैं तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है सेफ्टी का ख्याल रखना। अक्सर लोग कुकिंग शुरू कर देते हैं बिना ये सोचे कि उनका जो एनवायरनमेंट है वो सेफ है या नहीं, जो माहौल है आसपास का। लेकिन अपनी वर्किंग स्पेस को क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड रखना बेहद जरूरी होता है। किचन काउंटर पर सिर्फ वही चीजें रखें जो आप यूज करने वाले हैं, ताकि कोई चीज गिरकर एक्सीडेंट वगैरह ना हो जाए। साथ ही अपने हाथ धोना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये हमेशा ख्याल रखिए, खासतौर पर जब आप डेयरी आइटम्स या क्रीम यूज कर रहे हो। वैसे तो आज हम ऐसी कोई डिश नहीं बना रहे जिसमें पोल्ट्री या मीट वगैरह शामिल हो, वरना मैं उसके लिए भी हमेशा यही कहता हूं कि हमेशा एहतियात करनी जरूरी है। बोर्ड्स वगैरह की एहतियात करनी जरूरी है, नाइफ की एहतियात करना जरूरी है। तो बहरहाल आज हम डेजर्ट की बात कर रहे हैं, तो इसके हवाले से जैसे कि मैंने बताया कि डेयरी आइटम्स वगैरह या क्रीम वगैरह यूज कर रहे हैं आप, तो हाथ वगैरह वैसे भी हमें हमेशा क्लीन रखने चाहिए। तो सफाई और हाइजीन कुकिंग का बुनियादी हिस्सा है, ये हमेशा याद रखें। अब बात करते हैं इंग्रेडिएंट्स के सेफ्टी की। तिरामिसू एक ऐसी डेजर्ट है जिसमें फ्रेश क्रीम है, चीज है और कॉफी यूज होती है, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आपके सारे इंग्रेडिएंट्स फ्रेश और हाइजीनिक हों। एक्सपायर्ड या खराब क्रीम का यूज करना ना सिर्फ टेस्ट को खराब करेगा बल्कि हेल्थ के लिए भी नुकसानदेह होता है दोस्तों। भाई जब आप अपने फ्रिज या रेफ्रिजरेटर से क्रीम या चीज वगैरह निकालते हैं तो उन्हें ज्यादा देर तक रूम टेम्परेचर पे भी मत रखिए, डेयरी आइटम्स जल्दी खराब भी हो जाते हैं। इसी तरह कॉफी को भी फ्रेश बनाएं ताकि फ्लेवर पूरी तरह मेंटेन रहे। एक सेफ इंग्रेडिएंट ही आपको परफेक्ट तिरामिसू का टेस्ट दे सकता है और यही होटल वाले, रेस्टोरेंट्स वाले हमेशा करते हैं। तो साहब किचन में काम करते वक्त एक इंपॉर्टेंट चीज है यूटेंसिल्स का सही इस्तेमाल। आज हम ज्यादा कटिंग या फ्राई नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो हमारे बाउल्स हैं, जो हमारी स्पून्स हैं और ट्रेज हैं, इनका सही यूज करना जरूरी है। ग्लास या सेरेमिक बाउल्स जो हैं, उनको हैंडल करते वक्त ध्यान रखें कि वो स्लिप ना करें, वरना टूटकर चोट लग सकती है। अगर आप इलेक्ट्रिक बीटर या विस्क यूज कर रहे हैं तो इंश्योर करें कि हाथ ड्राई ना हो और वायर्स पानी से दूर हो। ये छोटी छोटी चीजें नजरअंदाज करने से एक्सीडेंट हो सकते हैं। एक सेफ किचन वो होता है जहां हर चीज कंट्रोल में हो और आप हर मूवमेंट सोच समझ कर गुजार रहे हो। तो अब बात करते हैं पर्सनल सेफ्टी की। भाई कुकिंग के दौरान आपका कपड़ा भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लूज स्लीव्स या लंबी कहना चाहिए जो शॉल वगैरह है या चादर वगैरह लेडीज ओढ़ती हैं, कभी कभी यूटेंसिल्स में फंस सकती हैं या गिर सकती हैं या खुदा न खास्ता उनमें आग भी लग सकती है। इसलिए ट्राई करें कि कंफर्टेबल और सिंपल कपड़े पहने, और अगर आपके बाल लंबे हैं माशाल्लाह, तो माजरत के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, तो उन्हें बांधना बेहतर होता है ताकि वो खाने में ना गिरें और हाइजीन मेंटेन रहे और खुदा ना खास्ता आपके बाल भी जलने से, कटने से बचे रहें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक और बात मुझे याद आई, यूजुअली हम लोग गर्मियों में किचन में पंखा वगैरह, फैन, पेडस्टर वगैरह या जो भी फैन वगैरह होता है हमारा, एक्स्ट्रा फैन जो होता है उसको यूज करते हैं, स्पेशली यहाँ मिडिल ईस्ट वगैरह में, क्योंकि हमारे यहाँ सीलिंग फैन वगैरह नहीं होते यहाँ पर जो हमारे ममालिक में होते हैं, तो उसमें भी खुदा ना खास्ता लेडीज के बाल जो है काम करते में फंस जाते हैं।

सो लेडीज प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ और इन बातों का बहुत ज्यादा ध्यान रखें. तो जनाब हाथ साफ रखना, नेल्स छोटे रखना और अननेसेसरी चीजों जैसे रिंग्स हैं या ब्रेसलेट्स हैं इनको रिमूव कर देना भी अच्छी प्रैक्टिस है, हमेशा याद रखिए. ये सब चीजें छोटी लगती हैं लेकिन एक सेफ और प्रोफेशनल कुकिंग एक्सपीरियंस बनाने में बहुत मदद देती हैं. तो दोस्तों जब आप डेजर्ट बना रहे होते हैं, खासतौर पर तिरामिसू जैसा डेलिकेट डेजर्ट, तो पेशेंस सब्र जो है वो भी सेफ्टी का हिस्सा होता है. जल्दी में काम करने से ना सिर्फ रेसिपी खराब हो सकती है बल्कि चीजें गिर भी सकती हैं या आपसे मिस्टेक भी हो सकती है, इसलिए अपने स्टेप्स को स्लोली फॉलो करें. कॉफी को डिप करते वक्त बिस्किट को ज्यादा देर ना भिगोएं वरना वो टूट जाएगा. क्रीम को मिक्स करते वक्त स्मूथ मोशन रखें, झटके ना दें वरना उसके अंदर गांठें जो हैं वो रह जाती हैं. किचन में सुकून और कंट्रोल होना बहुत जरूरी है और ये तब पॉसिबल होता है जब आप हर स्टेप को कामली और फोकस के साथ करते हैं. तो दोस्तों अब जब हमने किचन सेफ्टी के तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं तो आप बिल्कुल रेडी हैं अपनी कुकिंग जर्नी के नेक्स्ट स्टेप के लिए. चलिए जी अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, प्रोग्राम के अगले भाग की तरफ, अगले हिस्से की तरफ, जहां पर हम मिलेंगे अपने इंग्रेडिएंट्स से और उनसे मुलाकात करके पूछेंगे उनकी खैर खैरियत भी और तिरामिसू के हर इंग्रेडिएंट को डिटेल में समझेंगे. तो चलिए चलते हैं टेस्टी सफर के अगले मरहले की तरफ. तो जनाब अब हम अपने प्रोग्राम के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट हिस्से में एंटर हो चुके हैं, मीट द इंग्रेडिएंट्स. यहाँ हम तिरामिसू के हर इंग्रेडिएंट को डिटेल्स में समझेंगे ताकि जब आप इसे बनाएं तो आपको हर चीज का रोल क्लियर हो जाए. सबसे पहले हम बात करते हैं लेडी फिंगर बिस्किट्स की, जिन्हें स्पंज फिंगर्स भी कहा जाता है. ये बिस्किट्स हल्के और सॉफ्ट होते हैं और तिरामिसू की बेस बनते हैं. इन्हें कॉफी में डिप किया जाता है जिससे ये और भी मॉइस्ट और फ्लेवरफुल हो जाते हैं. ये बिल्कुल स्पंज की तरह लिक्विड को एब्जॉर्ब करते हैं और इसी वजह से डेजर्ट की हर बाइट सॉफ्ट और क्रीमी फील देती है. अब बढ़ते हैं साहब कॉफी की जानिब, जो तिरामिसू की जान होती है. कॉफी सिर्फ एक इंग्रेडिएंट ही नहीं है यहाँ पर दोस्तों, बल्कि पूरी डेजर्ट का फ्लेवरफुल बैकबोन होती है. आप स्ट्रॉन्ग कॉफी बनाएंगे, प्रेफरेबली एस्प्रेसो स्टाइल, ताकि इसका जो टेस्ट है वो रिच और बोल्ड रहे. जब आप इस कॉफी में बिस्किट्स डिप करते हैं तो वो हल्की सी बिटरनेस डेजर्ट की मीठी क्रीम के साथ बैलेंस करती है, जो कड़वाहट होती है कॉफी की ना, तो ये कॉन्ट्रास्ट ही तिरामिसू को यूनिक बनाता है. याद रखें कॉफी ज्यादा गर्म ना हो वरना बिस्किट्स टूट सकते हैं, घुल सकते हैं, खराब हो सकते हैं. खराब मेरा मतलब मजा नहीं रहेगा फिर वो डिश का. और ज्यादा ठंडी भी ना हो वरना फ्लेवर अच्छी तरह एब्जॉर्ब नहीं होगा. परफेक्ट टेम्परेचर और बैलेंस ही बेस्ट रिजल्ट देता है, याद रखिए. तो चलिए भाई अब आते हैं एक बहुत ही क्रीमी और लग्जूरियस इंग्रेडिएंट की तरफ, मास्कारपोने चीज. ये इटालियन क्रीम चीज होती है जो तिरामिसू का दिल होती है. इसका टेक्सचर स्मूथ है, सॉफ्ट है और थोड़ा सा बटरी होता है. जब आप इसे व्हिप करते हैं या मिक्स करते हैं तो ये एक सिल्की क्रीम बन जाती है जो डेजर्ट को रिच और इंडल्जेंट बनाती है. लेकिन ओरिजिनल टेस्ट के लिए मास्कारपोने ही बेस्ट होती है, बाकी आपकी मर्जी है भाई, आपका घर है, आप घर के कहना चाहिए कि जिम्मेदार है, आप जो चाय बना सकते हैं. ये इंग्रेडिएंट्स जो हैं दोस्तों वो सॉफ्टनेस और क्रीमीनेस देते हैं जो तिरामिसू को एक रॉयल डेजर्ट बनाते हैं. इसे जेंटली मिक्स करना बहुत जरूरी होता है. तो दोस्तों अब बात करते हैं व्हिप्ड क्रीम या फ्रेश क्रीम की, जो मास्कारपोने के साथ मिलकर एक फ्लफी और एयरी टेक्सचर क्रिएट करती है, यानी फूला फूला सा. जब आप क्रीम को व्हिप करते हैं तो उसमें हवा भर जाती है जिससे वो हल्का और फोमी हो जाती है. ये चीज तिरामिसू को हैवी होने से बचाती है और उसे एक बैलेंस्ड टेक्सचर देती है. क्रीम को ओवर व्हिप ना करें वरना ये बटर जैसा बन सकता है. आपको एक सॉफ्ट पीक कंसिस्टेंसी चाहिए होती है जहां क्रीम स्मूथ लगे लेकिन स्टेबल भी हो, और ये इंग्रेडिएंट तिरामिसू को एक ड्रीमी और मेल्ट इन द माउथ एक्सपीरियंस देता है, यही उसकी खासियत है. अब हम बात करते हैं चीनी या शुगर की, जो स्वीटनेस का मेन सोर्स होती है. लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि तिरामिसू ज्यादा मीठा नहीं होता, इसमें

में बैलेंस्ड स्वीटनेस होती है। शुगर को क्रीम और चीज मिक्सचर में मिक्स किया जाता है ताकि स्मूथ और इवन स्वीटनेस मिले। अगर आप ज्यादा शुगर ऐड करेंगे तो कॉफी का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर दब सकता है, इसलिए बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग पाउडर्ड शुगर यूज करते हैं या आइस शुगर यूज करते हैं ताकि जल्दी डिजोल्व हो जाए और टेक्सचर स्मूथ रहे, सो इट्स फाइन। ये छोटी सी चीज आपके डेजर्ट की क्वालिटी को बहुत इंप्रूव कर सकती है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं कोकोआ पाउडर की। वाह, क्या बेहतरीन चीज है ये, जो आखिरी में टॉपिंग के लिए यूज होती है। हमने देखा है हम कॉफी वगैरह के ऊपर भी इसको हमारे ममालिक में यूजुअली जब कॉफी बनाते हैं वो स्टीम कॉफी जो मशीन वाली बनाते हैं उसके ऊपर पाउडर डालते हैं ना, दैट इज कोकोआ पाउडर एक्चुअली। ये सिर्फ डेकोरेशन नहीं है दोस्तों, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग चॉकलेटी टच देता है जो पूरी डेजर्ट को कंप्लीट करता है। जब आप तिरामिसू के ऊपर लाइट सा कोका पाउडर छिड़कते हैं तो वो एक एलिगेंट लुक देता है और टेस्ट में डेप्थ लाता है। ये बिटरनेस और स्वीटनेस के दरमियान एक परफेक्ट ब्रिज का काम करता है। इसे इवनली स्प्रिंकल करना चाहिए ताकि हर बाइट में थोड़ा सा चॉकलेट फ्लेवर आए। ये फाइनल फिनिशिंग टच होता है जो आपकी डिश को प्रोफेशनल बना देता है। तो दोस्तों, एक ऑप्शनल लेकिन इंटरेस्टिंग इंग्रेडिएंट होता है वेनिला एसेंस या कोकोआ फ्लेवर इनहेंसर। ये छोटी सी एडिशन आपके क्रीम मिक्सचर को और भी फ्रेग्रेंट और टेस्टी बना देती है। वेनिला की लाइट सी खुशबू जब क्रीम के साथ मिक्स होती है तो एक सूदिंग और बेकरी जैसा फील होता है। तो भाई, हम सिंपल वर्जन बना रहे हैं जो हर घर के लिए सूटेबल है। आप चाहें तो अपने टेस्ट के मुताबिक थोड़ी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल तिरामिसु की सिंपलिसिटी ही उसकी असल खूबसूरती होती है। तो दोस्तों, अब आपने तिरामिसु के तमाम जरूरी इंग्रेडिएंट्स को डिटेल में समझ लिया है। अब जब आप कुकिंग स्टार्ट करेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, बल्कि हर चीज को समझ कर यूज करेंगे। और यही फर्क होता है एक नॉर्मल कुक और एक कॉन्फिडेंट कुक में। जब आपको इंग्रेडिएंट का रोल पता होता है तो आपका रिजल्ट भी बेहतर होता है। अब हम अपने प्रोग्राम के सबसे एक्साइटिंग हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं, लेट्स कुक टुगेदर, जहां हम स्टेप बाय स्टेप तिरामिसु बनाएंगे। तो रेडी हो जाइए क्योंकि अब असल मजा शुरू होने वाला है। तो जनाब, अब वो वक्त आ गया है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। चलिए मिलकर तिरामिसु बनाते हैं। सबसे पहला स्टेप है अपनी कॉफी रेडी करना। आप स्ट्रॉन्ग कॉफी या एस्प्रेसो यूज करें क्योंकि इसी से हमारे डेजर्ट का मेन फ्लेवर आता है। कॉफी को बनाकर थोड़ा सा ठंडा होने दें ताकि जब हम बिस्किट डिप करें तो वो टूट कर खराब ना हो जाए। अब एक शैलो बॉल लें और इस कॉफी को उसमें डाल दें। ये बॉल इतना वाइड होना चाहिए कि बिस्किट्स आसानी से डिप हो सके। ये छोटी सी प्रिपरेशन आपके फाइनल रिजल्ट को बहुत इफेक्ट करती है, इसलिए जल्दी ना करिएगा। हर चीज को आराम से सुकून से सेट करिएगा, ओके। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं, जो है क्रीम मिक्सचर बनाना। एक बाउल ले लें और उसमें फ्रेश क्रीम डालकर उसे विस्क करना शुरू करें, यानी फेंटना शुरू करें। धीरे धीरे इसमें शुगर और थोड़ी सी वेनिला एसेंस ऐड करें। वेनिला एसेंस ज्यादा ऐड मत कर दीजिएगा इस जगह पर, पूरा तिरामिसु खराब हो जाएगा भाई। एसेंस है, सी देयर इज अ डिफरेंट बिटवीन वाटर एंड एसेंस। हमेशा जितने भी फ्लेवर एनहेंसर्स होते हैं, दे कम्स इन टू डिफरेंट थिंग्स, टू डिफरेंट बॉटल्स, और वो एक होता है एसेंस, एक होता है वाटर। जैसे कि वेनिला वाटर भी मिलेगा, केवड़ा हम लोग डालते हैं ना अपनी तरफ, रोज वाटर, तो रोज वाटर या केवड़ा वाटर या रोज एसेंस या केवड़ा एसेंस। तो एसेंस जो है वो कम डाइल्यूटेड फोम होती है, तो ये याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पर एक दो कतरा आप जितना यूज कर रहे हैं उस हिसाब से देख लीजिएगा। विस्क करते करते आप देखेंगे कि क्रीम फोमी और थिक हो जाती है। और अब इसमें मैस्कारपोने चीज ऐड करें और जेंटली मिक्स करें। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज्यादा फोर्स से, ताकत से मिक्स नहीं करना है, वरना टेक्सचर जो है वो खराब हो सकता है। आपको स्मूथ, सिल्की और क्रीमी मिक्सचर चाहिए जो बाद में इजिली स्प्रेड हो सके। यही वो मिक्सचर है दोस्तों जो तिरामिसु की जान है, इसलिए इसे प्यार और सब्र के साथ प्रिपेयर करें। चलिए साहब, अब असेंबलिंग का फेज शुरू होता है, जो तिरामिसु का सबसे फन पार्ट होता है। आप एक ट्रे या ग्लास डिश लें जिसमें आप लेयर्स बनाएंगे। अब एक एक बिस्किट को उठाएं और उसे कॉफी में जल्दी से डिप करें। याद रखें, सिर्फ क्विक डिप करना है,
ज्यादा देर तक के लिए नहीं भिगोना वरना बिस्किट टूट जाएगा और शेप खराब हो जाएगा। अब इन डिप्ड बिस्किट को ट्रे के बॉटम पर लाइन में अरेंज करें, यह आपकी फर्स्ट लेयर होगी। ट्राई करें कि कोई गैप ना रहे ताकि बेस स्ट्रॉन्ग और इवन बने। अब जब आपकी बिस्किट की पहली लेयर रेडी हो गई है तो उसके ऊपर क्रीम में मिक्सचर डालने का वक्त आ गया है। स्पून या किसी और चीज की मदद से आप क्रीम का एक लेयर बिस्किट के ऊपर इवनली स्प्रेड करें। ध्यान रखें कि हर बिस्किट कवर हो जाए, ये लेयर थिकनेस में बैलेंस्ड होनी चाहिए, ना ज्यादा पतली और ना ज्यादा मोटी। जब आप इसे स्प्रेड करते हैं तो एक स्मूथ सरफेस बनाने की कोशिश कीजिए। ये वो स्टेप है जहां आपकी डेजर्ट शेप लेना शुरू कर देती है। अब धीरे धीरे काम करें और जल्दी ना करें क्योंकि नीट लेयरिंग ही आपके तिरामिसू को प्रोफेशनल लुक देगी। तो दोस्तों, अब जब आपकी लेयर कंप्लीट हो चुकी है तो फिनिशिंग टच देने का वक्त है। एक छन्नी ले लें और उसमें कोकोआ पाउडर डालकर, अगर कोकोआ पाउडर आपके बॉक्स में है या वो जो जिसमें वो आता है पैकिंग में, तो उसमें हमारे पास एक ऑप्शन होता है, उसको जैसे क्रोशेट में होता है ना, इस तरीके का एक ऑप्शन होता है जिससे आप उसको इवनली स्प्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसको आप कंप्लीट कर लें। कोकोआ पाउडर की थोड़ी सी बिटरनेस क्रीम की स्वीटनेस के साथ परफेक्ट बैलेंस करती है। तो ट्राई करें कि कोकोआ इवनली स्प्रेड हो ताकि हर पोर्शन में सेम फ्लेवर आए। और अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये है, और सब्र के साथ, तिरामिसू को फ्रिज में रखना है। ये बहुत जरूरी है, यहाँ पे चकना चकाना नहीं है, तो ठीक है। तो डेजर्ट को फौरन सर्व नहीं किया जाता बल्कि इसे ठंडा होने तक या सेट होने तक, या हमारी भाषा में कहते हैं बैठने दो भाई, इसको बैठने दो, कुर्सी लगाओ बैठने दो। आप इसे कम से कम 3-4 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें ताकि सारी लेयर्स सेटल हो जाएं और फ्लेवर एक दूसरे में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो टेन टेन दोस्तों, मुबारक हो, आपने अपना तिरामिसू अच्छी तरीके से और सक्सेसफुली बना लिया है। अब जब ये फ्रिज में सेट हो रहा है तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और इसको थोड़ा सा समझते हैं कि क्या हमले अच्छा बनाया या नहीं बनाया। तो इसको निकालिए जब टाइम पूरा हो जाए और आराम से इसको देखिए और समझिए। और अब बढ़ते हैं आगे टेस्ट एंड टॉक टाइम पे। तो साहब, जब आप पहली बाइट लें तो आपको कॉफी का हल्का सा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर महसूस होगा जो फौरन क्रीम की स्वीटनेस के साथ बैलेंस हो जाता है। ये कॉम्बिनेशन ही तिरामिसू को खास बनाता है, ना ज्यादा मीठा और ना ज्यादा कड़वा। जो बिस्किट हमने कॉफी में डिप किए थे वो अब इतना सॉफ्ट हो चुके हैं कि बिल्कुल स्पंज जैसा फील देते हैं। क्रीम का वो टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ और सिल्की होता है जो टेस्ट को और इनहेंस करता है। हर बाइट में आपको लगता है कि फ्लेवर एक दूसरे के साथ परफेक्टली ब्लेंड हो गए। ये सिर्फ खाना नहीं है दोस्तों, एक एक्सपीरियंस है जो आज आपने मेरे साथ बनाया है या मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस डेजर्ट को ओवरऑल फ्लेवर बैलेंस करने की। तिरामिसू का मैजिक इसी में है कि इसमें स्वीटनेस, बिटरनेस और क्रीमिनेस तीनों को परफेक्ट मिक्स किया है हमने। कॉफी की हल्की सी कड़वाहट कोकोआ पाउडर के साथ मिलकर एक मैच्योर टेस्ट क्रिएट करती है, जब के क्रीम उसे स्मूथ और लाइट बना देती है। ये डेजर्ट उन लोगों के लिए भी परफेक्ट है जो ज्यादा मीठा पसंद नहीं करते, क्योंकि ये बैलेंस्ड होता है। आप महसूस करेंगे कि हर बाइट में एक नया फ्लेवर हाईलाइट हो रहा है। कभी कॉफी प्रोमिनेंट होती है, कभी क्रीम की सॉफ्टनेस आगे आ जाती है। तो अब पढ़ते हैं आगे। और आज के सेगमेंट में हमने सिर्फ तिरामिसू को टेस्ट ही नहीं किया दोस्तों, बल्कि उसे फील भी किया है। ये डेजर्ट हमें ये सिखाती है कि सिंपल इंग्रेडिएंट से भी एक एलिगेंट रिजल्ट हासिल किया जा सकता है। जब आप कुकिंग में पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग अप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमेशा इम्प्रेसिव होता है। अब हम अपने प्रोग्राम के फाइनल भाग की तरफ आगे बढ़ते हैं और जो चैलेंज मैं आपको हमेशा देता हूँ, कुक इट अगेन चैलेंज, उस पे आ जाते हैं दोस्तों। और भाई, बनाना तो देखिए बहुत ज्यादा जरूरी है, कहीं ना कहीं इतनी मेहनत करी है, मैंने भी करी है, तो मेरी मेहनत भी रंग लाएगी अगर आप इसको एक बार दोबारा से बनाएंगे। और बहुत परफेक्ट है। अगर बच्चे मुझे सुन रहे हैं इस वक्त, तो आपने देखा होगा कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, मेहनत सिर्फ और सिर्फ आपने इसको सजाने, बनाने और एहतियात करने में करी है। इसमें कोई ऐसी हीट नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है जो चीज़ आपको ना मिल रही हो, बिल्कुल फायर का इस्तेमाल हमने नहीं किया है। तो बहुत बेस्ट है आप लोगों के लिए, मेहनत कीजिए, इसको ज़रूर बनाइए और कुक इट अगेन चैलेंज में भाग लीजिए, है ना भाई। ये खासतौर पे ये जो सेगमेंट हमने रखा है वो इसलिए डिज़ाइन किया गया है कि ताकि आप सिर्फ एक बार ना सीखें बल्कि इस रेसिपी को दोबारा ट्राई करें और उसे और बेहतर बनाएं।
कुकिंग एक ऐसी स्किल है जो प्रैक्टिस से ही इम्प्रूव होती है दोस्तों। तो आज आपने तिरामिसू बनाया, कल आप इसे और कॉन्फिडेंस के साथ बना सकते हैं। शायद पहली बार आप थोड़ा हेजिटेट करें, लेकिन दूसरी बार आप ज्यादा रिलैक्स होंगे

0: और ये चैलेंज आपके लिए है, खुद को टेस्ट करने के लिए और अपनी क्रिएटिविटी को यूज करने के लिए। तो दोस्तों, अगर आप इस रेसिपी में अपनी क्रिएटिविटी ऐड करें तो क्या क्या पॉसिबल है। आप फ्लेवर्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जैसे कि चॉकलेट लेयर थोड़ी ज्यादा करना या वेनिला का टच थोड़ा एनहेंस करना। कुछ लोग इसे इंडिविजुअल कप में सर्व करते हैं, जो प्रेजेंटेशन को और क्लासी बना देती है। ये चैलेंज आपके इमेजिनेशन को ओपन करेगा दोस्तों। आप अपनी फैमिलीज के टेस्ट के मुताबिक थोड़ी स्वीटनेस एडजस्ट कर सकते हैं, कुछ भी बड़ा घटा सकते हैं। और ये जरूरी नहीं कि हर दफा एग्जैक्टली सेम रेसिपी फॉलो करें, बल्कि आप उसे अपना सिग्नेचर डेजर्ट बना सकते हैं जो सिर्फ आपके स्टाइल में रिफ्लेक्ट करे। यही एक अच्छे शेफ की पहचान होती है। तो दोस्तों, मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि जब आप कोई डिश दोबारा बनाते हैं तो आप उसे सिर्फ रिपीट नहीं करते बल्कि इम्प्रूव करते हैं। हर दफा आपको कुछ नया सीखने को मिलता है। शायद आपको लगे कि अगली दफा क्रीम को और स्मूथ बनाना है या बिस्किट को थोड़ा बेटर डिप करना है। ये छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट ही आपको एक कॉन्फिडेंट कुक बनाती है। आज का तिरामिसू सिर्फ एक रेसिपी नहीं बल्कि एक लर्निंग एक्सपीरियंस था दोस्तों। इसे दोबारा बनाकर आप अपने आप में एक नई स्किल डेवलप करते हैं जो आपके लिए फ्यूचर में बहुत काम आएगी, हमेशा याद रखिए। तो जनाब, अब एक इंटरेस्टिंग आइडिया ये है कि आप इस चैलेंज को अपने घर में फन एक्टिविटी बना दें, अपनी फैमिली या दोस्तों के साथ मिलकर तिरामिसू बनाएं और फिर कंपेयर करें कि किसका वर्जन ज्यादा टेस्टी बना। ये सिर्फ कुकिंग नहीं बल्कि बॉन्डिंग का भी एक तरीका बन जाता है। किड्स के साथ भी ये एक्टिविटी बहुत इंजॉयबल होती है क्योंकि इसमें बेकिंग नहीं है, जैसे कि मैंने इससे पहले भी अर्ज किया, और प्रोसेस सिंपल होता है। इसी तरह आप कुकिंग को एक बोरिंग टास्क के बजाय एक फन एक्सपीरियंस बना सकते हैं। और यही हमारा एम है कि किचन एक हैप्पी स्पेस बन जाए, जो डरते हैं किचन में जाने से या जो बिल्कुल कुछ बनाना नहीं जानते हैं वो भी सीख पाए किसी ना किसी तरह। तो दोस्तों, आज जब आपने अपने हाथों से कुछ बनाया है और लोग उसे एंजॉय कर रहे हैं तो एक अलग ही सेटिस्फेक्शन इस चीज से मिलती है। आज का ये प्रोग्राम शायद आपको इंस्पायर करे कि आप और भी रेसिपीज ट्राई करें। तिरामिसू एक स्टार्ट है, लेकिन इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। आप फ्यूचर में और डेजर्ट्स भी बना सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप खुद पर ट्रस्ट करें। अगर आप पहली दफा में परफेक्ट नहीं भी बना पाए हैं तो कोई बात नहीं, हर एक्सपर्ट भी एक दिन बिगिनर था और मैं भी ऐसे ही था। मजीद ये कि अगर आप कोई डिश देखना चाहते हैं, नॉन फायर विदाउट फायर कुकिंग देखना चाहते हैं, मजीद इसी तरीके की और चीजें, तो इंशाल्लाह हम हाजिर होते रहेंगे। बट आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, एक्स पे, टिकटॉक पे, हर जगह हम आपके लिए हाजिर खिदमत हैं। वहां पर आप देखेंगे सुहाना सफर या फ्लेवर्स ऑफ रमदान। तो सुहाना सफर जब आप खोलते हैं FM 107 की खास पेशकश, वहां पर आपको मैं दिख जाऊंगा पहले तो, और बनाता हुआ दिख जाऊंगा, खाना भाई खाना बनाता हुआ दिख जाऊंगा। डिफरेंट डिशेज हैं, आपने कुछ भी नहीं करना, आप सिर्फ ऑनलाइन इंटरनेट पे जाकर लिख दीजिए सुहाना सफर कतर, सुहाना सफर FM 107 या सुहाना सफर सर्वर कतर, इनमें से कुछ भी आप टाइप करेंगे तो हमारे तमाम एपिसोड्स आपके सामने आ जाते हैं। यूट्यूब वगैरह पे भी आप आराम से देख सकते हैं या किसी भी दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इजिली देख सकते हैं, और यही टाइप करना है जो मैंने आपको बताया है दोस्तों। तो दोस्तों, आज का प्रोग्राम अब अपने अख्तिताम को पहुंचता है और हमने आज खूब सारी बातें करी, शुरू से लेकर आखिर तक समझाने की कोशिश करी, और मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से एक छोटी चीज भी आप बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, हमने हर स्टेप को एंजॉय किया है और उम्मीद है कि आपको मजा भी आया होगा। मुझे ये भी उम्मीद है कि आपने इस प्रोग्राम को उतना ही एंजॉय किया होगा जितना मैंने आपके साथ शेयर करते हुए किया। आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस को यादगार बनाएं। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से मैं अलविदा कहता हूं। ख्याल रखिए, सेफ रहिए और किचन में हमेशा क्रिएटिविटी के साथ कुकिंग करते रहिए। शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए या हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली दफा तक अपनी मॉर्निंग ब्राइट रखें और अपने मील्स माइंडफुल। यह जूनियर शेफ जहां हर बाइट में था मजा और सेहत का प्रॉमिस। तो साहब, प्रोग्राम साउंड डिजाइनर शहबाज अंसारी और मुझे सरवर मिर्जा को अगली मुलाकात तक के लिए इजाजत दीजिए। देखते और सुनते रहिए FM 107, दिल से देश।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: FM 107 पर हर गाना हिट।

आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से देसी।

0: अच्छा, यहाँ घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है?
1: उसके लिए तो
0: वैसे कतर की हिस्टोरिकल जगह जानने के लिए कहाँ जाना सही रहेगा?
2: वैसे वो तो देखो,
0: इवेंट के लिए ये मुल्क नया है, क्या करें क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा है।
2: एक मिनट रुको ना, मिलेगी पूरी जानकारी, मिलेगी FM 107 पे। प्रोग्राम कतर 101 RJ फजील के साथ जानिए लाइफस्टाइल, ट्रेडिशन, हिस्ट्री और कल्चर के बारे में हर इतवार सुबह 10 बजे ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
3: दोस्तों, ट्रैफिक लॉ के आर्टिकल नंबर 55 के क्लॉज नंबर 3 के तहत गाड़ी चलाते वक्त 10 साल की उम्र से कम के बच्चों को आगे वाली पैसेंजर सीट पे बैठालने की इजाजत नहीं है। बच्चों को आगे वाली सीट पे बैठालने से आप ड्राइविंग करते वक्त डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। बच्चों को गाड़ी की बैक सीट पे बैठालने से आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत में मदद मिलती है। FM 107 आपके महफूज सफर की ख्वाहिश करता है।
4: मॉडर्न लाइफ फास्ट है, लेकिन साथ ही है ज़हनों में एंडलेस क्वेश्चंस। और अगर आप सोच रहे हैं कैसे बैलेंस करूं फेथ और मॉडर्न लाइफ को, तो सुनिए ये शो इस्लामिक मॉडर्न लाइफ, जो आपको दिखाएगा इस्लामिक गाइडेंस आज के दौर के हिसाब से। सुनना ना भूले शो इस्लामिक मॉडर्न लाइफ, मॉडर्न जिंदगी का बैलेंस सिर्फ इसी शो में। हर थर्सडे सुबह 10 बजे से 11 बजे तक RJ महवेश खान के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
5: मैक्सिमम म्यूजिक, मैक्सिमम फन
4: ऑन FM 107 दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: सक्सेस की शुरुआत होती है एक छोटी सी सोच के साथ, एक आइडिया से।
2: ये आइडियाज कहाँ से आते हैं, क्या माइंडसेट्स होते हैं, क्या अप्रोच होती है,
1: ये जानना बहुत जरूरी है। इस शो में बात होगी लीडरशिप, सेल्फ डेवलपमेंट और डिसीजन मेकिंग पर, जो आपको एम्पावर करेगी। हर गेस्ट होगा एक पावर हाउस ऑफ मोटिवेशन और हर एपिसोड एक नई कहानी, एक नई इंस्पिरेशन। जरूर सुने शो पावर टॉक्स आरजे नाजिया के साथ, ओनली ऑन FM 107। पावर टॉक्स, हर लफ्ज में ताकत, हर बात में मोटिवेशन।
2: हेलो एंड वेलकम टू द शो कॉल्ड पावर टॉक।

FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448888806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

our values. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Main hoon Nazia aapke saath and welcome to the segment called our values. दोस्तों आज के सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं पर्सनल हाइजीन की. इंसान की सेहत सिर्फ अच्छी गिजा या एक्सरसाइज पर डिपेंड नहीं करती बल्कि पर्सनल हाइजीन भी सेहतमंद जिंदगी का एक बहुत बड़ा और अहम हिस्सा है. पर्सनल हाइजीन का मतलब है अपनी जिस्म की सफाई, लिबास साफ रखना, आदतों और एनवायरमेंट का ख्याल रखना. आज के दौर में जब बीमारियां तेज रफ्तार से फैल रही हैं, तेजी से फैल रही हैं, पर्सनल हाइजीन की अहमियत और भी ज्यादा बढ़ गई है. सफाई एक ऐसी आदत है जो सिर्फ हमें बीमारियों से नहीं बचाती बल्कि हमें एक बेहतर और माशरे के लिए मुफीद शहरी बनाती है. जी, पर्सनल हाइजीन का कंसर्न हर उम्र के अफराद के लिए जरूरी है, चाहे वो बच्चे हों, जवान हों या बुजुर्ग. सफाई सिर्फ जाती फायदे के लिए नहीं है बल्कि पूरी सोसाइटी को सेहतमंद बनाती है. इसीलिए कहा जाता है कि सफाई सेहत की बुनियाद है. पर्सनल हाइजीन से मुराद क्या है? पर्सनल हाइजीन से मुराद वो तमाम आदतें और अमल है जो हम अपने जिस्म को साफ रखने के लिए इख्तियार करते हैं. इसमें नहाना है, हाथ धोना है, दांतों की सफाई है, साफ कपड़े पहनना है, बालों और नेल्स का ख्याल रखना है और अपनी पर्सनल चीजों को भी साफ सुथरा रखना है. ये सब छोटी छोटी बातें लगती हैं, लेकिन इनका असर बहुत गहरा होता है. जब हम अपनी सफाई का ख्याल नहीं रखते तो जर्म्स, बैक्टीरिया और वायरसेस आसानी से हमारे जिस्म में एंटर हो जाते हैं और इसका नतीजा मुख्तलिफ बीमारियों की शक्ल में सामने आता है, जैसे कभी स्किन डिजीज, फ्लू, डायरिया, फीवर या फिर एलर्जीज. लेकिन जब हम रोजाना हाइजीन की आदत अपनाते हैं तो ये जर्म्स हमारे करीब भी नहीं फटक पाते. पर्सनल हाइजीन इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाती है. साफ जिस्म और साफ रहने से हम अपनी बॉडी को फ्री रखते हैं फ्रॉम इन्फेक्शंस. इसी वजह से डॉक्टर्स भी बार बार हाइजीन पर जोर देते हैं. रोजाना नहाना पर्सनल हाइजीन की या पर्सनल हाइजीन का एक बुनियादी रूल है. नहाने से जिस्म पर जमा पसीना, मिट्टी और जर्म्स दूर हो जाते हैं. गर्म मौसम में नहाना ज्यादा जरूरी है क्योंकि पसीना ज्यादा आता है और उससे स्मेल भी आती है और कई बार स्किन प्रॉब्लम्स या इश्यूज भी बढ़ जाते हैं. देखिए, अगर नहाने की बात की जाए तो सिर्फ नहाना ही काफी नहीं है बल्कि सही तरीके से नहाना भी जरूरी है. साबुन का सही इस्तेमाल करना और बॉडी के उन हिस्सों पर ज्यादा तवज्जो देना जहाँ पसीना ज्यादा आता है, ये हाइजीन के लिए बहुत जरूरी है. हाथ धोना, इस बात को शायद हम कोविड के दौरान ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाए थे. हाथ धोना शायद सबसे सिंपल लेकिन सबसे पावरफुल हाइजीन हैबिट है. खाना खाने से पहले, वॉशरूम के बाद, बाहर से घर आने पर और बीमार इंसान को छूने के बाद या मिलने के बाद हाथ धोना जरूर चाहिए. हाथों के जरिए ही ज्यादा जर्म्स जो है वो जिस्म के अंदर आ जाते हैं. अगर हम सिर्फ एक आदत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें और ये आदत हो हाथ धोने की और थोड़ा फ्रीक्वेंटली हाथ धोने की, तो यकीन मानिए बहुत सी बीमारियां जो पेट से रिलेटेड हैं काफी हद तक खत्म या दूर हो जाएंगी. वहीं पर एक और चीज जिसकी सफाई का हमें और आपको खास ख्याल रखना है वो है हमारे दांत, टीथ. जी हाँ, दांतों की सफाई को अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं जबकि ये पर्सनल हाइजीन का बहुत अहम हिस्सा है. ये छोटी छोटी आदतें मिलकर बहुत बड़ा फर्क पैदा करती हैं। दोस्तों, आखिर में कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि पर्सनल हाइजीन एक लग्जरी नहीं, एक जरूरत है. सफाई सिर्फ हमें बीमारियों से नहीं बचाती बल्कि हमें इज्जत, कॉन्फिडेंस और बेहतर जिंदगी देती है. जो कौम सफाई को अपनाती है वो हकीकी तौर पर तरक्की करती है. हमें चाहिए कि हम अपनी पर्सनल हाइजीन को अपनी डेली लाइफ का लाजमी हिस्सा बनाएं. सिर्फ अपनी नहीं बल्कि अपने बच्चों की, घर वालों की और माशरे के लिए भी ये जरूरी है. अगर हर इंसान अपनी जाती सफाई का जिम्मा खुद ले ले तो हम एक सेहतमंद, खुश और स्ट्रॉन्ग सोसाइटी बना सकते हैं. दोस्तों, सफाई एक आदत है और आदत प्रैक्टिस से बनती है. आज से, अभी से पर्सनल हाइजीन को अपनी जिंदगी की पहली प्रायोरिटी बनाएं क्योंकि सेहत ही असली दौलत है. इसी खूबसूरत बात के साथ अब वक्त आपसे इजाजत लेने का, इस वादे के साथ कि नए सेगमेंट में वापस हम हाजिर होंगे. तब तक के लिए नाजिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए. देखते और सुनते रहिए FM 107.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी
2: FM 107 प्रेजेंट योर हेल्थ मैटर विद RJ श्रुति।
3: आज हम बात करेंगे साइंस योर बॉडी नीड्स रेस्ट के बारे में। बॉडी ब्रेकडाउन से पहले हमेशा वार्निंग देती है, बस हम उन वार्निंग्स को इग्नोर करते चले जाते हैं। कांस्टेंट थकान, छोटी बातों पर इरिटेशन, फोकस का बार बार टूटना, ये सब लेजीनेस नहीं होती, ये बॉडी का तरीका होता है कहने का प्लीज थोड़ा रुक जाओ। कभी कभी रेस्ट की बहुत जरूरत होती है, सिर्फ बॉडी को ही नहीं बल्कि माइंड को भी। अगर आप बिना वजह एंशियस फील कर रहे हो, चीजों में इंटरेस्ट कम हो गया है या हर चीज में ओवरवेलमिंग फील कर रहे हो, तो हो सकता है आपका सिस्टम ओवरलोड हो चुका है। रेस्ट का मतलब अगेन सिर्फ सोना नहीं होता, कभी कभी रेस्ट होता है स्क्रीन से दूर रहना, स्क्रीन टाइम कम कर देना, शोर से ब्रेक लेना, किसी पार्क में चले जाना और खुद के साथ थोड़ा सा शांति वाला समय बिताना। हमने रेस्ट को लग्जरी बना दिया है, ये मैं हर बार कहती हूँ, जबकि रेस्ट एक बेसिक नीड है। बॉडी को भी चार्ज चाहिए होता है, बिल्कुल अपने फोन की तरह। डिफरेंस बस इतना है कि फोन लो बैटरी पर अलर्ट

अलर्ट देता है और बॉडी सिग्नल्स धीरे धीरे भेजती है, और अगर हम उन्हें इग्नोर करते हैं तो एक दिन बॉडी फोर्सफुली हमारा सिस्टम ही रुकवा देती है। इसलिए आज का एक सिंपल सा मशवरा, जब बॉडी बोले स्लो तो थोड़ा स्लो हो जाइए, जब बॉडी कहे स्टॉप तो बिना गिल्ट के रुक जाइए। रेस्ट लेने से आप पीछे नहीं हो जाते, रेस्ट लेने से आप स्ट्रॉन्गर कम बैक ले रेडी होते हो, क्योंकि जब आप अपनी बॉडी को रेस्ट देते हो ना तो वो एक स्पेस मिलती है उसे जो उसकी

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्पोर्ट्स हाइलाइट्स में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन और आज हम बात करेंगे इंडियन के मारूफ बल्लेबाज रोहित शर्मा के बारे में। नाम ही काफी है मॉडर्न जनरेशन के लिए। रोहित शर्मा इज अ लेजेंड, इज अ स्टार, इनके बारे में यू नो एवरीथिंग इज ऑन स्टैट्स। एक बहुत बड़ा नाम है इंडियन क्रिकेट के लिए, जो अपनी एलिगेंट बैटिंग और काम लीडरशिप के लिए जाना जाता है। उनका निकनेम हिटमैन पड़ा और ये नाम उन्होंने अपनी एक्सप्लोसिव इनिंग्स से जस्टिफाई भी किया है। रोहित ने लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट यानी ओडीआई में खास तौर पर अपनी पहचान बनाई, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में भी उन्होंने अपनी वैल्यू प्रूव किया है। ये और बात है कि टेस्ट क्रिकेट में अब वो नहीं खेलते हैं, टेस्ट क्रिकेट टीम से वो बेसिकली रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन आज भी लोग उनकी कई ऐसे इनिंग्स है जिसका लोग मिसाल देते हैं कि देखिए इस तरह की बैटिंग होनी चाहिए इन टेस्ट क्रिकेट। वन ऑफ द वेरी फ्यू मॉडर्न क्रिकेटर्स जिन्होंने हर फॉर्मेट T20, टेस्ट और ODI में बहुत बाखूबी, मैं अगर कहूँ यहाँ पर, उन्होंने एडजस्ट किया है और हर तरह के स्टाइल, हर तरह के शॉट्स उनकी बैटिंग में हमने देखा है, जस्ट लाइक विराट कोहली। और अगर स्टैट्स की बात करें तो टेस्ट फॉर्मेट में रोहित शर्मा ने 67 मैचेस खेलकर 4301 रन्स बनाए हैं, जिसमें 12 सेंचुरीज 18 फिफ्टीज शामिल है दोस्तों। ओडीआई क्रिकेट में उनका रिकॉर्ड लाजवाब है, 282 मैचेस में 11577 रन्स और उनका हाईएस्ट स्कोर 264 है, 264, जो कि ओडीआई क्रिकेट की तारीख का सबसे हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर। इसके अलावा उन्होंने 33 सेंचुरीज और 61 हाफ सेंचुरी स्कोर किए हैं, एंड दैट मेक्स हिम अ टिपिकल ओडीआई बैट्समैन। T20 इंटरनेशनल में भी रोहित सक्सेसफुल रहे और T20 इंटरनेशनल में अगर स्टैट्स की बात करूं तो 159 मैचेस खेलकर 4231 रन स्कोर किए हैं, जिसमें 5 सेंचुरीज भी शामिल हैं। दोस्तों, उनके बैटिंग का स्टाइल एफर्टलेस लगता है, लेकिन टाइमिंग और शॉट सिलेक्शन उनको बाकी प्लेयर्स से अलग बनाता है। कैप्टन के तौर पर भी उन्होंने इंडिया को कई इंपॉर्टेंट सीरीज और टूर्नामेंट्स में लीड किया है। तो रोहित शर्मा सिर्फ एक प्लेयर नहीं बल्कि मॉडर्न एरा के कंप्लीट मैच विनर हैं। उम्मीद है आपको आज का ये स्पोर्ट्स हाइलाइट पसंद आया होगा। अगली बार एक और स्पोर्ट्स स्टार के साथ हम हाजिर होते हैं, तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: आज की इस भागती दौड़ती दुनिया में जब सवाल बहुत है और जवाब ढूंढना उतना ही मुश्किल लगता है, तो बच्चों और यंग माइंड्स को चाहिए एक ऐसी रहनुमाई जो दिल से भी हो और दीन से भी। गाइडिंग लिटिल हार्ट्स, एक ऐसा प्रोग्राम जो हम आपके लिए ला रहे हैं जो बच्चों को मजबूत वैल्यूज और मासूम दिलों को रोशन रास्ता देता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे सिर्फ ग्रो ना करें बल्कि स्ट्रॉन्ग वैल्यूज के साथ ग्रो करें, तो ये सफर उनके लिए जरूर सुनिएगा गाइडिंग लिटिल हार्ट्स आरजे सफा के साथ सिर्फ FM 107 पर, बिकॉज दिस शो इज एन इंस्पायरिंग कंपेनियन फॉर स्पिरिचुअल एंड पर्सनल ग्रोथ।
1: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू प्यारे बच्चों और यंग लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM 107 कतर और मैं हूं आपकी होस्ट सफा। और साथियों, आज हम शुरू कर रहे हैं अपना एक और एपिसोड गाइडिंग लिटिल हार्ट्स का। साथियों, ये सिर्फ एक रेडियो शो नहीं है बल्कि मैं कहूंगी कि एक सफर है, एक ऐसा सफर जहां हम मिलकर सीखेंगे, समझेंगे और अपनी जिंदगी को बेहतर यानी बेटर बनाने की कोशिश करेंगे। आराम से, समझदारी से और मोहब्बत से, बड़े प्यार से हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि जिंदगी में जो मसले मसाइल होते हैं उनको कैसे डील किया जाए। इस प्रोग्राम का मकसद आपके छोटे छोटे दिलों को गाइड करना है साथियों, ताकि आप सिर्फ अच्छे स्टूडेंट्स या अच्छे बच्चे ही नहीं बल्कि एक अच्छे बेहतरीन इंसान बन सके, अंदर से स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट और अपनी पहचान से वाकिफ इंसान बन सके। देखिए, आज का टॉपिक जो है ना, वो शायद आप सबको दिल से बहुत करीब, लेकिन अक्सर हम इस पर खुलकर बात नहीं करते। आज हम बात करेंगे डीलिंग विद डाउट्स विदाउट लूजिंग फेथ पर, यानी शक, सवालों और कंफ्यूजन के साथ कैसे डील किया जाए बिना अपने ईमान को खोए हुए। देखिए, ये एक ऐसी सेफ स्पेस है जहां आपके सवाल गलत नहीं बल्कि जरूरी हैं, क्योंकि सच तो ये है भाई कि हर इंसान चाहे वो कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, कभी ना कभी डाउट तो फील करता ही है भाई, मैं तो करती हूँ। देखिए, कभी हम सोचते हैं क्या मैं सही कर रहा हूँ, या अल्लाह मेरी सुन रहे हैं, या फिर मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, और ये सारे के सारे ऐसे सवाल दिल में होना बिल्कुल नेचुरल फीलिंग।

करिंग लिटिल हार्ट्स का ये खास एपिसोड आपको ये बताने के लिए है कि डाउट्स का होना ईमान की कमजोरी नहीं होता, बल्कि अक्सर ये ईमान को समझने का पहला कदम होता है। सोचना, पूछना और समझना। देखिए, वो जमाना चला गया जब लोग कहते थे कि ज्यादा सवाल करोगे तो अच्छी बात नहीं है। अब आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि हाँ, मैं सवाल भी करूंगा, मुझे जवाब भी चाहिए और मुझे उसको समझना भी है। ये सब ग्रोथ का हिस्सा होता है साथियों, लेकिन जरूरी ये है कि हम अपने सवालों को छुपाने की बजाय उन्हें समझने की कोशिश करें ना, उन पर बात करें और उनका जवाब ढूंढें एक पॉजिटिव और बैलेंस तरीके से। साथियों, इस प्रोग्राम में हम इस्लामिक वैल्यूज को सिर्फ किताब तक महदूद नहीं रखते, बल्कि उन्हें आपकी डेली लाइफ से जोड़ कर समझाते हैं। जैसे स्कूल के चैलेंजेस, दोस्तों के मसले, सोशल मीडिया का प्रेशर, सिर्फ कॉन्फिडेंस की कमी, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी, या कभी कभी अपने आप से भी लड़ना। हम यहाँ किसी को जज नहीं कर रहे साथियों, बल्कि समझने और सपोर्ट देने के लिए हाजिर है, क्योंकि हर बच्चा और हर यंगस्टर अपनी एक कहानी रखता है और हर कहानी इम्पोर्टेंट है। आप सोच रहे होंगे कि अगर डाउट्स आते हैं तो क्या करें, क्या ये गलत होते हैं, क्या हमें इनसे डरना चाहिए? जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखें, डरने की जरूरत नहीं है इनसे, इन्हें समझने की जरूरत है। आज के सफर में हम ये सीखेंगे कि कैसे अपने दिल और दिमाग के सवालों को बैलेंस करें, कैसे अपने रब पर ट्रस्ट बरकरार रखें और कैसे अपनी जर्नी को स्ट्रॉन्ग बनाएं, इवन जब रास्ते में कंफ्यूजन होती है फिर भी। अच्छा साथियों, और ये याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। अगर कभी आपको ऐसा लगे कि आपके पास सवाल हैं जिनका जवाब नहीं मिल रहा है, या आप किसी कंफ्यूजन में हैं, तो आप हमसे रابطہ कर सकते हैं। हमें कॉल कर सकते हैं 666-22-107 पर, और चाहें तो हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर भी कनेक्ट कर सकते हैं हमसे, जो कि है FM 107 कतर। ये प्लेटफॉर्म आपका है, आपकी आवाज के लिए है। तो चलिए, आज का ये जबरदस्त सा सफर शुरू करते हैं एक सिंपल सी बात के साथ। सवाल करना बुरी बात नहीं, लेकिन जवाब ढूंढना जरूरी है। और जब हम सच्चाई के साथ, ईमान के साथ और खुले दिल के साथ अपने डाउट्स को फेस करते हैं ना, तो हम सिर्फ आंसर्स नहीं पाते, हम अपने आप को भी बेहतरीन तरीके से समझने लगते हैं। तो भाई साथियों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक एक्सप्लोर करने लगे हैं, डाउट्स ऑफ फेथ के बारे में सवाल। आपने कभी सोचा है कि आपके दिल में अचानक कोई सवाल क्यों आता है? कभी कभी आप ऐसा भी सोचते हैं कि अगर अल्लाह ताला सब कुछ कंट्रोल करता है तो मुश्किलात क्यों आती हैं, या मैं हर चीज क्यों नहीं समझ पाता या पाती। ये सवाल अजीब नहीं है साथियों, बिल्कुल नॉर्मल सवाल हैं। ये इंसानी फितरत का हिस्सा है। देखिए, जब हम बढ़ते हैं ना, हम ग्रो करते हैं, सीखते हैं और दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं, तो नेचुरली हमारे दिमाग में क्वेश्चंस पैदा होते हैं। हमें एक्सपोजर मिल रहा होता है ना दुनिया का, और ये बिल्कुल ठीक बात है। मतलब इसके अंदर कोई बुराई नहीं है, इसके अंदर कोई ऐसा मसला नहीं है कि आप अपने ऊपर डाउट करें। डाउट्स का मतलब ये नहीं होता कि आपका ईमान कमजोर हो गया है, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि आपका दिमाग एक्टिव है, आपका दिल सच्चाई तक पहुंचना चाहता है। देखिए, सोचना, रिफ्लेक्ट करना, सवाल करना, ये सब ग्रोथ के साइंस हैं। आप कह लें कि ये माइलस्टोन्स हैं इंसान की जिंदगी के। देखिए, यहाँ पर आकर ना एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आती है जो कि हमें समझनी चाहिए। इम्पोर्टेंट बात ये है कि समझना जरूरी है। हर डाउट को इग्नोर कर देना या उससे डर जाना सोल्यूशन नहीं होता, और हर सवाल का फौरन जवाब मिल जाना भी जरूरी नहीं होता। देखिए, जिंदगी कभी कभी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहाँ जो हम सीख रहे होते हैं और जो हम देख रहे होते हैं, उनमें बहुत बहुत जमीन आसमान का फर्क महसूस होता है। जैसे कि आपको सिखाया जाता है कि भाई सच बोलना चाहिए, लेकिन आप ये देखते हैं कि भाई दुनिया में क्या चल रहा है, यहाँ पे तो सब कुछ झूठ बोला जा रहा है, यहाँ पे तो झूठ का बाजार गर्म है भाई। या फिर आपको बताया जाता है कि सबर का फल मीठा होता है, लेकिन कभी कभी सबर करना बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन ये कॉन्ट्रडिक्शंस ही डाउट्स पैदा करते हैं। साथियों, सोचने वाली बात ये है कि जब ऐसे डाउट्स आते हैं तो हम उनका क्या करते हैं, कैसे उन्हें हैंडल करते हैं, क्या हम उन्हें दबा देते हैं क्योंकि हम उनसे भागते हैं, हम एक्सेप्ट नहीं करते उस चीज को, या फिर हम उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। डीलिंग विद डाउट्स बिल्कुल उस सफर की तरह जहाँ आप फॉग में चल रहे होते हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप चल रहे हैं, फॉग है लेकिन आप चल रहे हैं, आपको पूरा रास्ता नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन अगर आप रुकते नहीं, अगर आप आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते रहते हैं, तो रास्ता खुद ब खुद क्लियर हो जाता है ना। देखिए, यहीं पर इस्लामिक टीचिंग्स हमें एक बैलेंस्ड अप्रोच सिखाती हैं। इस्लाम हमें सोचने से नहीं रोकता, बल्कि

इनकरेज करता है कि हम अपनी क्रिएशन, अपनी जिंदगी और अपने पर्पस पर गौर करें, लेकिन साथ ही ये भी सिखाता है कि हम अपने सवालों को रिस्पेक्ट के साथ और सही तरीके से सही जगह पर समझने की कोशिश करें। हर सवाल का जवाब आप कह लें कि आपको किसी सर्च इंजन पे नहीं मिल जाता इंटरनेट पर, कुछ जवाब एक्सपीरियंस से भी मिलते हैं, कुछ इल्म से मिलते हैं और कुछ वक्त के साथ साथ समझते हुए मिलते हैं। इसीलिए ओपन कन्वर्सेशंस बहुत जरूरी होती हैं साथियों। अपने पेरेंट्स से बात करना, अपने टीचर्स से पूछना और किसी ऐसे मेंटोर से कनेक्ट करें जो आपको गाइड कर सके बिना जज किए, क्योंकि जब आप अपने डाउट्स को शेयर करते हैं ना तो वो बोझ नहीं रहते, वो एक जर्नी बन जाते हैं, समझने की जर्नी। अब जरा अपने आप से कुछ सवाल पूछते हैं, ठीक है, जो मैं कहती हूँ कि जो आपकी सोच को और गहरा करेगा। सवाल ये है कि क्या मैं अपने डाउट से डरता या डरती हूँ या उन्हें समझने की कोशिश करती हूँ? जब मुझे कोई सवाल कंफ्यूज करता है तो मैं किस से बात करता हूँ? क्या मैं हर चीज का फौरन जवाब चाहता हूँ या मैं पेशेंस के साथ सीखने के लिए तैयार हूँ? क्या मेरा फोकस सिर्फ सवाल पर होता है या मैं उसके पीछे छुपी हुई विजडम को भी समझने की कोशिश कर रहा होता हूँ? अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात जरा सोचिए, अगर आपके पास कोई डाउट है तो क्या वो आपको अल्लाह से दूर कर रहा है या आपको और ज्यादा समझने पर मजबूर कर रहा है? क्योंकि अक्सर डाउट्स हमें दूर नहीं लेकर जाते, बल्कि सही हैंडल किए जाए तो हमें अल्लाह ताला की जात के और करीब ले जाते हैं। और भाई, आज के इस एपिसोड में हम ये भी सीखेंगे कि प्रैक्टिकल तरीके क्या हैं जिनसे हम अपने डाउट्स को सेफली एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे कि ऑथेंटिक रिसोर्सेज से नॉलेज लेना, अपनी फीलिंग्स को लिखना और अपने एक्सपीरियंसेस पर रिफ्लेक्ट करना, और सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें अपने रब पर ट्रस्ट रखना, क्योंकि हर चीज का जवाब फौरन मिलना जरूरी नहीं है लेकिन हर सवाल का मतलब जरूर होता है साथियों। तो प्यारे लिसनर्स, आज का सफर सिर्फ डाउट्स को समझने के लिए नहीं है बल्कि अपने आप को समझने के लिए है, क्योंकि जब आप अपने अंदर के सवालों को सुनते हैं, उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं और उनका जवाब प्रॉपर तरीके से ढूंढते हैं ना, तो आप सिर्फ अपना ईमान स्ट्रॉन्ग नहीं करते बल्कि अपनी पर्सनालिटी को भी ग्रो कर रहे होते हैं। तो साथियों, हमने डाउट्स की इम्पोर्टेंस के बारे में तो बात कर ली और अब हम अपने अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जो कि है जेंटल इस्लामिक गाइडेंस। देखिए, ये वो हिस्सा है जहां हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस्लाम हमें डाउट्स के साथ डील करने का तरीका सिखाता कैसे है, यानी नरमी के साथ, समझ के साथ और ईमान को मजबूत बनाते हुए। लेकिन सबसे पहली बात पता है क्या समझने की, वो ये है कि इस्लाम हमें अपनी आंखें बंद कर अंधों की तरह किसी भी चीज को फॉलो करने को नहीं कहता। इस्लाम हमें सोचने, रिफ्लेक्ट करने और समझने की दावत देता है। देखिए, कुरान मजीद में बार बार ये बात आती है कि इंसान अपनी जिंदगी, अपने आसपास के निजाम और अल्लाह ताला की निशानियों पर गौर करे। सूरह अल अनकबूत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये मिसालें हम लोगों के लिए बयान करते हैं लेकिन इन्हें सिर्फ वही समझते हैं जो इल्म रखते हैं। देखिए, इसका मतलब ये है कि समझना, सीखना और नॉलेज हासिल करना सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है बल्कि ईमान का हिस्सा है। देखिए, अब जरा इस बात पर अपनी डेली लाइफ से कनेक्शन करते हुए देखते हैं ना। मान लीजिए एक 12 साल का बच्चा है, ठीक है, उसका नाम है, क्या नाम रख लें, अली, ठीक है। अली स्कूल में साइंस क्लास में यूनिवर्स के बारे में सीख रहा है, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, बिग बैंग थ्योरी जो है उसके बारे में सीख रहा है। घर आकर वो ये सोचता है कि अच्छा, अगर ये सब कुछ इतना कॉम्प्लेक्स है तो फिर अल्लाह ताला ने इसे कैसे क्रिएट किया? उसके दिमाग में सवाल आता है और वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। अब यहाँ दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो अली अपने सवाल को इग्नोर करे और खुद ही टेंशन लेता रहे, या फिर वो किसी से बात करे। देखिए, जब वो अपने पेरेंट्स या टीचर से रिस्पेक्टफुली पूछता है ना, तो उसे समझाया जाता है कि साइंस हमें किस बात का जवाब देती है, साइंस हमें जवाब देती है कैसे, भाई कैसे चीज बनती है, इसका जवाब हमें साइंस देती है। लेकिन जब हम दीन की तरफ जाते हैं ना, तो दीन हमें क्यों का जवाब देता है। ये क्लैरिटी अली के डाउट्स को खत्म नहीं करती बल्कि उसे एक नई डायरेक्शन देती है और उसका ईमान और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। ये है इस्लाम की अप्रोच साथियों। अब देखिए, इस्लाम की अप्रोच ये है, क्वेश्चंस को दबाना नहीं बल्कि उन्हें सही जगह लेकर जाना। अब अगर हम दीनी एस्पेक्ट से बात करें ना, तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें यही सिखाया कि इल्म हासिल करना हर मोमिन पर फर्ज है और इल्म सिर्फ किताब पढ़ने का नाम नहीं होता, ना ना ना ना, बल्कि समझने का नाम होता है। जब आप सवाल करते हैं तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को ग्रो करते हैं। देखिए, दो तरह की स्टडीज होती हैं, एक ये कि आप रटाफिकेशन कर लें और एक होती है कॉन्सेप्चुअल स्टडी। कॉन्सेप्चुअल स्टडी में आपके क्यों का भी जवाब दिया जाता है और किस तरह इसका भी जवाब दिया जाता है, और इसी को लेकर हमारा दिन

फॉलो करता है इसी पैटर्न को। अच्छा, इसी तरह अगर आगे बढ़े ना तो एक और मशहूर वाकया मुझे याद आता है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। उन्होंने अल्लाह ताला से पूछा था कि या अल्लाह तू मुझे ये दिखा दे कि तू मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। अल्लाह ताला ने पूछा क्या तुम ईमान नहीं रखते, तो उस पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अर्ज फरमाया ईमान तो है लेकिन मैं अपने दिल को इत्मीनान देना चाहता हूँ। ये कितनी गहरी बात है साथियों, जरा सोचें, एक नबी भी अपने दिल के इत्मीनान के लिए सवाल करता है और अल्लाह ताला ने उन्हें जवाब दिया साथियों, उन्हें समझाया। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि सवाल करना गलत नहीं है, अल्लाह ताला सवाल करने को बुरा नहीं मानता, नीयत का साफ होना जरूरी होता है। अगर आप अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, दिल के सुकून के लिए सवाल कर रहे हैं तो इट इज अ गुड थिंग। तो प्यारे लिसनर्स, जब भी आपके दिल में कोई सवाल आए उससे घबराएं नहीं, उसे एक अपॉर्चुनिटी समझें ना, सीखने की अपॉर्चुनिटी, समझने की अपॉर्चुनिटी और अल्लाह के नजदीक होने की अपॉर्चुनिटी। अपने दिल को बंद मत करें, उसे खुला रखें, बट साथ साथ उसे सही डायरेक्शन भी दें। तो चलिए साथियों, अब आगे बढ़ते हैं और अपने तीसरे और बहुत ही प्रैक्टिकल सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है टूल्स फॉर डेली लाइफ। ये वो हिस्सा है जहां हम सिर्फ बात नहीं करेंगे बल्कि सीखेंगे कि रोजमर्रा की जिंदगी में हमें अपने डाउट को कैसे हैंडल करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं हम ये काम, यानी कि सेफ तरीके से, समझदारी के साथ और अपने ईमान को मजबूत बनाते हुए हमें कैसे हैंडल करना चाहिए चीजों को। देखिए, सबसे पहली बात जो याद रखनी है वो ये है कि डाउट्स का आना बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन उनको सही तरीके से हैंडल करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे अगर आपके पास एक छोटा सा प्लांट हो ना, पौधा हो, और उसे सही पानी और रोशनी ना मिले तो वो मुरझा जाता है ना, है ना। लेकिन अगर आप उसका ख्याल रखें तो वो क्या होता है, उसको अच्छी हवा, अच्छा पानी, अच्छे तरीके से रोशनी दें तो क्या होता है, वो और ज्यादा ग्रो करता है, फलता है, फूलता है। बिल्कुल इसी तरह आपके डाउट्स भी हैं, अगर आप उन्हें इग्नोर करेंगे ना या गलत जगह से आप उनका आंसर ढूंढेंगे तो आपके साथ और कुछ नहीं होने वाला। बढ़ेगा तो सही आपका पौधा, लेकिन कंफ्यूजन बढ़ेगी, इट वुड नॉट बी अ हेल्दी थिंग। लेकिन अगर आप उन्हें सही तरीके से एक्सप्लोर करेंगे ना तो ये आपकी ग्रोथ का जरिया बन जाते हैं, हेल्दी ग्रोथ का। देखिए, सबसे पहला टूल हमारे पास है ट्रस्टेड एडल्ट से बात करना। सोचिए, एक बच्चा जिसका नाम आप कह लें कि अहमद है, 11 साल का है, स्कूल में उसका दोस्त उसे कहता है कि भाई इतनी नमाज क्यों पढ़ते हो, इससे क्या फर्क पड़ेगा। अक्सर का बच्चे बैठे होते हैं आपस में एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि भाई इतने तुम तो सजदे कर रहे हो, कौन सा कोई फर्क पड़ने वाला है। अहमद कंफ्यूज हो जाता है, उसके दिल में डाउट आ जाता है कि क्या वाकई नमाज इम्पोर्टेंट है। अगर अहमद इस सवाल को अपने अंदर रखेगा ना तो आहिस्ता आहिस्ता अपनी प्रैक्टिस से दूर होता जा सकता है, क्योंकि उसको आसपास से ऐसा सुनने को मिल रहा है। लेकिन अगर वो अपनी अम्मी या अबू से बात करे ना, या अपने किसी इस्लामिक स्टडी टीचर्स को अप्रोच करे, तो उसे प्यार से समझाया जा सकता है कि नमाज सिर्फ एक फर्ज नहीं है बल्कि अल्लाह ताला से कनेक्शन का एक जरिया है, एक मीडियम है। जब अहमद ये समझता है कि अच्छा, अल्लाह ताला और मेरे बीच का जो ब्रिज है, जो मीडियम है, कनेक्शन है बातचीत का, वो नमाज है, तो उसके डाउट क्लियर हो जाते हैं और उसका ईमान और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। इस एग्जाम्पल से हमें ये सीखने को मिलता है साथियों कि सही लोगों से बात करना कितना जरूरी होता है, क्योंकि आपको दुनिया में हर किस्म के लोग मिलते हैं भाई, हर किसी का अपना ही माइंडसेट होता है। अच्छा भाई, अब अगर आगे बढ़े तो दूसरा टूल है रीड एंड रिफ्लेक्ट। देखिए, आजकल इंटरनेट पर ना बहुत सी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, लेकिन हर इन्फॉर्मेशन सही नहीं होती, नो। इसीलिए जरूरी है कि बच्चे एज एप्रोप्रिएट और ऑथेंटिक इस्लामिक बुक्स, स्टोरीज और आर्टिकल्स पढ़ें। जैसे एक बच्ची है, आप कह लें कि मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, एक बच्ची है आयशा, ठीक है, उसने एक वीडियो देखी जिसमें इस्लाम के बारे में कुछ कंफ्यूज बातें बोली जा रही थी, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई, लेकिन फिर उसे एक अच्छी इस्लामिक स्टोरी बुक मिली, उसने उठाई, जो प्रॉफिट्स के वाकयात से भरी हुई थी। जब उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी स्ट्रगल के बारे में पढ़ा तो उसे समझ आया कि हर प्रॉफिट ने स्ट्रगल्स फेस किए हैं, चैलेंजेस फेस किए हैं, लेकिन उनका ट्रस्ट अल्लाह पर स्ट्रांग था। देखिए, ये रीडिंग सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देती बल्कि इंस्पायरेशन देती है। रिफ्लेक्ट करना यानी जो आपने पढ़ा उस पर सोचना, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को और गहरा बनाता है साथियों। अच्छा चलें, अब आगे बढ़ते हैं और तीसरे टूल के बारे में बात करते हैं, जो कि है फेथ जर्नल रखना। देखिए, ये मेरे लिए ना पर्सनली, ये मुझे मेरी बहुत बहुत ज्यादा फेवरेट चीज है। ये शायद सिंपल लगे लोगों को, लेकिन ये बहुत पावरफुल होती है, बहुत ज्यादा पावरफुल। इसकी पावर ना वर्ड्स में नहीं बयान की जा सकती। फेथ जर्नल रखना, सोचिए एक स्टूडेंट है, उसका नाम जैन है, उसका दिमाग बहुत सारे सवालों से भरा हुआ है, उसके दिमाग में सवाल ही सवाल है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं

जिनके पास सवाल ही सवाल होते हैं, आप उनके एक सवाल का जवाब देंगे वो आपको तीन सवाल और ला कर देंगे। और पता है क्या, जैन भी उन्हीं बच्चों में से एक है। और होता है ये कि उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं, यानी कि कभी लाइफ पर्पस के बारे में, कभी दुआ के एक्सेप्ट होने के बारे में। तो भाई होता क्या है, वो कंफ्यूज फील करता है। फिर होता ये है कि उसका टीचर उसे सजेस्ट करता है कि भाई एक जर्नल रखो। जैन हर दिन अपने सवाल लिखता है, फिर जो आंसर उसे मिलते हैं वो भी लिखता है। कुछ हफ्तों बाद जब वो अपनी डायरी वापस से पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि उसके बहुत से डाउट्स ऑलरेडी क्लियर हो चुके हैं, और जो अभी क्लियर नहीं हुए उन पर वो कामली काम कर रहा है, रिसर्च कर रहा है। लेकिन ये प्रोसेस उसे ऑर्गेनाइज्ड बनाता है, उसे पैनिक से बचाता है और उसे ये फील कराता है कि वो ग्रो कर रहा है। अच्छा, ये चीज सिर्फ इस्लामिक प्रोस्पेक्टिव से नहीं, ये चीज हमारी डेली लाइफ में भी बहुत ज्यादा यूजफुल होती है, जर्नल रखना, अपने क्वेश्चंस के, अपनी डेली लाइफ के जर्नल्स रखना। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, कभी कर देखिएगा आप। अच्छा भाई, अब आगे बढ़ते हैं और चौथे टूल पर आते हैं। टेक योर टाइम, थिंग्स विल बी फाइन, टेक योर टाइम। आज की फास्ट पेस दुनिया में ना हमें सब कुछ जल्दी चाहिए होता है, यानी कि इंस्टेंट आंसर्स, इंस्टेंट रिजल्ट्स। लेकिन फेथ कोई ऐप नहीं है जहाँ पे आप एक क्लिक करें और आपको सब कुछ समझ में आ जाए। कोई चिप थोड़ी ना लगी हुई है दिमाग के अंदर, फौरन से एक क्लिक मारा और डाउनलोड हो गया। तो ये फेथ जो है ना एक जर्नी है, एक प्रोसेस है। जैसे एक स्टूडेंट मैथ सीखता है ना, यानी कि पहले बेसिक एडिशन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एलजेब्रा, बिल्कुल वैसे ही चलता है ये मामला भी, स्टेप बाय स्टेप। सोचे ना, अगर किसी छोटे बच्चे से आप कोई एडवांस्ड इक्वेशन सॉल्व करने को कह दें सेकंड ग्रेड के किसी बच्चे को, तो क्या होगा? पहली बात तो उसे समझ में ही नहीं आएगी। सेकंड ग्रेड के बच्चे को आप एलजेब्रा पढ़ा सकते हैं? नहीं ना, वो कंफ्यूज हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह दीन को भी समझने में टाइम लगता है साथियों। जैसे कि आप बाजार में खिलौने बाय करने जाते हैं ना, बच्चों को खिलौनों का बहुत शौक होता है। आप कभी नोट करें, हर खिलौने के डब्बे के ऊपर ना एक अप्रोप्रिएट एज लिखी होती है। किसी के ऊपर लिखा होता है 3+, किसी के ऊपर लिखा होता है 8 months+, किसी के ऊपर लिखा होता है 8 years+, लिखा होता है ना, है ना? अगर मैं किसी बहुत ही छोटे बच्चे को मतलब यूं समझ लें कि एक फ्यू मंथ्स का बच्चा है, 6 months का बच्चा है कोई, ठीक है, और मैं उसे 3 years के बच्चे का खिलौना पकड़ा दूं, आपको क्या लगता है वो खेल पाएगा? उसे तो समझ में भी नहीं आएगा कि ये क्या चीज है। तो उससे क्या होता है, उसे कंफ्यूजन भरती है। तो भाई, इट्स ओके नॉट टू नो एवरीथिंग राइट नाउ। प्रेशर कम होता है ये चीज जानने से कि मेरी अभी ये एज है कि मैं इसके अंदर कुछ लिमिटेड इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकता हूँ, और आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ मेरी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती चली जाएगी। अभी जो मेरी एज के लिए अप्रोप्रिएट है मैं वो चीजें सीखूं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता न्यू थिंग्स विल कम इन द वे एंड आई विल कीप ऑन एक्सप्लोरिंग देम। इट्स टोटली फाइन, रेस में नहीं भाग रहे हैं किसी, ठीक है? तो भाई, इसी के साथ हम आ गए हैं पांचवें और सबसे पावरफुल टूल पर, यानी कि प्रे फॉर गाइडेंस। देखिए, दुआ एक रिचुअल नहीं है बल्कि एक डायरेक्ट कनेक्शन है अल्लाह ताला के साथ। जब आप कंफ्यूज होते हैं ना, जब आपको समझ में नहीं आता कुछ भी, तो आप सीधा अल्लाह ताला से बात कर सकते हैं। आपको कोई और मीडियम नहीं चाहिए, कोई नहीं, यू आर डायरेक्ट विद अल्लाह ताला। सोचिए, अगर मैं आपको मिसाल दूं, तो अगर कोई बच्चा अपनी लाइफ के एक मुश्किल फेज से गुजर रहा है, उसके घर में प्रॉब्लम्स हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, और वो सोचता है कि अल्लाह ताला मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे, अल्लाह ताला तो सब कुछ देख रहे हैं। देखिए, ये डाउट उसे डिस्टर्ब करता रहता है। एक दिन वो दिल से दुआ करता है कि या अल्लाह मुझे समझ दे, मुझे सबर दे। आहिस्ता आहिस्ता उसकी सिचुएशन चेंज नहीं होती, लेकिन सिचुएशन से डील करने का जो एटीट्यूड है ना, वो जरूर चेंज हो जाता है और वो स्ट्रॉन्ग फील करता है। ये है दुआ की पावर। ये सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करती बल्कि आपको उसका सामना करने के लिए स्ट्रेंथ भी देती है, आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है। अब जरा इन तमाम टूल्स को साथियों एक साथ देखते हैं, ठीक है? जब एक बच्चा अपने डाउट्स को आइडेंटिफाई करता है ना, फिर ट्रस्टेड एडल्ट से बात करता है, फिर ऑथेंटिक रिसोर्स से सीखता है, अपने थॉट्स को जर्नल में लिखता है, पेशेंस रखता है और अल्लाह ताला से गाइडेंस मांगता है दुआओं में, ये कंप्लीट प्रोसेस बन जाता है। ये प्रोसेस ना सिर्फ डाउट्स को क्लियर करता है बल्कि बच्चे की पर्सनालिटी को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है साथियों। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज है साथियों, पता है क्या? क्रिटिकल थिंकिंग। जब बच्चे अपने डाउट्स को एक्सप्लोर करते हैं ना, तो वो सिर्फ आंसर्स नहीं ढूंढते बल्कि सोचना भी सीखते हैं। वो ये समझते हैं कि हर बात को ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए बल्कि समझ कर एक्सेप्ट करना चाहिए। ये उन्हें फ्यूचर में और ज्यादा कॉन्फिडेंट और स्ट्रॉन्ग बनाता है। प्यारे बच्चों, ये टूल्स सिर्फ बचपन के लिए नहीं है, मैं आपको बता दूं, बल्कि हम सब के लिए हैं, चाहे बड़ा चाहे छोटा। हर इंसान अपनी लाइफ में कभी ना कभी डाउट जरूर फेस करता है, और ऐसा नहीं कि एक डाउट आपने आज फेस किया तो कल कोई डाउट नहीं आएगा। दे कीप

0: ये देखने का कि ये डाउट्स असल में हमारी जिंदगी में क्या रोल प्ले करते हैं। देखिए अक्सर हम ये समझते हैं कि डाउट्स एक अंधेर नगरी है, इनके अंदर जाओगे तो गुम हो जाओगे ना, यानी कुछ ऐसा जो हमें कंफ्यूज करता है, इसके अंदर हम खो जाते हैं, भूल भुलैया है। ये चीज हमें डराती है और हमें अपने रास्ते से हटा भी देती है अक्सरों का। लेकिन अगर हम थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज करें ना, अपना नजरिया चेंज करें, तो हमें पता चलता है कि डाउट्स असल में एक रोशनी भी बन सकते हैं। जी हाँ, एक ऐसी रोशनी जो हमें अपने आप को समझने में मदद देती है, जो हमें ये सिखाती है कि हम सब कुछ नहीं जानते, लेकिन बातों को सीखने के लिए हमें हम्बल बनना पड़ता है। चलिए इसको ऐसे समझाती हूँ आपको कि एक छोटा सा बच्चा ले लें, उसका नाम हमजा है। एक दिन उसने अपने अब्बा से पूछा, अगर अल्लाह ताला सब कुछ जानते हैं तो फिर हमें टेस्ट क्यों करते हैं? एक बड़ा लॉजिकल सा सवाल है। बचपन में हम सब ये बात पूछते हैं और अक्सर होगा तो बड़ों को भी मैंने पूछते हुए देखा है। जिनके पास नॉलेज नहीं होती वो शुरू करते हैं नॉलेज गेन करना। नॉलेज की कोई एज नहीं होती नॉलेज गेन करने के लिए। आज आप बचपन में नॉलेज गेन कर लें, अच्छी बात है। जो कि नहीं कर पाता बचपन में, फिर वो बड़े होकर भी सवाल करते हैं, डाउट्स होते हैं। डाउट्स का क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मैंने अक्सर का बड़ों को भी ये सवाल करते हुए देखा कि अगर अल्लाह ताला सब कुछ जानते हैं तो फिर वो हमें टेस्ट क्यों करते हैं? ये एक सिंपल सा सवाल लगता है साथियों, लेकिन इसमें बहुत गहरा मीनिंग छुपा है। अगर हमजा को डांट दिया जाता और कहा जाता कि भाई ऐसे सवाल मत पूछो, ये कौन सा सवाल हुआ, तो शायद उसका दिल बंद हो जाता साथियों। इन शॉर्ट ऐसा होता कि फिर वो सवाल करने से भी डरता और वो अपने दीन को सख्त समझने लगता। लेकिन जब उसके अब्बा ने उसे प्यार से समझाया ना कि टेस्ट का मतलब ये नहीं कि अल्लाह ताला को नहीं पता, बल्कि ये है कि हमारी ग्रोथ के लिए ये टेस्ट होता है। जैसे स्कूल में एग्जाम्स हमें बेटर बनाने के लिए होते हैं, तो फिर जब ऐसे करके हमजा को समझाया गया ना, तब हमजा का डाउट एक रोशनी बन गया। उसने सिर्फ जवाब नहीं सीखा बल्कि एक नई सोच भी हासिल की। जब बच्चे डाउट्स का सामना पेशेंस के साथ करते हैं ना, जब वो रिस्पेक्ट के साथ सवाल करते हैं और जब वो सीखने की नियत से अपने सवालों के जवाब ढूंढते हैं, तो उनका ईमान सुपरफिशियल नहीं रहता, वो गहरा हो जाता है। वो सिर्फ सुनकर बिलीव नहीं कर लेते बल्कि समझकर बिलीव करते हैं। देखिए इस प्रोसेस का एक और बहुत खूबसूरत नतीजा भी होता है, पता है क्या है? एम्पैथी। जब आप खुद डाउट से गुजरते हैं ना, तो आपको दूसरों को समझने में बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है। आप ये रियलाइज करते हैं कि हर इंसान की जर्नी डिफरेंट होती है, हर किसी को जल्दी समझ में नहीं आता, कुछ लोगों को आहिस्ता आहिस्ता समझ में आता है, कोई एक सवाल पर रुक जाता है, कोई दूसरे सवाल की तरफ बढ़ जाता है। ये डाइवर्सिटी ऑफ थॉट्स यानी मुख्तलिफ सोचें इंसान की ग्रोथ का जरिया बनती है, ये हिस्सा है हमारी ग्रोथ का। साथ ही इस पॉइंट पे मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ी देर के लिए रुक कर अपने आप से कुछ सवाल पूछें। क्या मैं अपने डाउट्स को नेगेटिव समझता हूँ या उन्हें एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखता हूँ? जब किसी और के पास सवाल होता है तो क्या मैं उसे जज करता हूँ या समझने की कोशिश करता हूँ? क्या मैं अपने ईमान को सिर्फ फॉलो करता हूँ या उसे समझने की भी कोशिश करता हूँ? देखिए ये एक बिल्कुल अलग चीज है कि हम ये चीज एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भाई हम लोग जो है ना एक मुसलमान इस्लामिक घराने से हैं, तो हमें जो भी कुछ भी बोला जाएगा हम वो फॉलो कर लेंगे। और दूसरी बात ये होती है कि यू आर ग्रेटफुल, यू शो ग्रेटिट्यूड कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ मुस्लिम, लेकिन उसी के साथ साथ मेरे पास जो सवाल है मैं उनके ऊपर रिसर्च भी करूंगा और खुद भी उसके ऊपर इल्म हासिल करूंगा। प्यारे लिसनर्स, ये सवाल आपके आंसर्स नहीं, आपकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। और अब वक्त हमारे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से का है, जो कि है टाटा बाय बाय का। साथियों आज हमने एक बहुत ही खूबसूरत और गहरा सफर तय किया है। हमने सीखा कि डाउट्स नेचुरल होते हैं, सवाल करना गलत नहीं होता बल्कि जरूरी होता है। हमारा दीन इस्लाम हमें रिफ्लेक्ट करना, सीखना और नॉलेज हासिल करना सिखाता है। हमने ये भी जाना कि कैसे प्रैक्टिकल टूल्स जैसे ट्रस्टेड एडल्ट से बात करना, रीडिंग और रिफ्लेक्शन, जर्नलिंग, पेशेंस और दुआ हमारी मदद करते हैं डाउट्स को समझने में। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आज हमने आपके साथ शेयर की ना, वो ये थी कि डाउट्स को रिस्पेक्टफुली अप्रोच करना चाहिए। जब आप अपने सवालों को सही तरीके से हैंडल करते हैं ना, तो अनसर्टेनिटी आहिस्ता आहिस्ता अंडरस्टैंडिंग में बदल जाती है, कन्फ्यूजन कॉन्फिडेंस में तब्दील हो जाती है और आपका ईमान सिर्फ एक लेबल नहीं रहता, वो आपकी पहचान बन जाता है। तो साथियों मैं हूँ सफा और आप सुन रहे थे गाइडिंग लिटिल हार्ट्स। अगर आप भी अपनी कोई बात हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं या कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो भाई अपनी स्टोरी हमें बताते रहें। हमें आप मैसेज कर सकते हैं 666-22-107 पर या हमारे साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं FM 107 कतर। तो भाई सफा और हमारे साउंड डिजाइनर शहबाज को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और रोशनी के इस सफर को जारी रखिए। सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।
1: गाइडिंग लिटिल हार्ट्स RJ सफा के साथ।

0: एम्बुलेंस फायर ट्रक्स और पुलिस कार्स के लिए भी बहुत बड़ी रुकावट है जब इन व्हीकल्स को जल्दी से गुजरना होता है तो किसी भी हादसे का खतरा लाहक बढ़ जाता है इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी पार्किंग की आदतों में बेहतरी लाएं और दूसरों के लिए रास्ता खाली रखें अगर हम थोड़ा सा वक्त निकाल कर अपनी गाड़ी सही जगह पर पार्क करें तो हम सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने इलाके के हर शख्स के लिए फायदा मंद साबित हो सकते हैं इस तरह हम अपनी कम्युनिटी को सेफ ऑर्गेनाइज्ड और पीसफुल बना सकते हैं हमारी छोटी सी सोच और मेहनत से न सिर्फ ट्रैफिक का मसला हल होगा बल्कि हमें अपनी रिलीजियस और सोशल ड्यूटीज को बेहतर तरीके से अदा करने में मदद मिलेगी वजारत दाखला का कहना है कि हम सब मिलकर इस मसले को हल करने में अपना हिस्सा डालें और एक ऐसी सोसाइटी का हिस्सा बने जहां सबके लिए रास्ता खुला हो और सेफ्टी पहली तरजीह हो FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है
1: सेहत की बात हो तो एतमाद चाहिए माहिरीन की राय पर माहिरीन की राय पर लीजिए हाजिर है आपके लिए प्रोग्राम हेल्थ गाइड जहां आपके सवालात के मिलेंगे मुस्तनद जवाबात स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट डॉक्टर्स करेंगे रहनुमाई बीमारियों की पहचान से लेकर इलाज और एहतियात तक सुनिए हर वेंसडे बुध की रात 8 बजे हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी याद रखिए सेहत ही है सबसे बड़ी दौलत
2: FM 107 पर हर गाना हिट हर दूसरा गाना सुपर हिट

0: Maximum music, maximum fun.
1: On FM 107, Dil Se Desi.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: दिन भर की मसरूफियात और थकन के बाद जब कोई शाम को अजगार का अहतमाम करता है तो ये महज जिक्र के चंद अल्फाज नहीं होते, बल्कि अल्लाह ताला से ताल्लुक को मजबूत करने और रूहानी व नफ्सियाती तवानाई को ताज़ा करने का जरिया बनते हैं। आइए समाअत कीजिए शाम के अज़कार FM 107 पर।

0: وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار شام کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے شام بخیر. اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام آفتوں اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین.
1: आप सुन रहे हैं FM 107.
2: FM 107. दिल से देसी.
3: दोस्तों, ट्रैफिक साइन का ख्याल करने से सड़क की हिफाजत बढ़ती है और आप अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच सकते हैं. ट्रैफिक साइंस को समझना और उन पर अमल करना सड़क पर सफर को ज्यादा सिक्योर और आसान बना देता है. ये साइंस हमें स्पीड, रास्ता और खतरे के बारे में आगाही देते हैं, जो कि हमारे लिए फायदेमंद होते हैं. अगर हम इन निशानियों का एहतमाम करते हैं तो ना सिर्फ हम खुद को बल्कि दूसरों को भी महफूज रख सकते हैं. इनका इस्तेमाल करके हम अपनी मंजिल पर आसानी से और कम वक्त में पहुंच सकते हैं बिना किसी परेशानी के. ट्रैफिक साइंस का इस्तेमाल करना ना सिर्फ हमारे सफर को आसान बनाता है बल्कि ये हमारी जिंदगी की हिफाजत भी करता है. हर साइन का अपना एक मकसद होता है, जैसे

0: के स्पीड लिमिट, नो एंट्री या पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, जो हमें सड़क पर हो रही हर हालात के लिए तैयार रखती है। अगर हम इन साइंस को ध्यान से देखें और इनके मुताबिक चलें, तो हम ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरे लोगों के लिए भी खतरा कम कर सकते हैं। ये सफर को ना सिर्फ आसान बल्कि ज्यादा अमन और मुश्किलात से बचाने वाला बना देता है। हर एक ट्रैफिक साइन का अपना अहम रोल है और इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: घर में खाना अगर बच्चों की पसंद का हो तो घर में सुकून बना रहता है। अब आप सोचिए, अगर आपके घर में ही एक नन्ना शेफ छुपा हो तो प्रॉब्लम जड़ से ही खत्म है ना। इसलिए हम आपके लिए लाए हैं खास शो, जिसमें आपके घर के उस नन्हे शेफ को मिलेगी इंस्पिरेशन और रेसिपीज का खजाना। आरजे सरवर के साथ सुनिए जूनियर शेफ, जूनियर शेफ, हर जुम्मे की दोपहर 2:30 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
0: हेलो बच्चों, तैयार हो जाइए एक सुपर फन आर के लिए। हर मंडे 3 बजे से हम लेकर आते हैं सॉन्ग्स, कहानियाँ और सरप्राइजेस, जो आपको हंसाएंगे और सिखाएंगे। अपने फेवरेट कैरेक्टर्स से मिलिए और मैजिकल एडवेंचर्स डिस्कवर कीजिए। सब कुछ एक ही शो में, तो स्नैक्स ले आइए, दोस्तों को बुला लीजिए और ट्यून इन करिए हर मंडे 3 बजे से, हर मंडे 3 बजे से विद आरजे फजील, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
2: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.
3: Qatar National Health Strategy, Health for All. Suniye Dr. Fauzia Shafiq ke saath FM 107. Dil se Desi.
4: Assalamu alaikum rahmatullah. Health for All mein khush aamdeed. हम खाना खाते हैं और फिर बहुत शौक से बाहर जाकर खाना खाते हैं और शौक भी होता है, मगर हम सब समझते हैं कि फूड पॉइजनिंग जो है सिर्फ और सिर्फ बाहर के खानों में होती है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि जो फूड सेफ्टी है वो घर में कैसे की जा सकती है। और इस तरह जैसे कि हम समझते हैं कि फूड पॉइजनिंग सिर्फ बाहर खाना खाते हैं तो ही हो सकती है, लेकिन हकीकत यह है कि ज़्यादातर फूड पॉइजनिंग घर के किचन से ही होती है, बस हमें उसका एहसास नहीं होता। तो आज हम जानेंगे कि रोज़मर्रा की जो छोटी छोटी लापरवाहियां हैं हमें किस तरह से सेहत के मसाइल से दो चार कर देती हैं। यानी ऐसे जरासीम जो नज़र नहीं आते और ये कि उनकी कोई भी स्मेल नहीं होती, जायका नहीं बदलते, लेकिन वो हमारा पेट ख़राब कर देते हैं, उससे बुखार और वॉमिटिंग का सबब भी बनते हैं, बच्चों और बुज़ुर्गों के लिए ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। इसलिए सिर्फ साफ नज़र आना काफ़ी नहीं है। अक्सर अफराद पका हुआ खाना बगैर ढके फ्रिज में रख देते हैं, कच्चा जो गोश्त है वो भी ऊपर रख देते हैं, कई दिन पुराना खाना रख छोड़ते हैं। ये सब जरासीम को दावत देने के बराबर है। इसलिए कच्चा और जो पक्का खाना है उसे अलग रख रखिए। तारीख याद रखिए कि कितने दिनों से आपने ये खाना रखा है, और फिर अगर आपको शक हो कि बहुत दिन हो चुके हैं खाना रखे हुए, तो फिर आप वो खाना ज़ाया कर दीजिए। इसी तरह जो हाथों की सफाई है वो भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, जो दरवाजे हैं उन पर भी हाथ लगते हैं, इसी तरह से जो करेंसी है उन पर भी हमारे हाथ लगते हैं, उन सबको हम छूते हैं तो फिर सीधा अब खाना भी खा लेते हैं। यही सबसे आम वजह है पेट की मुख्तलिफ जो सेहत के हवाले से मसाइल हैं उनकी। तो लिसनर्स, जो साफ किचन है, साफ बावर्ची खाना है, वो सिर्फ और सिर्फ जायके के लिए नहीं है बल्कि सेहत के लिए भी बहुत जरूरी है। हेल्थ फॉर ऑल,
3: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी, हेल्थ फॉर ऑल, FM 107, दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं FM 107,
5: दिल से देसी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. Dil se Desi.
1: Values are values. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Main hoon Nazia aapke saath and welcome to the segment called Our Values. Dosto, aaj is segment mein hum baat karenge ki values aur character building जिम्मेदारी और एक मजबूत बच्चे होने की निशानी भी है. देखिए, मजबूत बच्चा फिजिकली भी स्ट्रांग होता है और मेंटली भी स्ट्रांग होता है, स्पिरिचुअली भी स्ट्रांग होता है, इमोशनली भी स्ट्रांग होता है. आज के दौर में जब दुनिया बहुत तेज रफ्तार हो चुकी है, बच्चों की सिर्फ एकेडमिक कामयाबी पर ज्यादातर लोग तवज्जो देने लगते हैं, तो ऐसे में असल जरूरत इस बात की है कि क्या हम उनके वैल्यूज और कैरेक्टर पर काम कर रहे हैं. एक बच्चा जो सिर्फ पढ़ाई में अच्छा हो लेकिन इंसानी अखलाक से महरूम हो, जिंदगी के मुश्किल सिचुएशन में कमजोर साबित होता हो, ऐसे में क्या हम कह सकते हैं कि उसके वैल्यूज या उसका कैरेक्टर उस तरह से स्ट्रॉन्ग है. इसीलिए तो दोस्तों कहा जाता है कि कंपैशन, ऑनेस्टी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये वैल्यूज जो है वो बचपन से ही सिखाना बहुत जरूरी है. देखिए, कैरेक्टर बिल्डिंग अक्सर हमने इस पर बात भी की है और हम करते भी रहते हैं और होनी भी चाहिए. कैरेक्टर बिल्डिंग का ना मतलब सिर्फ रूल्स सिखाना नहीं है, बच्चे को डिसिप्लिन लाइफ कैसे गुजारनी है, कैसे रूटीन सेट करना है, उसे ट्रेंड करना नहीं, बल्कि बच्चे को ये समझाना है कि सही और गलत में फर्क कैसे करें. जब हम बच्चों को मेहरबानी, एम्पैथी, कंपैशन ये सारी चीजें सिखाते हैं तो उनके अंदर दूसरों के एहसास को समझने की सलाहियत पैदा होती है. ऐसे बच्चे ना सिर्फ अच्छे दोस्त बनाते हैं बल्कि सोसाइटी के लिए भी फायदेमंद साबित होते हैं. देखिए, ऑनेस्टी यानी सच्चाई, ये किसी भी कैरेक्टर की बुनियाद है. अगर एक बच्चा सच बोलना और अपनी गलतियां तस्लीम करना बचपन से सीख ले तो वो अपनी जिंदगी के फैसले ज्यादा हिम्मत और यकीन के साथ करता है. पेरेंट्स और टीचर्स का किरदार यहाँ बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो वो देखते हैं. अगर घर का माहौल सच्चाई पर मबनी हो तो बच्चा भी वही राह इख्तियार करता है. रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम कहते हैं ना कि बच्चे रिस्पॉन्सिबल नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना नहीं चाहते, आप देते हो क्या? रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसी वैल्यू है जो बच्चे को खुद मुख्तारी और जिम्मेदारी का एहसास दिलाती है. छोटी छोटी जिम्मेदारियां जैसे अपना बैग संभालना, अपना होमवर्क वक्त पर खुद ब खुद कर लेना, ये घर के छोटे काम जो है उनमें किसी की मदद कर देना, ये चीजें बच्चों को डिसिप्लिन और सेल्फ कॉन्फिडेंस सिखाती हैं. जब बच्चा ये समझने लगता है कि उसके एक्शंस के नतीज अच्छे हो सकते हैं तो वो उन पर काम भी करता है और वो जिंदगी में बेहतर फैसले भी लेता है, और वो भी अपने आप ही. रिस्पेक्ट सिखाना भी आज के दौर में बड़ा जरूरी हो गया है, खास करके बुजुर्गों का एहतराम करना, बड़ों से अच्छी तरीके से पेश आना, बात करना और मुख्तलिफ सोच रखने वालों का भी लिहाज करना, ये सब वैल्यूज बच्चों को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाती है. ऐसा बच्चा क्लासरूम, वर्कप्लेस और घर हर जगह इज्जत के साथ पेश आता है. रेजिलियंस पे तो हमने बात की ही थी कि किस तरह से रेजिलियंस जो है बच्चों को मेंटली, फिजिकली स्ट्रॉन्ग बना देती है. और रेजिलियंस यानी आप जानते ही हैं कि जब टफ सिचुएशन हो उसमें हिम्मत ना हारना, अपने कैरेक्टर, अपने वैल्यूज, अपने प्रिंसिपल्स के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना. जब बच्चे को हर बार फेलियर से बचा ही दिया जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली कमजोर हो जाएगा, या फिर उसकी गलतियों को छुपाया जाएगा, नजरअंदाज किया जाएगा, तो वो कभी नहीं सीखेगा कि किस तरह से उन गलतियों को एक्सेप्ट करना है.

0: मजबूत और पुर उम्मीद इंसान बनता है। बस आखिर में यही कहूंगी कि वैल्यूज और कैरेक्टर दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं किसी भी बच्चे के लिए, और वैल्यूज और कैरेक्टर बिल्डिंग बच्चे की लॉन्ग टर्म वेलबींग और लाइफ सक्सेस की जमीन तैयार करता है। डिग्री है, मार्क्स है, स्किल्स है, वक्त के साथ बदलती रहती हैं, लेकिन एक अच्छा कैरेक्टर इंसान को जिंदगी भर एक अच्छा इंसान बना के रखता है। अगर हम बच्चों को नेक, जिम्मेदार और रेजिलिएंट बनाना चाहते हैं तो हमें उनके अंदर इंसानी वैल्यूज को पहले दिन से जो है वो इनकल्केट करने की ज़रूरत है। यही असल कामयाबी है और यही एक बेहतर मुस्तकबिल की बुनियाद भी। चलिए दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मुझे यानी नाजिया को और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते हो सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: आप सुन रहे हैं FM 107
3: दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी। Should I so drop it?

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: आप सुन रहे हैं FM 107,
2: दिल से देसी।

0: क्योंकि ये एक बड़ी कामयाबी है कि जिंदगी की आखिरी हालत कैसे गुजरी। इसी तरह हमें नेक अमल नसीब फरमा, नमाज, सदका, सच्चाई, हुस्न अखलाक, खिदमत खल्क, ये सब सालेह अमाल में शामिल हैं। और सबसे बढ़कर तो जन्नत का सवाल है, या अल्लाह हमें जन्नत अता फरमा। समझकर अल्लाह की रहमत चूंकि सब कुछ बदल सकती है, और रहमती वसियात कुल शई, अल्लाह की रहमत हर चीज पर मुहीत है। इसलिए हमें चाहिए कि हम उसकी रहमत का ज्यादा से ज्यादा सवाल करें, उसकी रहमत तलब करें। रहमत तलब करने के साथ साथ मुख्तलिफ आफात और शुरूर मुसीबतों से बचने की दुआ भी साबित है। उनमें से एक दुआ मैं आपको सुनाता हूँ। ए अल्लाह, हम बुरे साथी से तेरी पनाह मांगते हैं। नऊदु बिक मिन साहिबिस्सू। अब बुरे साथी से अल्लाह की पनाह मांगने की क्या वजह हो सकती है? हकीकत तो ये है, इंसान अपने दोस्तों से पहचाना जाता है। बुरा साथी गुनाह की तरफ ले जाता है, वक्त के ज़िया, दिल की सख्ती, इसी तरह आखिरत से लापरवाही का सबब बनता है। अच्छा साथी इंसान को ऊपर उठाता है। सलफ़ सालेहीन की एक और दुआ भी थी, नऊज़ु बिका मिन जारिस सू, यानी अल्लाह बुरे हमसाये से पनाह मांगते हैं। हमसाया अगर अच्छा हो तो जिंदगी आसान हो जाती है, अगर बुरा हो तो घर भी तंग महसूस होता है। और इसी वजह से हमसाया और पड़ोस की अहमियत के मद्देनजर इस्लाम ने भी पड़ोसी के हुकूक बहुत बुलंद रखे हैं। इसी तरह दुआ का अगला जुमला है, ए अल्लाह ऐसे मुनाफिक से बचा जो सामने खैर दिखाए। कुछ लोग जबान से मोहब्बत दिखाते हैं लेकिन दिल में हसद रखते हैं, वो मुस्कुराते हैं मगर नीयत साफ नहीं होती। तो ऐसे मुनाफिक से भी हम अल्लाह की पनाह तलब करते हैं जो सामने खैर दिखाए और अंदर दुश्मनी और शर छुपाए रखते हैं। ए अल्लाह हमें बसीरत अता फरमा और ज़ुकना बसीरा। बसीरत कहते हैं सही पहचान, दिल की समझ, सच और झूठ में फर्क कर पाना। ये बहुत बड़ी नेमत होती है। कैसी नेमत? इस बसीरत के जरिए हम दुश्मन और दोस्त में फर्क कर सकते हैं। ए अल्लाह हमें सालेहीन की माइयत नसीब फरमा, यानी हमारे इर्द गिर्द नेक लोगों की कसरत फरमा। नेक लोगों की सहबत आप सब जानते हैं कि ये तो दिल जिंदा करती है, ईमान बढ़ाती है, सीधे रास्ते और सिरात मुस्तकीम पर चलने में हमारे लिए आसानी का सबब बनती है। मजीद आगे ये भी कहा गया कि अल्लाह हमें सालेहीन ही में शामिल फरमा, सिर्फ उनकी सोहबत ही नहीं बल्कि हमें इसके साथ साथ सोहबत से मुस्तफीद होते हुए हमें इन सालेहीन ही में शामिल फरमा। क्योंकि सिर्फ अच्छों के साथ रहना तो काफी नहीं, खुद अच्छा बनना भी जरूरी है। समीने कराम हमें चाहिए कि हम दोस्त समझ सोच कर दोस्त बनाएं। एक बड़ी बात हमारे आज की दुआ में ये भी है कि सोहबत इंसान को बदल देती है। इस वजह से हम किसको अपना साहिब बनाएंगे, साथी बनाएंगे, ये कोई मामूली सी बात नहीं बल्कि इस सिलसिले में हमें काफ़ी मोहतात रहना चाहिए। इसी तरह पड़ोस की अहमियत, पड़ोसी जो हमारे बाजू में रहते हैं इनका इख्तियार भी नहायत ज़रूरी है। साथ साथ मुनाफ़िकाना चेहरों से बचे रहना, अल्लाह से बसीरत मांगना, नेक लोगों के करीब रहना, ये सब ऐसे निकात हैं जो हमारे लिए दीन पर चलने को आसान बना देते हैं। अल्लाह सुबहानहु व तआला हमें सिरात मुस्तकीम पर कायम और दायम रखे। आमीन या रब्बल आलमीन।
1: उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामेईन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में मगरिब की अजान का वक्त हो गया है। अल्लाहु अकबर।

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्पोर्ट्स हाइलाइट्स में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन और आज हम बात करेंगे इंडियन के मारूफ बल्लेबाज रोहित शर्मा के बारे में। नाम ही काफी है मॉडर्न जनरेशन के लिए। रोहित शर्मा इज अ लेजेंड, इज अ स्टार, इनके बारे में यू नो एवरीथिंग इज ऑन स्टैट्स। एक बहुत बड़ा नाम है इंडियन क्रिकेट के लिए, जो अपनी एलिगेंट बैटिंग और काम लीडरशिप के लिए जाना जाता है। उनका निकनेम हिटमैन पड़ा और ये नाम उन्होंने अपनी एक्सप्लोसिव इनिंग्स से जस्टिफाई भी किया है। रोहित ने लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट यानी ओडीआई में खास तौर पर अपनी पहचान बनाई, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में भी उन्होंने अपनी वैल्यू प्रूव किया है। यह और बात है कि टेस्ट क्रिकेट में अब वो नहीं खेलते हैं, टेस्ट क्रिकेट टीम से वो बेसिकली रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन आज भी लोग उनकी कई ऐसे इनिंग्स है जिसका लोग मिसाल देते हैं कि देखिए इस तरह की बैटिंग होनी चाहिए इन टेस्ट क्रिकेट। वन ऑफ द वेरी फ्यू मॉडर्न क्रिकेटर्स जिन्होंने हर फॉर्मेट T20, टेस्ट और ODI में बहुत बाखूबी, मैं अगर कहूँ यहाँ पर, उन्होंने एडजस्ट किया है और हर तरह के स्टाइल, हर तरह के शॉट्स उनकी बैटिंग में हमने देखा है, जस्ट लाइक विराट कोहली। और अगर स्टैट्स की बात करें तो टेस्ट फॉर्मेट में रोहित शर्मा ने 67 मैचेस खेलकर 4301 रन्स बनाए हैं, जिसमें 12 सेंचुरीज 18 फिफ्टीज शामिल है। दोस्तों ओडीआई क्रिकेट में उनका रिकॉर्ड लाजवाब है, 282 मैचेस में 11577 रन्स और उनका हाईएस्ट स्कोर 264 है, 264, जो कि ओडीआई क्रिकेट की तारीख का सबसे हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर। इसके अलावा उन्होंने 33 सेंचुरीज और 61 हाफ सेंचुरी स्कोर किए हैं, एंड दैट मेक्स हिम अ टिपिकल ओडीआई बैट्समैन। T20 इंटरनेशनल में भी रोहित सक्सेसफुल रहे और T20 इंटरनेशनल में अगर स्टैट्स की बात करूं तो 159 मैचेस खेलकर 4231 रन स्कोर किए हैं, जिसमें 5 सेंचुरीज भी शामिल हैं। दोस्तों उनके बैटिंग का स्टाइल एफर्टलेस लगता है, लेकिन टाइमिंग और शॉट सिलेक्शन उनको बाकी प्लेयर्स से अलग बनाता है। कैप्टन के तौर पर भी उन्होंने इंडिया को कई इंपॉर्टेंट सीरीज और टूर्नामेंट्स में लीड किया है। तो रोहित शर्मा सिर्फ एक प्लेयर नहीं बल्कि मॉडर्न एरा के कंप्लीट मैच विनर है। उम्मीद है आपको आज का ये स्पोर्ट्स हाइलाइट पसंद आया होगा। अगली बार एक और स्पोर्ट्स स्टार के साथ हम हाजिर होते हैं, तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
3: आज ही राब्ता करें
2: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448-88-8806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. Dil se Desi.
1: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मेरे यानी सरवर मिर्ज़ा के साथ आइए जानते हैं वज़ारत दाखला से वीकली अपडेट।
0: हर हफ्ते की सबसे जरूरी अपडेट लेकर आ रहे हैं आरजे सरवर एमओआई वीकली अपडेट प्रोग्राम में। वज़ारत दाखला की हर एक एक्टिविटी, जरूरी खबरें और आप और आपकी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट अवेयरनेस, सब कुछ मिलेगा यहाँ, और जानिए वो सब जो आपके लिए मैटर करता है। एमओआई वीकली अपडेट, आपका वीकली डोज ऑफ न्यूज एंड मच मोर विद आरजे सरवर।
1: पुलिस एकेडमी की नुमाइंदगी करते हुए पुलिस कॉलेज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जहां टुमारोज पुलिस समर 2026 प्रोग्राम के सातवें एडिशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू करने का ऐलान किया गया, जो मैतराश ऐप के जरिए शुरू होगा। हेड ऑफ द टुमारोज पुलिस प्रोग्राम कमेटी मेजर मोहम्मद नासिर अल सैयद ने कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रोग्राम के सफर पर रोशनी डाली, जो 2018 से शुरू हुआ, जहां वक्त के साथ साथ इसकी मकबूलियत और शिरकत में नुमाया इजाफा हुआ। उन्होंने बताया कि प्रोग्राम का मकसद नौजवान नस्ल में कौमी शनाख्त को मजबूत करना और लीडरशिप स्किल्स को फरोग देना है, जबकि ये भी बताया कि प्रोग्राम ने 2023 में प्रिंस नाइफ अवार्ड फॉर अरब सिक्योरिटी में तीसरी पोजीशन हासिल की। उन्होंने वाजे किया कि ये प्रोग्राम कतरी तलबा के लिए है जो 2014 से 2017 के दरमियान पैदा हुए हैं, और रजिस्ट्रेशन इतवार 10 मई को सुबह 9 बजे से शुरू हो गई है और एक हफ्ते तक या फिर सीट्स मुकम्मल होने तक जारी रहेंगी। असिस्टेंट हेड ऑफ द प्रोग्राम कमेटी कैप्टन जाबर राशिद अल शाहवानी ने प्रोग्राम के तनफीजी मराहिल के हवाले से तफसीलात बताई और कहा कि ये जून और जुलाई के दौरान 3 मराहिल में मुनक्किद होगा, जिसमें मिलिट्री और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के साथ साथ फील्ड विजिट्स भी शामिल होंगी। सिस्टम्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम से लेफ्टिनेंट मोहम्मद जाबर अल शारकी ने भी मैतराश ऐप के जरिए इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन का तरीका समझाया और ये बताया कि टुमारोज पुलिस का ऑप्शन सिटीजन्स विंडो में नजर आएगा, जहां सिंपल स्टेप्स के जरिए एप्लीकेशन आसानी और तेजी से मुकम्मल करी जा सकती है। कतर फाउंडेशन फॉर एजुकेशन, साइंस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट ने जुवेनाइल पुलिस डिपार्टमेंट की नुमाइंदगी में वजारत दाखला को अखलाकना इनिशिएटिव में अपनी शिरकत और किरदार के एतराफ में एजाज से नवाजा। ये तकरीब पार्टनर्स ऑफ सक्सेस रिकॉग्निशन सेरेमनी के दौरान मुनक्किद हुई, जो फाउंडेशन की प्री यूनिवर्सिटी एजुकेशन थिएटर में मुनक्किद हुई, जहां मुख्तलिफ रेलिवेंट इदारों के नुमाइंदे भी मौजूद थे। हेड ऑफ द एजुकेशन एंड अवेयरनेस सेक्शन जुवेनाइल पुलिस डिपार्टमेंट कैप्टन मोतिब अली अल कहतानी ने फाउंडेशन की तरफ से सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन हासिल किया। यह एतराफ डिपार्टमेंट के उन कोशिशों को जाहिर करता है जो उसने इनिशिएटिव के जरिए तालीमी और अवेयरनेस एक्टिविटीज में अदा की हैं, जिनसे मुआशरे में शऊर बढ़ाने में मदद मिली है। ये बात भी काबिल जिक्र है कि अखलाकना इनिशिएटिव का मकसद मुआशरे में अखलाकी कीमतों को फरोग देना और तालीम और अखलाक के दरमियान ताल्लुक को मजबूत बनाना है, जो मुख्तलिफ कम्युनिटी एक्टिविटीज के जरिए शऊर पैदा करती हैं। ट्रैफिक वीक 2026 की सरगर्मियों में मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की जानिब से जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ ट्रैफिक के जरिए पैलेस विंडम मॉल में एक ट्रैफिक अवेयरनेस एग्जीबिशन का एहतमाम किया गया, जिसमें मुतालिका इदारों ने भी हिस्सा लिया। इस एग्जीबिशन का मकसद रोड सेफ्टी को फरोग देना और अवाम में महफूज ड्राइविंग कल्चर को बढ़ावा देना है। डायरेक्टर जनरल ट्रैफिक ब्रिगेडियर जाबर अली अल कुबैसी ने एग्जीबिशन का इफ्तिताह किया, जबकि मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ के नॉन कम्युनिकेबल डिजीज प्रिवेंशन प्रोग्राम डिपार्टमेंट के डायरेक्टर शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन हमद अलसानी ने भी इस मौके पर शिरकत की। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के कई डायरेक्टर्स, अफसरान और मुख्तलिफ शिरकत करने वाले इदारों के नुमाइंदे भी तशरीफ फरमा थे। 38वें यूनिफाइड GCC ट्रैफिक वीक के सिलसिले में ये एग्जीबिशन आई क्रॉस सेफली के उनवान से मुनक्किद हुई, जबकि इसी के साथ साथ वर्ल्ड ट्रैफिक डे और अरबिक ट्रैफिक वीक भी मनाया गया, जिनका थीम स्लो डाउन वी आर वेटिंग फॉर यू था। ये सरगर्मियां 8 मई तक जारी रही, जिसमें अवेयरनेस और इंटरैक्टिव एक्टिविटीज शामिल थी, जिनके जरिए लोगों को ट्रैफिक कानून और रोड एटिकेट के बारे में मजीद समझाया।

किया गया। डायरेक्टर जनरल ट्रैफिक ब्रिगेडियर जबर अली अल काबी ने इस बात पर जोर दिया कि इन तीन अहम मौकों का एक साथ आना अवेयरनेस एफर्ट्स को मजीद मजबूत बनाता है और हादसात कम करने और इंसानी जानों की हिफाजत में मदद देता है। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक सर्विसेज की तरक्की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की स्ट्रेटेजिक हदफ का हिस्सा है जो सर्विस क्वालिटी को बेहतर बनाने पर तवज्जो देती है। उन्होंने ये भी बताया कि मैत्राश एप्लीकेशन के जरिए ट्रैफिक सर्विसेज की तादाद 85 तक पहुंच चुकी है जबकि 2025 के दौरान 5,52,000 से ज्यादा मामलात मुकम्मल किए गए जो डिजिटल सर्विसेज के फरोग और असरी सहूलियात की वाज़ेह मिसाल हैं। डायरेक्टर जनरल ट्रैफिक ने इस एग्जीबिशन में शिरकत करने वाले तमाम इदारों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि रोड सेफ्टी एक मुश्तरका जिम्मेदारी है जो कानून की पाबंदी से शुरू होती है और सड़क का एहतराम असल में इंसानी जिंदगी का एहतराम है। दोस्तों, आपकी सेफ्टी के लिए रोड सिर्फ डेजिग्नेटेड पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग से ही क्रॉस करें और ट्रैफिक सिग्नल्स का ख्याल रखें। पेडेस्ट्रियन सेफ्टी एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसमें न सिर्फ पेडेस्ट्रियन बल्कि ड्राइवर्स और अथॉरिटीज भी शामिल हैं। हमेशा अपने आसपास का ध्यान रखें और सिग्नल का इंतजार करें। अगर आपको क्रॉसिंग का वक्त मिल रहा हो तो उसका फायदा उठाएं और सेफली रोड क्रॉस करें। ट्रैफिक रूल्स का तायुन करना सबकी जिम्मेदारी है। जब भी आप रोड पार कर रहे हों, अपने सफर को इंतहाई एहतियात और आराम के साथ पूरा करें। कभी भी जे वॉकिंग ना करें और हमेशा पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें। ड्राइवर्स को भी ये जरूरी है कि वो पेडेस्ट्रियन का ख्याल रखें और उन्हें क्रॉस करने का मौका दें। ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे की सेफ्टी का ख्याल रखें और रोड पर हर वक्त एहतियात बरतें। वजीर दाखला और इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स लखविया के कमांडर शेख खलीफा बिन हमद बिन खलीफा अल्फानी ने रियासत कतर में मुकीम कनाडा के सफीर करीम मॉर्को से मुलाकात की। इस मुलाकात में कई अहम और मुश्तरका दिलचस्पी के मौजूदात पर बातचीत हुई। इसके अलावा दोनों दोस्त ममालिक के दरमियान दो तरफा तआवुन के ताल्लुकात का जायजा लिया गया, खासतौर पर सिक्योरिटी के शोबों में। इसके अलावा दो तरफा तआवुन के रवाबित को मजीद मजबूत बनाने और उन्हें फरोग देने के तरीकों पर भी तबादला ख्याल किया गया। कतर पुलिस स्पोर्ट्स फेडरेशन ने 7th ओपन पुलिस बीच वॉलीबॉल चैंपियनशिप को कामयाबी से मुकम्मल किया जो अलगर्राफा क्लब के बीच वॉलीबॉल कोर्ट्स पर मुनक्किद हुई। इस टूर्नामेंट में वजारत दाखला की तरफ से 6 टीमों ने हिस्सा लिया जबकि कतर आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से भी एक टीम ने शिरकत की। क्लोजिंग सेरेमनी में वाइस प्रेसिडेंट कतर पुलिस स्पोर्ट्स फेडरेशन कर्नल अहमद बिन हमद अल सानी, डायरेक्टर पुलिस इंस्टीट्यूट मेजर फैसल साद अल हाजरी और सिक्योरिटी मिलिट्री स्पोर्ट्स फेडरेशन लेफ्टिनेंट कर्नल स्टाफ खालिद हबाश अल सुवेदी ने शिरकत की। चैंपियनशिप के इख्तिताम पर पुलिस फेडरेशन की टीम चैंपियन करार पाई जबकि पुलिस इंस्टीट्यूट की टीम ने दूसरी पोजीशन हासिल की और कतर आर्म्ड फोर्सेस की टीम तीसरी पोजीशन पर रही। दोस्तों, रोड मार्किंग्स यानी सड़क पे जो निशानात होते हैं वो सड़क की जुबान होते हैं। इन पर अमल करना ट्रैफिक की हिफाजत को बढ़ाता है और लोगों को महफूज रखने के लिए बहुत अहम है। ट्रैफिक साइंस और मार्किंग्स पर अमल कीजिए। याद रखिए कि एक दूसरे का ख्याल रखते हुए हम सब मिलकर इस बात को यकीनी बनाने के लिए काम कर सकते हैं। और हाँ, ट्रैफिक के कानून की तामील करने से हम अपनी और रोड पर अपने इर्द गिर्द के लोगों की जिंदगी को महफूज कर सकते हैं। जनरल डायरेक्टरेट ऑफ ट्रैफिक की जानिब से ट्रैफिक वीक 2026 के दौरान यूनिफाइड गल्फ ट्रैफिक वीक भी मनाया गया जो योर सेफ्टी इज आर गोल के स्लोगन के तहत मुनक्किद किया गया जबकि वर्ल्ड ट्रैफिक डे और अरेबिक ट्रैफिक वीक भी इसके साथ साथ मनाया गया जिनका स्लोगन रहा अवेयरनेस एंड पार्टनरशिप। ये तमाम सरगर्मियां रोड यूजर्स के दरमियान मजबूत पब्लिक अवेयरनेस पैदा करने, ट्रैफिक खतरों को कम करने और हिफाजत को बढ़ावा देने में अहम किरदार अदा करती हैं। रियासत कतर की जानिब से रीजनल, अरब और बैनुल अक्वामी ट्रैफिक इवेंट्स में मुसलसल और फाल शिरकत इस बात की
की तस्दीक करती है कि ट्रैफिक सेफ्टी को एक आला इंसानी कीमत और स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी समझा जाता है। यूनिफाइड गल्फ ट्रैफिक वीक में शिरकत से ये भी वाजे होता है कि रियासत कतर गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के मुश्तरका फैसलों पर अमल करने के लिए पुरअज़्म है और बेहतरीन ट्रैफिक प्रैक्टिसेस को अपनाने में उसका तजुर्बा उसे रीजनल और इंटरनेशनल सतह पर रोड सेफ्टी के हवाले से एक नुमाया मकाम पर लाता है। वजारत दाखिला की सातवीं स्ट्रेटेजिक हदफ के मुताबिक जो सर्विसेज की क्वालिटी को बेहतर बनाने पर मरकूज है, जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ ट्रैफिक मुसलसल ट्रैफिक सर्विसेज को वसी और तरक्की दे रहा है। इसके साथ साथ प्रोसीजर्स और ट्रांजेक्शंस की एफिशिएंसी बढ़ाने पर भी तवज्जो दी जा रही है ताकि ये ज्यादा आसान हो और तेज हो सके। ये तमाम इकदाम डायरेक्टोरेट के मॉडर्न ट्रैफिक सर्विसेज की तरफ रुझान को जाहिर करते हैं। ये बात दोबारा वादे की गई है कि ट्रैफिक सेफ्टी एक मुश्तरका जिम्मेदारी है जो सिर्फ एक फर्ज ही नहीं बल्कि इंसानी और कौमी जिम्मेदारी भी है। ये एक महफूज और मुस्तहकम मुआशरे की बुनियाद रखने में बुनियादी किरदार अदा करती है। तमाम रोड यूजर से अपील की गई है कि वो ट्रैफिक कानून की पाबंदी करें और रोड सेफ्टी की कल्चर को फरोग दें। अवाम को दावत दी गई है कि वो इसके साथ लगाए गए ट्रैफिक एग्जीबिशन का दौरा भी करें जो 28 मई तक जारी रहेगा। आखिर में जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ ट्रैफिक ने अपने तमाम पार्टनर्स का दिल से शुक्रिया अदा किया जिनकी मुसलसल कोशिशों ने ट्रैफिक हादसात कम करने और रोड सेफ्टी को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा किया है। वजारत दाखिला ने अपनी ऑफिशियल सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अवाम को ट्रैफिक वीक 2026 की सरगर्मियों में शिरकत की दावत दी है। जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ ट्रैफिक की जानिब से ट्रैफिक वीक 2026 के हवाले से अवाम में रोड सेफ्टी अवेयरनेस को फरोग दिया जा रहा है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ अवेयरनेस एक्टिविटीज और एग्जीबिशन मुनक्किद की जा रही है जिनका मकसद रोड यूजर्स को ट्रैफिक कवानीन और महफूज ड्राइविंग के उसूलों से आगाह करना है। मिनिस्ट्री ने अपने पैगाम में इस बात पर जोर दिया कि ट्रैफिक सेफ्टी सिर्फ इदारों की ही नहीं बल्कि हर ड्राइवर और रोड यूजर की मुश्तरका जिम्मेदारी है। कवानीन की पाबंदी, ट्रैफिक साइंस का एहतराम और दूसरों के लिए एहतियात बरतना एक महफूज मुआशरे की बुनियाद है। अवाम को हिदायत दी गई है कि वो अपनी और दूसरों की जिंदगी के तहफ्फुज़ के लिए जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें और रोड पर एहतियात और डिसिप्लिन को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं। सामईन, इसी के साथ मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की वीकली अपडेट का सिलसिला अपने अख्तिताम को पहुंचा। अगली मुलाकात तक के लिए प्रोग्राम डिजाइनर शहबाज अंसारी और सरवर मिर्जा को इजाजत दीजिए और याद रखिए कानून की पासदारी और एहतराम कीजिए, कानून आपकी हिफाजत करेगा।

FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। स्ट्रे डॉग्स के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर्स ने कुछ खास प्रोटोकॉल्स रखे हैं जिन्हें फॉलो करना बेहद जरूरी है। जैसे अगर अग्रेसिव स्ट्रे डॉग से आपका सामना होता है तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर मशवरा देती है कि काम रहें, डायरेक्ट आई कॉन्टेक्ट से बचें और पुलिस K9 सेक्शन को 2346555 पर कॉल करें। इसके अलावा डेंजरस एनिमल्स के लिए है लॉ नंबर 10 ऑफ 2019, जिसके मुताबिक डेंजरस डॉग्स जैसे रॉटवीलर्स, डोबरमैन वगैरह या वाइल्ड कैट्स और दूसरे डेंजरस पेट्स की रजिस्ट्री करवाना बेहद जरूरी है। नॉन कंप्लायंस पर 1,00,000 रियाल तक का फाइन हो सकता है। इसके अलावा इंपोर्टिंग पेट्स के लिए भी मिनिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपैलिटी एनिमल रिसोर्सेज से वैलिड इंपोर्ट परमिट लेना जरूरी है। साथ ही वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और माइक्रोचिप भी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448-88-8806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन और आज हम बात करेंगे एक नौजवान बल्लेबाज के बारे में और ये बल्लेबाज है समीर रिजवी। जी हाँ दोस्तों, समीर रिजवी को इंडियन क्रिकेट का एक प्रॉमिसिंग यंग टैलेंट माना जा रहा है जो अपनी अग्रेसिव बैटिंग स्टाइल और फियरलेस अप्रोच की वजह से जल्द ही लाइमलाइट में आ गया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर से ताल्लुक रखने वाले समीर ने डोमेस्टिक क्रिकेट में अपनी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के जरिए सेलेक्टर्स की तवज्जो हासिल की। और दोस्तों, उनकी खास बात उनका अटैकिंग माइंडसेट है, जहां वो प्रेशर सिचुएशंस में भी बड़े शॉट्स खेलने से घबराते नहीं है। मिडिल ऑर्डर में खेलते हुए समीर ने कई मैचेस में टीम को मुश्किल हालात से निकाला है, जैसे कि पिछले दो मैचेस दिल्ली के लिए मुसलसल मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स अपने नाम किए और उनकी स्ट्राइक रेट और कॉन्फिडेंस उन्हें मॉडर्न T20 क्रिकेट के लिए एक परफेक्ट फिट बनाता है। समीर का दिल्ली कैपिटल्स के साथ एसोसिएशन उनके करियर का एक अहम मोड़ है। IPL जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर खेलना किसी भी यंग क्रिकेटर के लिए एक ख्वाब जैसा होता है और समीर ने इस मौके को पूरी तरह से यूटिलाइज करने की कोशिश की है। दिल्ली के ड्रेसिंग रूम में एक्सपीरियंस प्लेयर के साथ रहकर उन्हें सीखने का भी बेहतरीन चांस मिल रहा है और अगर समीर इसी तरह परफॉर्म करते रहे दोस्तों तो वो फ्यूचर में इंडियन क्रिकेट टीम के लिए भी एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बन सकते हैं। उनका टैलेंट और कॉन्फिडेंस उन्हें एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ ले जा रहा है। उम्मीद है आपको आज का ये स्पोर्ट्स हाईलाइट पसंद आया होगा। अगली बार एक और स्पोर्ट्स स्टार के बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

0: FM 107 presents Your Health Matters. Your Health Matter with RJ Shruti.
1: कभी ऐसा हुआ है कि बॉडी कुछ कहना चाहती हो और हम तुरंत रिप्लाई कर देते हैं नॉट नाउ. नेक थोड़ी सी ना स्टिफ हो रही है पर हम बोल देंगे लैपटॉप का काम है. हेड हैवी लग रहा है पर हम कह देंगे बस थोड़ा सा स्ट्रेस है. नींद डिस्टर्ब है पर हम कहते हैं कि अच्छा कोई गोली ले लेते हैं ना, इससे काम चल जाएगा, दिन नॉर्मली निकल जाएगा. वेल, आज हम बात करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग बॉडी सिग्नल्स के बारे में. सच ये है कि बॉडी हमेशा हमसे बात करती रहती है, बस उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी सॉफ्ट होती है और हम उस सॉफ्ट आवाज को अक्सर इग्नोर कर देते हैं. बॉडी का तरीका ड्रामेटिक नहीं होता, वो पहले विस्पर करती है हल्की थकान के थ्रू, मूड ऑफ होने के थ्रू, फोकस कम होने के थ्रू, और अगर हम तब भी नहीं सुनते तो वो आवाज धीरे धीरे लाउड हो जाती है. अक्सर हम सिम्टम्स को एनिमी समझ लेते हैं पर सच ये है कि सिम्टम्स प्रॉब्लम नहीं मैसेजेस होते हैं. हेडेक का मतलब सिर्फ पेन किलर नहीं बल्कि डिहाइड्रेशन का सिग्नल हो सकता है, कभी पुअर स्लीप का, कभी काम के ओवरलोड का. एंड बॉडी सिग्नल्स का मतलब वीकनेस नहीं होता भाई, वो प्रोटेक्शन होता है. यू आर लकी कि आपकी बॉडी आपको अभी भी सिग्नल्स देती है. जैसे जब मोबाइल हीट हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली स्लो हो जाता है. फोन खुद को बचाने के लिए स्लो होता है, ना कि इरिटेट करने के लिए. बिल्कुल वैसे ही जब बॉडी स्लो होती है वो आपको प्रस्टेट नहीं कर रही होती है, वो आपको सेफ रख रही होती है. और एक बात जो हम भूल जाते हैं, बॉडी और माइंड अलग अलग नहीं होते. जो आप फील कर रहे होते हो वो बॉडी में रिफ्लेक्ट होता है. लंबा स्ट्रेस डाइजेशन को अफेक्ट करता है, अनप्रोसेस्ड इमोशंस मसल में टाइटनेस बन जाते हैं, एंजाइटी सांस को शैलो कर देती है. बॉडी एक डायरी जैसी होती है, उसमें वो सब लिखा होता है और दूसरों को दिख रहा होता है जो हम कभी बोल नहीं पाते. वेल, अंडरस्टैंडिंग बॉडी सिग्नल्स का मतलब पैनिक करना नहीं होता, इसका मतलब होता है क्यूरियोसिटी. खुद से आज जरूर पूछना, मेरा बदन मुझसे क्या बात करना चाहता है, और जवाब अक्सर सिंपल होगा, एंड दैट इज रेस्ट, हाइड्रेशन, मूवमेंट और बस थोड़ा इमोशनल रिलीज. जब हम बॉडी के सिग्नल्स को समझना शुरू कर देते हैं ना, तो हीलिंग सिर्फ मेडिसिन से नहीं अवेयरनेस से भी शुरू हो जाती है. और सबसे प्यारी बात, जब आप अपनी बॉडी को सुनते हो वो भी आप पर ट्रस्ट करना शुरू कर देती है. एनर्जी बेटर होती है और स्लीप इम्प्रूव होती है और एक शांत सा इत्मीनान साथ आता है. तो आज एक जेंटल रिमाइंडर, अपनी बॉडी को एनिमी

0: आदमी मत बनाइए, उसे पार्टनर बनाइए, क्योंकि जो बॉडी आपके हर सपने को कैरी करती है वो सिर्फ इतना चाहती है कि आप उसकी एक बात सुन लो, थोड़ा सा उसे भी आराम दे दो। और जब आप उसकी सुनते हो तो आपका हेल्थ सिर्फ गोल नहीं रहती, वो एक रिलेशनशिप बन जाती है। सो याद रखिए, योर हेल्थ मैटर।
1: FM 107 presents Your Health Matter with RJ Shruti.

0: 107 पर वेक अप वेक अप
1: हेल्थ फॉर ऑल। कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी 2030 कहता है हेल्थ फॉर ऑल, और हमारे इस खास शो में बात होगी सेहत से मुतालिक मुस्तनिद मालूमात और जिंदगी बचाने वाली आगाही की। सुनिए प्रोग्राम हेल्थ फॉर ऑल
2: डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ
1: हर जुमेरात शाम 7:15 से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी। मोबाइल हाथ में लेकिन फैमिली पास होकर भी दूर हो चुकी है। क्या आप भी चाहते हैं कि घर के रिश्ते फिर से मजबूत हों और फैमिली के साथ गुजारा वक्त फिर से कीमती लगे? तो सुनिए फैमिली ओरिएंटेड शो जो दिलों को करीब लाता है, संडे से थर्सडे शाम 4 से 5 बजे आरजे महविश खान के साथ डियर फैमिली शो, जो रिश्तों को जिंदा रखता है।
3: Anytime, anywhere.
4: Yes, anytime, anywhere.
3: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

0: 107 पेश करते हैं प्रोग्राम
1: फ्रॉड अवेयरनेस। कई जगहों पे फ्री वाईफाई अवेलेबल होता है, स्पेशली जब आप अपने घर से बाहर होते हैं, कहीं घूमने के लिए जाते हैं, और कई दफा फ्री वाईफाई से कनेक्ट होते ही आपको थोड़ी देर बाद एक मैसेज आता है, योर अकाउंट इज क्रेडिटेड। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वेद और आप सुन रहे हैं फ्रॉड अवेयरनेस। पब्लिक वाईफाई या फेक हॉटस्पॉट्स आपका डेटा, पासवर्ड्स, बैंकिंग इन्फो चुरा सकते हैं। स्पेशली कैफे, एयरपोर्ट, मॉल, हर जगह इस किस्म का ट्रैप हो सकता है। तो आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं? पब्लिक वाईफाई पे किसी भी तरह की बैंकिंग एक्टिविटी ना करें। अननोन नेटवर्क से डू नॉट कनेक्ट, क्योंकि कभी कभी ये फ्री वाईफाई महंगा पड़ सकता है।
2: सतर्क रहें, सावधान रहें। फ्रॉड अवेयरनेस
0: ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
3: कतर्स मोस्ट हर्ड रेडियो स्टेशन एफएम 107 दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: Values are values. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Main hoon Nazia aapke saath and welcome to the segment called Our Values. इस सेगमेंट में हम बात आज करने वाले हैं जी हाँ, ये टॉपिक है इनसिक्योरिटी को लेकर। लोग अपने कॉन्टैक्ट्स, अपने कनेक्शंस आज के दौर में ज्यादातर छुपाते हैं। आपको एहसास या महसूस हुआ है? चलिए आज इसी पे बात करते हैं। देखिए, इंसानी रिश्ते जो हैं वो सिर्फ मोहब्बत और भरोसे पर नहीं चलते, बल्कि खौफ, इनसिक्योरिटी और कंपेरिजन पर भी खड़े होते हैं। दोस्ती का तसव्वुर आम तौर पर ओपननेस और शेयरिंग से जोड़ा जाता है, लेकिन हकीकत में हम अक्सर देखते हैं कि कुछ लोग अपने दोस्तों को अपने दूसरे दोस्तों से मिलवाने नहीं देते या मिलना उनका पसंद नहीं करते। अपने कॉन्टैक्ट्स, अपने कनेक्शंस शेयर करने से कतराते हैं, घबराते हैं और चाहते हैं कि उनके सोशल सर्कल उन्हीं तक महदूद रहे, है ना? सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है? क्या ये सेल्फिशनेस है? क्या इसके पीछे कोई गहरी साइकोलॉजी है? देखिए, सबसे पहले जानना जरूरी है कि इनसिक्योरिटी है क्या। इनसिक्योरिटी असल में अपने आप पर डाउट का नाम है। जब इंसान को लगता है कि वो काफी नहीं है, ना दोस्ती में, ना स्किल में, ना इम्पोर्टेंस में, तो अपने रिश्तों को टाइटली कंट्रोल करने लगता है। ऐसे लोगों को डर होता है कि अगर उनका दोस्त किसी और के कनेक्शन में आ गया तो कहीं उसे ना छोड़ दे, मेरा दोस्त सिर्फ मेरा है। कई लोग अपनी दोस्ती को अपनी प्रॉपर्टी भी समझते हैं। ये सोच होती है कि अगर मैं इससे मिल रहा हूँ तो कोई दूसरा इससे ना मिले। ये रवैया अक्सर पजेसिवनेस और फियर ऑफ अबंडेंट, यही कह सकते हैं कि फियर ऑफ बीइंग अलोन, इस थॉट को प्रोवोक करता है। जब इंसान अपने आप को दूसरों से कंपेयर करता है तो इनसिक्योरिटी और बढ़ जाती है। अगर किसी को लगता है कि उसका कांटेक्ट कमजोर है या वो सोशली उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो अपने दोस्तों को किसी स्ट्रॉन्ग या फिर कामयाब कनेक्शन से मिलवाने देना नहीं चाहता। अंदर ही अंदर डर होता है कि कहीं दोस्त कंपेयर ना कर ले और ये ना सोचे मैं तो इससे बेहतर लोगों से मिल सकता हूँ, मैं इसके चक्कर में क्यों। कुछ लोगों के लिए कनेक्शन सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि पावर का एक जरिया भी होता है। जब आप किसी को किसी से मिलवाते हैं तो आप एक ब्रिज बन जाते हैं। इससे उनको एहसास होता है कि वो इम्पोर्टेंट है। अब अगर वो ब्रिज खत्म हो जाए, अगर लोग उनके बगैर ही कनेक्शन अपने बना ले, तो वो इम्पोर्टेंस और ज्यादा कम हो जाती है। इसलिए वो चाहते हैं कि सब कुछ उनके कंट्रोल में रहे। वहीं एक साइकोलॉजी बचपन से भी जुड़ जाती है। कई बार ऐसे भी देखा गया है कि जो बचपन में फ्रेंडशिप के पैटर्न होते हैं वही चल के अडल्टहुड में भी नजर आते हैं। अगर किसी ने बचपन में रिजेक्शन फेस की या उसके दोस्त बार बार बदलते रहे या उसे अकेले छोड़कर चले गए, तो वो बड़े होकर रिश्तों को बहुत टाइटली पकड़ने की कोशिश करेगा। वो चाहता ही नहीं है उसकी दोस्ती जो है वो डिवाइड हो, क्योंकि उसके लिए दोस्ती का टूटना ऑलरेडी एक इमोशनल जख्म बन चुका है। जब इंसान दूसरों पर ट्रस्ट नहीं करता तो वो अज्यूम करता है, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ऐसे लोग सोचते हैं कि अगर उनका दोस्त उनके दूसरे दोस्त से मिलेगा तो बातें इधर उधर होंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा होंगी या ग्रुप पॉलिटिक्स शुरू हो सकती है। इसीलिए देखा जाए तो वो प्रिवेंशन के तौर पर ही पहले से इस चीज को रोक देता है। कई लोग अपने अंदर ये महसूस करते हैं कि वो इतने इंटरेस्टिंग या इतने वैल्यूएबल नहीं है। उन्हें लगता है कि अगर उनका दोस्त किसी और से मिलेगा तो ज्यादा फन, ज्यादा स्मार्ट और ज्यादा सक्सेसफुल लोग जरूर पसंद आ जाएंगे। ये फीलिंग सेल्फ एस्टीम के मसले से जुड़ी होती है। जब तक इंसान अपनी वैल्यू खुद नहीं मानता, वो दूसरों की नजर में अपनी जगह इनसिक्योर महसूस करता है। नहीं, सोशल इमेज का भी डर होता है। ये रवैया किस तरह नुकसान देता है, इस पे बात करना बड़ा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, इस तरह की जो इनसिक्योरिटीज है ना, वो सिर्फ रिश्तों को घुटन का शिकार नहीं बनाती, बल्कि धीरे धीरे दोस्ती को भी टॉक्सिक बना देती हैं। दोस्त घुटने लगते हैं, उन्हें लगता है कि उन पर पाबंदी लग रही है। आखिरकार या तो वो डिस्टेंस बना लेते हैं या बिल्कुल छोड़ देते हैं, और फिर वही इनसिक्योर इंसान के जो डर थे वो सच बन जाते हैं। अब सवाल उठता है कि इस सिचुएशन का, इस प्रॉब्लम का हल क्या है? इसका हल कंट्रोल में है। नहीं, इसका हल दोस्तों कंट्रोल में है ही नहीं, इसका हल कॉन्फिडेंस में है। जब इंसान अपनी वैल्यू समझ लेता है तो उसे किसी और से मुकाबला महसूस ही नहीं होता। ये समझना जरूरी है कि दोस्ती कॉम्पिटिशन नहीं है। अगर आपका दोस्त किसी और से मिलता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको छोड़ देगा। हेल्दी दोस्ती में स्पेस और फ्रीडम दोनों होनी चाहिए। बस आखिर में मैं तो यही कहना चाहूंगी, और ये कहना गलत नहीं होगा, कि दोस्ती से इनसिक्योरिटी असल में दूसरों का मसला नहीं बल्कि अपने अंदर के खौफ का इजहार है। जब हम अपनी सेल्फ वर्थ को दूसरों के हाथों में दे देते हैं तो हर नया कनेक्शन हमें थ्रेट लगता है, मगर जब हम खुद को एक्सेप्ट करते हैं, अपनी कीमत पर यकीन रखते हैं, तो फिर ना रिश्ते छुपाने की जरूरत होती है, ना लोगों को बांटने की जरूरत पड़ती है, ना ही बांटने का डर होता है। दोस्ती तभी खूबसूरत होती है जब वो खुले दिल और खुले जहन के साथ की जाए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट में एक और नए टॉपिक पर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए नाजिया और शकीब अहमद हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते और सुनते रहिए FM 107 दिल से दिल।

0: लो बच्चों, तैयार हो जाइए एक सुपर फन आर के लिए। हर मंडे 3 बजे से हम लेकर आते हैं सॉन्ग्स, कहानियाँ और सरप्राइजेस जो आपको हंसाएंगे और सिखाएंगे। अपने फेवरेट कैरेक्टर से मिलिए और मैजिकल एडवेंचर्स डिस्कवर कीजिए, सब कुछ एक ही शो में। तो स्नैक्स ले आइए, दोस्तों को बुला लीजिए और ट्यून इन करिए हर मंडे 3 बजे से,
1: हर मंडे 3 बजे से
0: विद आरजे फजील, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
2: दोस्तों, हफ्ते का आज वो दिन एक बार फिर से आ गया है जहां पर बच्चों की कहानी को लेकर एक बार फिर से मैं हो गया हूँ हाजिर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का एक खास शो जिसका नाम है किड स्टोरी, जहां पर बच्चों की कहानियां होती हैं और हर बार उनसे रिलेटेड एक ऐसा टॉपिक होता है जिससे वो तो सीखते ही है, उसके अलावा आप सब और मैं भी इवन सीखता ही हूँ। क्योंकि आजकल के दौर में ये कहानियां जो हैं वो गुमसी हो गई हैं। बच्चों को रात में सुनाने वाली वो दादी वो नानी वाला वक्त जो है वो रहा नहीं, लेकिन FM 107 एक बार आया है लेकर ये किस्सा, ये कहानियां, जहां पर बच्चे अपने दिमाग को एक इमेजिनेशन की दुनिया में ले जा सकते हैं। तो चलिए आज के इस शो को शुरू करते हैं और बच्चों की कहानियों में कुछ सीखने को मिलता है, उनके टॉपिक से रिलेटेड जहां हम बात करते हैं और साथ ही साथ बच्चों की इमेजिनेशन, कॉग्निटिव स्किल, लैंग्वेज, ये सब साथ में डेवलप हो रही होती है। तो दोस्तों, आज की कहानी है आयान को लेकर। आयान एक छोटा सा लड़का जिसके साथ एक प्रॉब्लम थी और वो प्रॉब्लम धीरे धीरे बड़ी होती चली गई और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसने ढूंढा और 9 साल का ये आयान बहुत कुछ सीख गया।
0: हेलो बच्चों, तैयार हो जाइए एक सुपर फन आर के लिए।
2: तो दोस्तों, एक छोटा सा लड़का जिसका नाम आयान है वो 9 साल का है और एक छोटी सी कॉलोनी में जो रहता था जहां सब लोग एक दूसरे को जानते थे। आयान बहुत ही प्यारा, सीधा और शर्मीला बच्चा था। उसकी आंखों में हमेशा से हल्का सा एक डर जो है वो जरूर रहता था, जैसे कि वो किसी को नाराज नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी वो डर जो है चेहरे पे रहता उसके। स्कूल में टीचर उसे बहुत पसंद करते थे क्योंकि वो कभी भी शोर नहीं करता था, हमेशा अपना काम टाइम पर करना, डिसिप्लिन में रहना, सबकी हेल्प करना। घर पर अम्मी कहती थी मेरा बेटा इतना शरीफ है, अब्बू भी उसकी तारीफ करते थे। लेकिन आयान के अंदर एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, एक ऐसी प्रॉब्लम जो किसी को नजर नहीं आती थी और वो कभी किसी को नो नहीं कह पाता था, यानी कि मना नहीं कर पाता था। आयान की ये ना कहने वाली जो प्रॉब्लम है वो आयान की जिंदगी में धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। और ये ना कहने वाली प्रॉब्लम दोस्तों, ये बच्चों में ही नहीं, ये हम बड़ों में भी होती है। अगर कोई आयान से कुछ मांगता, चाहे वो उसका फेवरेट टॉय हो या उसका टाइम, आयान हमेशा कहता ठीक है। उसका दिल कभी कभी मना भी करता था लेकिन उसकी जबान से कभी भी नो नहीं निकलता था। उसे लगता था वो मना करेगा तो लोग उसे पसंद करना बंद कर देंगे और ये डर धीरे धीरे उसकी आदत बन गया। आयान की डेली लाइफ भी इस ना कहने की प्रॉब्लम से मुतासिर होती थी। रोज सुबह आयान स्कूल के लिए तैयार होता, उसका बैग बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से वो खुद पैक करता, बुक्स परफेक्ट ऑर्डर में होती और लंच बॉक्स अम्मी प्यार से पैक करती थी। जब वो स्कूल जाता उसका एक ही गोल होता, सबको खुश रखना। क्लास में जैसे ही वो बैठता उसका फ्रेंड रोहन कहता, आयान क्या मैं तुम्हारी पेंसिल यूज कर सकता हूं? आयान ने तुरंत कहा, बिल्कुल क्यों नहीं। थोड़ी देर बाद कोई और कहता, आयान मेरा इरेजर खो गया, तू अपना दे देना। वो फिर कहता ठीक है। आयान के पास खुद के लिए कुछ भी नहीं बचता था लेकिन वो कभी कंप्लेन नहीं करता था। उसके दिल में हल्का सा सैडनेस जरूर होता था लेकिन वो उसे छुपाए रखता था। लंच टाइम में भी ऐसा अक्सर होता, सब बच्चे उसके अम्मी का तैयार किया हुआ लंच बहुत ज्यादा पसंद करते थे। आयान थोड़ा सैंडविच देना, आयान चिप शेयर कर, और आयान फिर से हर पूछे गए सवाल का जवाब हाँ में देता या ठीक है में देता। कभी कभी उसे भूख लगती लेकिन वो फिर भी स्माइल करता। उसे लगता था कि अगर वो नो कहेगा तो लोग उसे सेल्फिश समझेंगे और ये सोच उसे और ज्यादा चुप कर देती थी। लोग अब धीरे धीरे आयान के हाँ कहने का फायदा उठाने लग गए थे। धीरे धीरे क्लास के कुछ बच्चों को समझ आ गया था कि आयान कभी भी मना नहीं करता। अब उन्होंने उसकी आदत का फायदा उठाना शुरू कर दिया था। एक दिन एक लड़का बोला, आयान मेरा बैग हैवी है, तू उठा ले। आयान का खुद का बैग ऑलरेडी हैवी था, लेकिन फिर भी उसने दूसरे बैग को उठाया। उसके कंधों पर बोझ बहुत बढ़ गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। दूसरा लड़का बोला, आयान टीचर ने मुझे डांटा है, तू आज क्या मेरी तरफ से सॉरी बोल देगा। आयान डर गया लेकिन फिर भी चला गया। अब सिचुएशन ये हो गई थी कि लोग आयान को एक हेल्पर नहीं बल्कि एक ऑलवेज अवेलेबल लड़का समझने लगे थे। अंदर से आयान थक रहा था, उसे लग रहा था कि वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो रुक कर कहे बस अब नहीं। ये दोस्तों हमारे साथ भी होता है, जब हम नो नहीं कह पाते लोग धीरे धीरे हम पर ज्यादा जिम्मेदारी डाल देते हैं और हम खुद को भूल जाते हैं। आयान के दिल की फीलिंग लेकिन क्या कहती थी। रात को जब सब सो जाते, आयान अपने बेड पर लेटे हुए सोचता रहता। उसके दिमाग में पूरा दिन रिपीट होता कि मैं इतना थक क्यों गया, मैंने अपना होमवर्क टाइम पर क्यों नहीं किया, मुझे खेलने का टाइम क्यों नहीं मिला। फिर उसे जवाब मिलता, क्योंकि मैं हर किसी को हाँ कहता हूँ। उसका दिल कहता, आयान तू भी मना कर सकता है, लेकिन उसका डर कहता अगर आयान ने नो यानी कि नहीं कहा तो सब उसे यानी कि आयान को छोड़ देंगे। ये अंदर की लड़ाई बहुत स्ट्रांग होती है। एक तरफ दिल होता है जो सच बोलता है और दूसरी तरफ डर होता है जो हमें रोकता है। आयान के साथ भी यही हो रहा था दोस्तों। उसे लगता था कि दूसरों को खुश रखना ही सबसे जरूरी चीज है, लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा कि खुद को खुश रखना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि दूसरों को खुश रखना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब हम दिल से खुश रहेंगे तो ही तो कोई दूसरा खुश रह पाएगा। और जब हम खुद को इग्नोर करते हैं तो धीरे धीरे हम अंदर से कमजोर वीक होते जाते हैं और फिर बढ़ता है प्रेशर, और ये प्रेशर का कॉन्सेप्ट थोड़ा भारी होता है। आयान के साथ एक दिन क्लास में टीचर ने एक वर्ड यूज किया, प्रेशर। आयान ने पहली बार ये वर्ड ध्यान से सुना। टीचर ने समझाया, प्रेशर तब होता है जब कुछ और करना चाहते हो लेकिन लोग आपको मजबूर करते हैं कि आप उनकी बात मानो। आयान को लगा जैसे टीचर उसके बारे में ही बात कर रही हो, और आयान ने सोचा कि ये तो मेरे साथ होता है, हर रोज होता है। जब वो थक जाता है लेकिन फिर भी हेल्प करता है, जब वो मना यानी कि आयान मना करना चाहता है लेकिन हाँ बोल देता है, ये सब प्रेशर ही तो है। और ये प्रेशर हम सबके जिंदगी में कहीं ना कहीं है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये प्रेशर डबल और ट्रिपल हो जाता है, जहां जिम्मेदारी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, जहां पर ना कहने में हमारे दिल पर बोझ इतना बढ़ जाता है कि हम ना नहीं कहते, वहां प्रेशर डबल हो जाता है। प्रेशर सिर्फ स्कूल या काम का नहीं होता, कभी कभी लोगों को प्रेशर होता है फ्रेंड्स का, क्लासमेट का, अपने फैमिली मेंबर्स का। और अगर हम नो नहीं कह पाते तो ये प्रेशर धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ता रहता है। आयान ने उस दिन डिसाइड तो नहीं किया, लेकिन उसे समझ जरूर आने लगा था कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि लोग उससे काम कहते हैं, प्रॉब्लम ये थी कि वो मना नहीं करता। लेकिन ग्रुप प्रोजेक्ट प्रेशर का एक सिचुएशन ऐसा आता है आयान की जिंदगी में जो धीरे धीरे एक चेंज जरूर लेकर आता है, या कहें एक चेंज की शुरुआत होती है। अगले दिन यानी कि नेक्स्ट डे टीचर ने ग्रुप प्रोजेक्ट दिया। सब बच्चे एक्साइटेड थे लेकिन आयान थोड़ा नर्वस था। उसके ग्रुप के बच्चों ने तुरंत कहा, आयान तुम तो स्मार्ट हो, तुम सबका काम कर सकते हो, और तुम ना ये प्रोजेक्ट अकेले करना। आयान का दिल बोला, ये तो अनफेयर है, लेकिन उसकी जबान ने फिर कहा, ठीक है। अब सब बच्चे आराम से बैठ गए और आयान अकेले काम करने लगा। उसे स्ट्रेस होने लगा, उसने महसूस किया कि ये हेल्प नहीं बल्कि एक्स्ट्रा बर्डन है, और ना कहने की बात को सीखने के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट एहसास था आयान की जिंदगी में कि उसकी लाइफ में इस ग्रुप प्रोजेक्ट में एक्स्ट्रा बर्डन पड़ रहा है जब वो प्रोजेक्ट को अकेले मुकम्मल कर रहा है। फिर भी लेकिन आयान चुप रहा क्योंकि उसे डर था कि अगर मना करेगा तो लोग उसे पसंद नहीं करेंगे। आयान घर आया तो बहुत ज्यादा थक गया। उसने बैग रखा और सीधा बेड पर लेट गया। अम्मी ने पूछा, बेटा आज तुम थके हुए क्यों? आयान ने बस इतना कहा कि कुछ नहीं हुआ। लेकिन अंदर से वो स्ट्रेस फील जरूर कर रहा था। उसका दिमाग उसे हैवी लग रहा था। उसे खेलने का मन था लेकिन एनर्जी नहीं बची थी क्योंकि प्रोजेक्ट में सारा वक्त उसने अपना दे दिया था। दोस्तों ये तब होता है जब हम अपनी लिमिट्स क्रॉस करते हैं, जब हम नो नहीं कह पाते, तो हम अपनी बॉडी और माइंड पर प्रेशर डालते हैं। धीरे धीरे ये थकान सैडनेस में बदल सकती है और फिर होमवर्क का प्रॉब्लम आयान की जिंदगी में आता है। रात को आयान को ये याद आता है कि उसका खुद का होमवर्क अभी तो बाकी है, लेकिन वो इतना थक चुका था कि उससे फोकस ही नहीं हो पा रहा था। उसने बुक खोली लेकिन उसकी आंखें बंद हो रही थी। उसने सोचा, मैंने तो सबका काम किया है लेकिन अपना ही काम आयान नहीं कर पा रहा था, और आयान का ये रियलाइजेशन उसे थोड़ा उदास कर गया। जब हम हर किसी को हाँ कहते हैं तो हम अपने इम्पोर्टेंट काम को मिस कर देते हैं दोस्तों, और फिर हमें रिग्रेट भी होता है। आयान भी वही फील कर रहा था, थोड़ा गिल्टी, थोड़ा अपसेट और थोड़ा कंफ्यूज। अंदर का डर, आयान के दिमाग में एक ही सवाल चल रहा था कि मैं नो क्यों नहीं कह पाता। आयान को लगता था कि अगर वो मना करेगा तो लोग उसे रूड समझेंगे, शायद उसके दोस्त उससे बात करना बंद कर दे, उसकी दोस्ती खत्म हो जाए, लोग शायद उसके साथ खेले ना, अगर आयान ने किसी भी दोस्त की कही हुई बात को मना कर दिया तो। तो ऐसे में आयान कभी किसी को मना नहीं करता। ये डर बहुत कॉमन होता है, हम सब की जिंदगी में होता है कि अगर हमने किसी को ना कर दिया तो। जब हम दूसरे के अप्रूवल पर डिपेंड करते हैं तो हम अपनी आवाज दबाते हैं। लेकिन आयान का दिल स्ट्रांग था, उसका डर उसे रोक रहा था। उसे अभी तक ये नहीं पता था कि सच में स्ट्रांग बनना क्या होता है, और स्ट्रांग बनना होता है अपनी बात रखना। अगले दिन स्कूल में एक इंसिडेंट हुआ जो कि आयान की जिंदगी में टर्निंग पॉइंट होने वाला था। एक लड़का आयान का लंच बिना पूछे ले गया। आयान ने देखा लेकिन आयान ने कुछ नहीं कहा। उसका दिल दुखा, ये उसका फेवरेट सैंडविच था जो आयान लेकर आया था। उसकी अम्मी ने बहुत प्यार से उसका टिफिन स्कूल के लिए प्रिपेयर किया, तैयार किया, और कोई शख्स यानी कि कोई स्टूडेंट आया और बगैर आयान से पूछे उसका टिफिन ले गया। उसने अंदर ही अंदर सोचा ये गलत है, लेकिन आयान ने अपने आप से पूछा कि मैं बोल क्यों नहीं पा रहा। उस मोमेंट ने आयान को अंदर से हिला दिया। पहली बार उसे स्ट्रॉन्गली फील हुआ कि अगर वो चुप रहा तो लोग हमेशा उसका फायदा उठाते रहेंगे। यहीं से उसकी स्टोरी चेंज होने वाली थी धीरे धीरे। घर आकर आयान ने फाइनली अम्मी को सब बताया। मैं मना करना चाहता हूं पर डर लगता है अम्मी। अम्मी ने प्यार से कहा, बेटा नो कहना कहीं से भी बदतमीजी नहीं होती, ये अपनी हिफाजत होती है। आयान ने पहली बार महसूस किया कि शायद वो गलत नहीं था, बस उसे सीखना था कि कैसे बोलना है, क्योंकि ना बोलना ये भी एक आर्ट है। छोटी छोटी प्रैक्टिस से उसने धीरे धीरे सीखना शुरू किया। अम्मी ने उसे सिखाया कि सीधा, सॉफ्ट और पोलाइट नो बोला करो। आयान ने शीशे यानी कि मिरर के सामने प्रैक्टिस किया, सॉरी मैं ये नहीं कर सकता। आयान ने मिरर के सामने देखा और ये लाइन रिपीट करता रहा। पहले उसकी आवाज हल्की थी, फिर धीरे धीरे स्ट्रांग होने लगी। उसे फील हुआ कि वो अपनी बात कह सकता है बिना किसी को हर्ट किए। नेक्स्ट डे एक फ्रेंड बोला, आयान मेरा होमवर्क प्लीज कंप्लीट कर दो। आयान का दिल तेज धड़कने लगा लेकिन उसने हिम्मत की और बोला, सॉरी मैं अपना काम पहले करूंगा। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे लेकिन उसने नो कह दिया, और ये था आयान की जिंदगी का पहला नो।

0: जब उसने अपने किसी फ्रेंड को मना किया। फ्रेंड ने भी गुस्सा नहीं किया, क्योंकि असली फ्रेंड तो वही होता है जो आपके ना कहने पर नाराज ना हो। उसने बस ये कहा, ठीक है, यानी कि आयान के फ्रेंड ने ठीक है में जवाब दिया। आयान हैरान हो गया। उसने सोचा, मैं इतना डर रहा था लेकिन कुछ भी बुरा नहीं हुआ, मेरे दोस्त को बुरा नहीं लगा। उस मोमेंट ने उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा और बढ़ा दिया। अब आयान हर छोटी चीज पर तो नहीं लेकिन जरूरी जगह पर नो कहने लग गया था। अब वो थका होता वो मना करता, अगर काम अनफेयर होता वो पोलाइटली बोलता। अब लोग उसकी रिस्पेक्ट भी करने लग गए थे, क्योंकि अब वो सिर्फ हाँ मशीन नहीं था। और ये हमारी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है, जब आप खुद के लिए खड़े होते हैं तब लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, जब आप खुद के लिए स्टैंड लेते हैं तब आपके लिए लोग स्टैंड लेते हैं। इसलिए आयान की जिंदगी में ये छोटा चेंज एक्चुअली में छोटा नहीं, बहुत बड़ा चेंज था। और इसके बाद शुरू होता है सेल्फ रिस्पेक्ट और बैलेंस को सीखने का लेसन। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम मजीद इस टॉपिक पर बात करेंगे। FM 107 पे ये शो आप सुन रहे हैं, किड्स स्टोरी। सुनते रहे FM 107, दिल से देसी।
1: हेलो बच्चों, तैयार हो जाइए एक सुपर फन आर के लिए। हर मंडे 3 बजे से हम लेकर आते हैं सॉन्ग्स, कहानियाँ और सरप्राइजेस जो आपको हंसाएंगे और सिखाएंगे। अपने फेवरेट कैरेक्टर से मिलिए और मैजिकल एडवेंचर्स डिस्कवर कीजिए, सब कुछ एक ही शो में। तो स्नैक्स ले आइए, दोस्तों को बुला लीजिए और ट्यून इन करिए हर मंडे 3 बजे से, हर मंडे 3 बजे से विद आरजे फजील, ओनली ऑन एफएम 107, दिल से देसी।
0: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का, ये खास शो किड स्टोरी आप सुन रहे हैं, जहां पर आज हमने बात की आयान की। आयान को समझ आया कि जब मैं खुद को रिस्पेक्ट देता हूं तभी दूसरे भी मुझे रिस्पेक्ट देते हैं। उसे अंदर से हल्का फील होने लगा। अब वो गिल्ट या प्रेशर के बिना डिसीजन ले रहा था। आयान ने ये भी सीखा कि हर जगह नो कहना भी जरूरी नहीं है, कभी हेल्प करना अच्छी बात होता है। कई बार हमने और आपने सीखा है कि हर जगह नो कहना ये एक्चुअली में सही नहीं है। जहां आपको अगर परेशानी नहीं हो रही है, आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, तो आपको हेल्प जरूर करनी चाहिए। लेकिन डिफरेंस ये है, मजबूरी से हेल्प इज इक्वल टू प्रेशर, दिल से हेल्प is equals to kindness। आयान को ये सब समझ आ गया था। अब आयान के पास खेलने का टाइम भी था, होमवर्क का टाइम भी था और रेस्ट का भी टाइम था। और आयान ज्यादा खुश रहने लग गया था। उसकी स्माइल अब असली थी, फेक नहीं, क्योंकि अब वो अपनी मर्जी से जी रहा था। जब उसे लगता कि वो प्रेशर किया जा रहा है किसी की तरफ से या फिर किसी दोस्त की तरफ से, तो अब वो मना करना सीख गया था। एक दिन किसी ने फिर उसका लंच लेने की कोशिश की। इस बार आयान ने कामली कहा, प्लीज पूछ कर लो, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। आयान की इस लाइन ने उस बच्चे पर भी असर डाला और दूसरा बच्चा बोला, ठीक है, अब मैं तुमसे पूछ कर ही लूंगा। आयान को फील हुआ कि उसने अपनी बाउंड्री को प्रोटेक्ट किया। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी और आपकी जिंदगी में कि हम मना करना सीखें। अगर आप रिस्पेक्टफुली किसी को मना करें तो ये बेहद अच्छा है, इसलिए क्योंकि इससे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी डेवलप होती है, आप कॉन्फिडेंट होते हैं और साथ ही साथ लोग आपके बिहेवियर को भी समझने लगते हैं। इसलिए बड़ा जरूरी है कि प्रेशर को ना लिया जाए, और जब भी आपको एहसास हो कि आप किसी काम को नहीं करना चाहते तो ऐसे वक्त पे आपको ना यानी कि मना कर देना चाहिए। और फिर आयान ने धीरे धीरे प्रैक्टिस करी, सबसे पहले मिरर के सामने ना कहने की प्रैक्टिस, और फिर सबसे पहला ना उसने अपनी दोस्त से कहा। दोस्त ने बुरा नहीं माना। फिर उसके बाद उसके साथ लाइफ में 2-3 सिचुएशंस और आई जहां पर उसने ना कहना यानी कि दूसरों के काम को मना करना सीख लिया था, और इसी के साथ उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, वो बेहतर शख्स बन गया और उसकी लाइफ में रियल हैप्पी

हैप्पीनेस बैलेंस आ गया। आयान ने ये सीखा कि नो कहना गलत नहीं होता। अगर तुम नो नहीं कहोगे तो लोग प्रेशर डालते रहेंगे। अपनी फीलिंग्स इम्पोर्टेंट होती है और सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रॉन्ग बनना, मतलब अपनी बात कहना। कभी किसी को हर्ट किए बिना भी नो कहा जा सकता है, और जब अपनी लिमिट समझते हो तब तुम ट्रूली स्ट्रॉन्ग बनते हो। दोस्तों, अब आयान सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी एग्जाम्पल बन गया था। क्लास में एक नया बच्चा जो बिल्कुल आयान जैसा, चुप, शर्मीला और हर बात पे हाँ कहने वाला। एक दिन किसी ने उस नए बच्चे से जबरदस्ती काम करवाना चाहा। आयान ने ये देखा और उसके पास जाकर प्यार से बोला, तुम मना कर सकते हो, जब कोई तुमसे जबरदस्ती काम करवाए तो तुम नो कह दिया करो, नो कहना अलाउड है। नया बच्चा डरा हुआ था, लेकिन आयान ने उसे सपोर्ट किया। धीरे धीरे उसने भी नो कहना सीख लिया। आयान को समझ आया कि जब तुम स्ट्रॉन्ग बनते हो तो तुम दूसरों को भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, और ये है लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन। दोस्तों, जब हमारे पास पावर आती है या सुपर पावर आती है तो सबसे पहला काम होता है अपने आप को और फिर दूसरे को स्ट्रॉन्ग बनाना। खुद के लिए खड़ा होना और दूसरों के साथ हो रहे इनजस्टिस के खिलाफ खड़े होना, और ये आयान ने बहुत जल्दी सीख लिया। दोस्तों, इस कहानी से सबसे इम्पोर्टेंट लेसन ये है कि नो कहना वीकनेस नहीं, स्ट्रेंथ है। बहुत बार बच्चे ये सोचते हैं कि अगर वो मना करेंगे तो लोग उन्हें पसंद नहीं करेंगे, लेकिन असल में जो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं वो आपकी बाउंड्रीज भी समझते हैं। आयान की जर्नी हमें ये सिखाती है कि हर वक्त हाँ कहना हमें अंदर से थका देता है। जब हम अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करते हैं तो हम स्ट्रेस, सैडनेस और प्रेशर फील करते हैं, लेकिन जब हम पोलाइटली और रिस्पेक्टफुली नो कहना सीख जाते हैं तो हम अपनी लाइफ को बैलेंस करते हैं। नो कहना किसी को हर्ट करना बिल्कुल नहीं होता, ये सिर्फ अपनी लिमिट बताना होता है, और जब आप अपनी लिमिट बताते हो तो आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करते हो। आयान ने ये भी सीखा कि हेल्प करना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ तब जब वो दिल से हो, ना कि डर या प्रेशर की वजह से। आखिर में रियल स्ट्रेंथ ये नहीं कि आप सबको खुश रखो, बल्कि ये है कि आप खुद को भी खुश रखते हुए दूसरों के साथ बैलेंस बना पाओ। दोस्तों, इस कहानी के 5 बड़े खास लेसन हैं। ये सीखना बेहद जरूरी है। ये स्टोरी बच्चों को ये सिखाती है कि खुद की रिस्पेक्ट करना कितना जरूरी है। अक्सर बच्चे दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपनी फीलिंग्स को, अपने एहसास को इग्नोर कर देते हैं। आयान की कहानी दिखाती है कि जब हम अपनी जरूरत और लिमिट्स को समझते हैं तब हम इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब सेल्फिश होना कभी भी नहीं होता, बल्कि अपनी वैल्यू समझना होता है। जब बच्चे ये कॉन्सेप्ट छोटी एज में समझते हैं तो वो फ्यूचर में बेटर डिसीजंस ले पाते हैं और किसी के प्रेशर में आसानी से नहीं आते। पीयर प्रेशर को समझना ये कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट क्यों है? इस स्टोरी का एक बड़ा लेसन है पीयर प्रेशर को समझना। बच्चे अक्सर फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में आकर वो काम करते हैं जो वो नहीं करना चाहते। आयान के साथ भी ये ही हुआ। वो सिर्फ इसलिए हाँ कहता था क्योंकि उसे डर लगता था कि लोग क्या कहेंगे। ये कहानी क्लियरली बताती है कि प्रेशर कैसा फील होता है और कैसे वो धीरे धीरे स्ट्रेस में बदलता है। जब बच्चे इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो वो अपनी चॉइसेस पर कंट्रोल पाना सीखते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, और इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक बार फिर से मुलाकात होगी। एक नए एपिसोड में एक नई कहानी पर डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हमने बात की ना पर, नो कहने पर, कि कैसे ना कहना बड़ा इम्पोर्टेंट है, और इसमें हमने अलग अलग पॉइंट्स पर भी बात करी। और इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीक एक नए और बेहतरीन टॉपिक के साथ आएंगे, जहां पर बच्चों की कहानी में और भी मजीद हम बात करेंगे। सुनते रहे FM 107, दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: कोई ऐसी किताब है जो किताबों को समझने में मदद करे, या फिर कोई ऐसा दोस्त जो मस्ती मजाक में ही सही लेकिन लाइफ के लेसन भी दे पाए।
4: कस के जूता, कस के बेल्ट, खोस के अंदर अपनी शर्ट, मंजिल को चली सवारी।
3: वेल, ये कोई सुपरफिशियल एड नहीं है, सच्चाई है, क्योंकि FM 107 लेकर आया है एक खास शो फॉर स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स गाइड,
5: द स्टूडेंट्स गाइड।
3: तो सुनिए हर मंडे दोहा वाले कबीर के साथ,
5: कबीर के साथ
3: द स्टूडेंट्स गाइड एंड बी द गाइडिंग लाइट फॉर स्टूडेंट्स हमारे साथ दोपहर 3:30 से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
6: वेलकम टू पिच परफेक्ट शो।
3: FM 107 की जानिब से सन 2026 का एक नया स्पोर्ट्स प्रोग्राम।
6: ये वो लाइव शो है जहां क्रिकेट की हर डिलीवरी, हर शॉट और हर फैसला होता है बिल्कुल पॉइंट पर।
3: तो तैयार हो जाएं एक्सपर्ट एनालिसिस, ताजा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प क्रिकेट कहानियों के लिए
6: ऑन पिच परफेक्ट,
3: क्योंकि यहां क्रिकेट है बिल्कुल परफेक्ट।
6: सुनिए हर ट्यूसडे और थर्सडे, जुड़ जाइए हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन और आरजे फजील के साथ
3: दोपहर 3:00 से 4:00 तक, ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
7: जमाने के साथ साथ स्पोर्ट्स की दुनिया भी बदल रही है और बदल रहा है स्पोर्ट्स को जानने और सुनने का तरीका भी, और हम तो चलते हैं हमेशा जमाने के साथ साथ। इसीलिए FM 107 लाया है स्पोर्ट्स के लिए एक खास प्रोग्राम स्पोर्टकास्ट, हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन के साथ हर वेंसडे दोपहर 1:00 से सिर्फ FM 107 पर।
0: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ

नहीं और न वो किसी मकान और सिमत में कैद है, बल्कि जहाँ कहीं भी उसे इखलास के साथ याद किया जाए वो मुतवज्जे होगा। वो किसी खास मकाम, किसी खास शहर या सिमत से मखसूस और वाबस्ता नहीं। अल्लाह ताला तो न तो सिर्फ मशरिक को पसंद करता है, न सिर्फ मगरिब को, बल्कि तमाम सिमतें उसी की हैं। वही सारी कायनात का इहाता किए हुए है, उसकी कोई हद नहीं। वो हर जगह है, इसलिए जिस जगह और जिस तरफ रुख करके खुलूस के साथ पुकारा जाएगा वो जरूर मुतवज्जे होगा। वो खूब जानता है कि कौन सच्चे दिल से मुझे पुकारता है और कौन महज दिखावे के लिए। समझे कराम, इस आयत का एक शान नुज़ूल ये भी बयान किया जाता है कि मुसाफिर और सवार को क़िबला का रुख मालूम करना चूंकि मुश्किल होता है, तो मसला यह है कि अगर किसी भी तरीके से सही क़िबले का रुख मालूम न कर सके तो तहर्री करके जिस तरफ दिल गवाही दे उस तरफ रुख करके नमाज अदा कर लो। हकीकत तो ये है कि फैली हुई कायनात और उसकी तमाम अशिया ज़बान हाल से अल्लाह ताला की उबूदियत और इताअत का इकरार कर रही हैं। इरशाद होता है, تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم ساتو آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب اس خالق کائنات کی تسبیح کرتے ہیں، بلکہ کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں۔ حالانکہ جب قرآن نازل ہوا تو اس وقت مشرکین مکہ मलाइका को अल्लाह की बेटियां करार देते थे, इसी तरह यहूद उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा और नसारा ईसा अलैहिस्सलाम को इब्नुल्लाह करार देते थे। इसी की तर्दीद फरमाई जा रही है इस आयत में। इरशाद खुदावंदी है, وقال اتخذ الله ولدا سبحانه، यहूद और नसारा का कहना है कि अल्लाह औलाद रखता है। بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون، अल्लाह इस इल्ज़ाम से पाक और बरतर है, आसमानों और जमीन की वसतों में जो कुछ है वो सब उसी का है और ये सब उसी के ताबे फरमान हैं। बदीउ समावाती वल अर्द, वो आसमानों और जमीनों का मुजिद है। वइदा कदा अमरन फइन्नमा यकूल लहू कुन फयकून, और जब वो किसी अमर का फैसला कर लेता है तो बस इतना ही कह देता है कि हो जा, सो वो हो जाता है। अब कुन कहना यानी यकूल कुन फयकून, इस कहने का मतलब ये नहीं कि अल्लाह ताला हमारी आपकी तरह ये दो हरफी लफ्ज कुन बोलता है। और यहाँ जो तरीका इख्तियार किया गया है समझाने के लिए कि बंदों की समझ के लायक आखिर इसके सिवा करीब से करीब पैराया बयान और उसलूब ताबीर और क्या बयान किया जाए। मकसूद सिर्फ इस कदर है कि इधर हक ताला का इरादा हुआ, उधर मान और बिला तवस्सुत तवक्कुफ उसका जहूर अमलन हो गया है। अब मुश्किल ये है कि जो लोग जानते नहीं, अल्लज़ीना ला यअलमून, जो लोग इल्म नहीं रखते, जिनके पास किताब इलाही का इल्म न था, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात का बहुत ज़्यादा मुतालबा करते थे कि अल्लाह उनसे हम कलाम हो या उनके सामने कोई मादी मौजज़ा जाहिर हो। जैसा कि इस आयत में ये जिक्र किया गया है, وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، और नादान लोग ये कहते हैं कि अल्लाह ताला हमसे हम कलाम क्यों नहीं होता, ये कोई निशानी हमारे पास क्यों नहीं आती। كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، यानी ये कोई नई बात नहीं, ऐसी ही बातें उनसे पहले लोग भी कहा करते थे। تشابهت قلوبهم، ऐसे जुहला के दिल मिलते जुलते हैं। قد بينا الآيات لقوم يوقنون، हकीकत यह है कि हमने अपनी आयात साहिब यकीन कौम के लिए बड़ी वजाहत से बयान कर दी है। सबने कराम, यहूद वगैरह वो भी अपने अंबिया से उसी तरह के मुतालबे करती थीं। चुनांचे मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने उनसे मुतालबा किया था कि वो अल्लाह को अलानियतन अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। वो उनसे खारिक आदत मौजज़ात तलब करते और उन्हें ज़िज करते रहते। इससे मालूम होता है कि मुशरिकीन अरब और उनसे कबल की कौमों यहूद वगैरह के दरमियान तबीयत, फिक्र और गुमराही में मुशावहत व वहदत है, उनके दिल एक जैसे हो गए हैं। जब सूरत हाल ये है तो मुशरिकीन और यहूद दोनों के दिल फिक्र, सरकशी और गुमराही एक ही जैसे हो गए, तो इस तरह किसी को किसी पर कोई खास जो है ना फजीलत व बरतरी नहीं रही, यानी सब बराबर है। तशाबहत कुलूबुहुम, हकीकत ये है, कद बैयना लायात लिकौमी यूकिनून, के जो लोग यकीन दिलाने वाले हैं उनके लिए हमने बहुत सी निशानियाँ वाज़ह कर दी हैं। जो शख्स ज़ौक़े यकीन रखता है
وہ نشانیوں میں اپنے یقین کا مصداق اور اپنی ضمیر کی طمانینت پاتا ہے۔

0: हर इंसान के पीछे एक कहानी है, एक जज्बा है, एक ख्वाब है, जहां उसके साथ सिर्फ जॉब टाइटल ही नहीं बल्कि जिंदगी के रंगों का सफर है। एक प्रोग्राम जहां आप जानेंगे वो बातें जो दिल को छू जाएंगी, जहां कामयाबी का मतलब सिर्फ आपकी कुर्सी या ओहदा ही नहीं बल्कि असर है जो आप दुनिया पे छोड़ते हैं। एक नई रूहानी मुलाकात, एक नया जज्बा, एक नई सोच के साथ सुनिए प्रोग्राम बियॉन्ड द जॉब टाइटल हर संडे रात 8 बजे से आरजे सरवर मिर्जा के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बियॉन्ड द जॉब टाइटल, जहां हम बात करते हैं जिंदगी के उन पहलुओं पर जो अक्सर हमारी जिंदगी से छुप जाते हैं। मैं हूं आपका दोस्त सरवर मिर्जा और आज का

हमारा टॉपिक है फ्रॉम 9 to 5 टू 360 degree लिविंग, बैलेंसिंग करियर, फैमिली, पैशन एंड सेल्फ ग्रोथ। दोस्तों, अक्सर हम सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं, काम पर जाते हैं, शाम को थके हुए वापस आते हैं और दिन यूं ही गुजर जाता है। कभी कभी हम ये सोचते भी नहीं कि हम सिर्फ काम करने वाली मशीन बन गए हैं या वाकई एक पूरी जिंदगी जी रहे हैं। आज का हमारा ये जो टॉपिक है फ्रॉम 9 to 5 टू 360 degree लिविंग, इसी सोच को चैलेंज करता है। मतलब ये कि जिंदगी सिर्फ 9 से 5 की जॉब तक महदूद नहीं, बल्कि इससे काफी ज्यादा वसी और रंगीन हो सकती है, अगर हम थोड़ा रुक कर सोचें और अपने आप पे गौर करें। भाई, आज के दौर में पूरा जो मुआशरा है हमें ये सिखाता है कि पहले करियर बनाओ, फिर बाकी चीजें देखना, वो तो चलती रहेंगी वक्त के साथ। स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक, फिर जॉब, प्रमोशन, सैलरी, स्टेटस वगैरह वगैरह, यही सारी चीजें हमारी पहचान बन जाती हैं। लेकिन जब हम एक दिन अक्सर जवाब खामोशी से ढूंढ रहे होते हैं तो हमें काफी चीजें समझ में आती हैं। इस प्रोग्राम में हम इसी खामोशी को समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि काम के अलावा भी हमारी जिंदगी में रिश्ते, शौक, जज्बात, ग्रोथ वगैरह का क्या किरदार है, क्या बचा है और कैसे हम सबको बैलेंस कर एक साथ लेकर चल सकते हैं। तो चलिए जरा एक बात जानने की कोशिश करते हैं कि जब कोई आपसे पूछता है आप क्या करते हैं, तो भाई हम अक्सर जॉब का टाइटल बता देते हैं, हम ये काम करते हैं या वो काम करते हैं, हम ये कहते हैं कि हम इसी तरीके से अपनी जिंदगी गुजारते हैं या हम ये हैं। हम किस बात पर खुश होते हैं या किस बात से डर जाते हैं, इस पे हम कोई फिक्र गौर नहीं करते। आज का सफर इसी सवाल से शुरू होता है, क्या हम सिर्फ अपनी नौकरी हैं या हम कुछ और भी हैं? भाई, आपको इंस्पायर कौन सी चीज करती है, ये बहुत जानना जरूरी है। लेक्चर देने की किसी को जरूरत नहीं है, ये तो हमारे अंदर से आवाज खुद ब खुद आती है। आप अपनी पेस पर सोचिए, अपनी जिंदगी को देखिए और ये महसूस कीजिए कि ये बैलेंस सिर्फ टाइम टेबल का नाम है क्या, बल्कि जहनी सुकून का भी नाम इसके अंदर जुड़ा रहना चाहिए। ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि हम सब कुछ एक दिन में बदल दें। 360 डिग्री लिविंग का मतलब ये नहीं कि जॉब छोड़ दी जाए या जिम्मेदारियों से भागा जाए। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हम अपनी जिंदगी के हर पहलू को थोड़ा सा वक्त और अहमियत देना शुरू कर दें। भाई, करियर अपनी जगह बहुत जरूरी है, लेकिन फैमिली, सेहत, दोस्ती और अपनी खुशी भी उतनी ही कीमती है। जब इन सब को बैलेंस में हम नहीं रखते या इन सब का बैलेंस बिगड़ जाता है तो अंदर से थकान और फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है। आज हम इसी बैलेंस को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप सिर्फ सुनिए नहीं बल्कि सोचिए भी मेरे साथ साथ। शायद आपको अपनी जिंदगी का कोई हिस्सा याद आ जाए जिसे आपने पीछे रख दिया है, जिसे आपने नजरअंदाज कर दिया है। शायद कोई पैशन जो कभी बहुत अजीज था लेकिन अब सिर्फ यादों में रह गया हो। आज हम बात करेंगे कि कैसे हम अपनी जिंदगी को सिर्फ सरवाइव करने से निकाल कर वाकई जीना शुरू कर सकते हैं। इसी सोच के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई, जब हम बच्चे होते हैं तो हम बहुत कुछ बनना चाहते हैं, कभी पायलट, कभी आर्टिस्ट, कभी टीचर, कभी खुद का बिजनेस वगैरह वगैरह। उस वक्त हमारा दिमाग अपॉर्चुनिटी से भरा होता है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं जिंदगी प्रैक्टिकल होती जाती है, बिल्स सामने आ जाते हैं, जिम्मेदारियां ऊपर आ जाती हैं और एक्सपेक्टेशंस हमारे ख्वाबों पर धीरे धीरे कब्जा कर लेती है, गर्द डाल देती है। फिर एक दिन आता है जब हम सिर्फ वही कर रहे होते हैं जो जरूरी लगता है, जो खुशी देता है, वो पीछे रह जाता है। सवाल ये है कि क्या ये नेचुरल है या हमने इसे नॉर्मल बना लिया है। अक्सर लोग कहते हैं अब टाइम नहीं रहा, लेकिन हकीकत ये है कि टाइम होता है, बस प्रायोरिटीज क्लियर होनी चाहिए। जब काम जिंदगी का मरकज बन जाता है तो बाकी चीजें ऑटोमेटिकली सेकंड नंबर पर चली जाती हैं। फैमिली के साथ वक्त कम हो जाता है, दोस्ती सिर्फ फोन मैसेजेस तक ही महदूद रह जाती है और अपने लिए वक्त बिल्कुल खत्म हो जाता है। इस प्रोसेस में
हम अपने असली वजूद से दूर होते चले जाते हैं हम हंसते हुए भी थके हुए दिखते हैं क्योंकि अंदर से हम खुद को सुन नहीं रहे होते हैं समझ नहीं रहे होते हैं भाई जरा सोचिए जब आप वीकेंड पर भी सिर्फ काम के बारे में सोच रहे होते हैं या छुट्टी के दिनों में भी ईमेल्स चेक कर रहे होते हैं तो क्या ये बैलेंस है हाँ काम जरूरी है लेकिन अगर काम ही सब कुछ बन जाए तो भाई जिंदगी तो धीरे धीरे बोर ही हो जाएगी ना तो फिर हम हर चीज से जल्दी इरिटेट भी होने लगते हैं छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है यही वो साइंस हैं यही वो इशारे हैं कि हम खुद से दूर होते जा रहे हैं बियॉन्ड वर्क का मतलब है अपने आप को फिर से डिस्कवर करना जिसके हवाले से हम प्रोग्राम के इस हिस्से में बात कर रहे हैं कि हु आर वी बियॉन्ड वर्क भाई अपने आप को पहचानने के लिए कोई बहुत बड़ा स्टेप लेना जरूरी नहीं कभी कभी सिर्फ ये सोचना काफी होता है कि हमें किस चीज से सुकून मिलता है क्या आपको लिखना अच्छा लगता है क्या म्यूजिक सुनकर या वॉक करते हुए आपका दिल हल्का महसूस करता है अल्लाह ताला के लिए आप अपना वक्त निकालते हैं आप इबादत में ज्यादा सुकून महसूस करते हैं जो कि करते ही होंगे तो ये सब वो चीजें हैं जो हमारी जिंदगी को बैलेंस में रख सकती हैं मसला ये नहीं कि हमारे पास पैशन नहीं मसला ये है कि हम उसे वक्त देना भूल गए तो दोस्तों फैमिली भी हमारी आइडेंटिटी का बहुत अहम हिस्सा होती है लेकिन जब हम फिजिकली साथ होते हुए भी मेंटली एब्सेंट हों तो रिश्ते कमजोर होने लगते हैं बच्चे सिर्फ ये नहीं देखते कि उनके पेरेंट्स उनके लिए क्या ला रहे हैं बल्कि ये भी महसूस करते हैं कि उनके पेरेंट्स उनके साथ कितना मौजूद हैं अगर हम सिर्फ प्रोवाइडर बनकर रह जाएं तो इमोशनल कनेक्शन धीरे धीरे खत्म होने लगता है बैलेंस का मतलब ये नहीं कि हर वक्त साथ रहा जाए बल्कि जब भी हम साथ हैं तो वाकई साथ हों दिस इज इम्पोर्टेंट दोस्ती भी एडल्ट लाइफ में सबसे पहले सेक्रीफाइस होती है हम कहते हैं कि अब बाद में मिलते हैं लेकिन कभी वो बात आता नहीं है दोस्तों ये तो हम जानते ही है ना देख ही रहे दोस्तों के साथ बात करना हंसी मजाक करना बिना किसी एजेंडा के मिलना ये सब चीजें ज़हनी सेहत के लिए बेहद जरूरी होती हैं। भाई जब हम हर चीज को प्रोडक्टिव होने के स्किल पर नापना शुरू कर देते हैं तो हम खुशी के छोटे मोमेंट्स को डिलीट कर देते हैं समझ लीजिए कि आप एक एम्प्लॉय से पहले एक इंसान हैं अगर आप अंदर से खुश नहीं तो कोई भी सक्सेस पूरी तरह फील नहीं होती इसलिए ये जरूरी है कि हम खुद से पूछते रहें कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं भाई थकान सिर्फ बॉडी की नहीं होती कभी कभी रूह भी थक जाती है और जब रूह थक जाती है तो सिर्फ रेस्ट नहीं रिकनेक्ट की जरूरत होती है खुद से अपने आप से और अपनी जिंदगी के मकासद से हर इंसान की जिंदगी अलग होती है ये मैं मानता हूँ इसलिए बैलेंस का फॉर्मूला भी सबके लिए अलग होता है किसी के लिए फैमिली प्रायोरिटी होती है किसी के लिए पर्सनल ग्रोथ किसी के लिए सर्विस किसी के लिए दूसरी चीजें मसला तब पैदा होता है कि जब हम दूसरों का फॉर्मूला अपनी जिंदगी पर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं फलाने को देख के इसको देख के उसको देख के सोशल मीडिया पर दूसरों की परफेक्ट जिंदगी देखकर तो ये भाई हम अपनी रियलिटी से ना खुश इसीलिए हो रहे हैं लेकिन याद रखिए कि रियल लाइफ फिल्टर्स के बगैर होती है और उसमें असल बैलेंस होता है तो जनाब आप सिर्फ अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं है आप एक बेटा या बेटी हैं शायद पेरेंट हैं दोस्त हैं और सबसे पहले एक इंसान हैं जिसके एहसास ख्वाब और ख्वाहिशें हैं जब हम अपनी सारी एनर्जी सिर्फ एक ही जगह लगा देते हैं ना दोस्तों तो बाकी चीजें कमजोर होती चली जाती हैं जिंदगी तब खूबसूरत होती है जब उसके रंग मुख्तलिफ हों अगर सिर्फ एक ही रंग रह जाए तो तस्वीर अधूरी लगती है तो पैगाम यही है काम जरूरी है लेकिन काम के लिए या काम के अलावा भी जिंदगी है ये बाकी जिंदगी कोई लग्जरी नहीं बल्कि जरूरत है जब हम अपने आप को सिर्फ काम तक महदूद कर देते हैं तो हम अपनी असली पोटेंशियल का सिर्फ आधा हिस्सा ही यूज कर रहे होते हैं याद रखिए तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और प्रोग्राम के हिस्से में जानते हैं कि इन सिलसिलों में हमारा पर्पस और उसकी जो ग्रोथ है उसका क्या इम्पैक्ट होता है
तो भाई पर्पस का मतलब ये नहीं होता कि हर इंसान कोई बहुत बड़ा मिशन तलाश करे। अक्सर पर्पस जो है वो छोटी छोटी चीजों में छुपा होता है, जैसे अपना काम ईमानदारी से करना, अपनों के लिए अवेलेबल रहना और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करना वगैरह वगैरह। जब इंसान ये समझ लेता है कि वो सुबह क्यों उठता है और शाम तक किस वजह से मेहनत करता है, तो थकान भी मीनिंगफुल

0: लगने लगती है जिंदगी को डायरेक्शन देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूजन को कम करना बेहद जरूरी है बगैर मकसद के काम जो है वो रूटीन बन जाता है और रूटीन जल्दी बोरियत पैदा करता है इसलिए अपनी जिंदगी में मकसद का होना बहुत जरूरी होता है और हर इंसान के लिए जरूरी होता है वहीं सेल्फ ग्रोथ बहुत अहमियत रखती है एक ऐसा सफर है जो जिंदगी के आखिरी दिन तक चलता रहता है इसका मतलब सिर्फ प्रमोशन लेना या नई स्किल्स सीखना नहीं है बल्कि अपनी सोच रवैयों को अपने रिएक्शंस पर काम करने पे नजर रखना जरूरी है जब हम हर दिन थोड़ा सा सीखते रहते हैं तो हम इमोशनली भी स्ट्रांग होते चले जाते हैं ग्रोथ का एक हिस्सा ये भी होता है कि हम अपनी गलतियों को मान लें और उनसे बेहतर बनने की कोशिश करें भाई परफेक्ट होना जरूरी नहीं है लेकिन बेहतर होना बहुत जरूरी है जो इंसान सीखना छोड़ देता है ना उसकी ग्रोथ वहीं रुक जाती है चाहे वो कितना ही सक्सेसफुल क्यों ना हो तो खादिनो हजरात अपने लिए वक्त निकालना अक्सर लोग खुद गर्जी समझते हैं जबकि असल में ये एक जरूरत है जब आप अपनी सेहत अपने जहन और अपनी इमोशनल स्टेट का ख्याल रखते हैं तभी आप दूसरों के लिए बेहतर बन पाते हैं थका हुआ दिमाग और बोझल दिल किसी को भी पॉजिटिव एनर्जी नहीं दे सकता कितनी सिंपल सी बात है बस हम भूल जाते हैं तो इसीलिए खामोशी के कुछ लम्हात अपनी पसंद की एक्टिविटी या सिर्फ आराम से सांस लेना भी सेल्फ केयर होता है भाई ये छोटी छोटी चीजें आपको दोबारा मजबूत बनाती हैं जब आप खुद को नजरअंदाज करते हैं तो धीरे धीरे आप अपनी जिंदगी से भी दूर होते चले जाते हैं तो जनाब पर्पस हमेशा करियर से जुड़ा हुआ हो ये जरूरी नहीं कभी कभी पर्पस जो है जो मकसद है वो फैमिली के लिए अच्छा रोल मॉडल बनना भी होता है कभी किसी की मदद कर देना किसी को सुन लेना या किसी के काम आना भी जिंदगी का मकसद बन सकता है व्हाई नॉट जब हम अपनी जिंदगी सिर्फ अपने फायदे तक महदूद नहीं रखते बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ करते हैं तो अंदर से एक अलग सा सुकून मिलता है नोटिस कीजिएगा ये सुकून पैसा या पोजीशन से नहीं आता मकसद वाली जिंदगी में सेटिस्फेक्शन होता है इंसान जब ये महसूस करता है कि उसकी जिंदगी किसी के काम आ रही है तब उसे अपनी वैल्यू का एहसास होता है जो हर चीज को बहुत ही क्लियर कर देता है दोस्तों जिंदगी में ग्रोथ का एक बहुत बड़ा हिस्सा कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है क्योंकि जब तक हम हमेशा वही करते रहते हैं जो आसान और फैमिलियर होता है तब तक हम ग्रो ही नहीं कर पाते नई चीजें ट्राई करना नए लोगों से मिलना या अपनी कमजोरी पर काम करना ये सारी चीजें शुरू में मुश्किल लगती हैं, लेकिन यही मुश्किल बाद में आपकी मजबूती बन जाती है आपकी स्ट्रेंथ बन जाती है ग्रोथ का मतलब ये नहीं कि हर चेंज अच्छा ही हो बल्कि ये कि हर एक्सपीरियंस से कुछ सीखा जाए भाई जब हम सिर्फ डर की वजह से रुक जाते हैं तो हम अपनी पोटेंशियल का बड़ा हिस्सा जाया कर देते हैं बिना इसको रियलाइज किए तो जनाब 360 डिग्री लिविंग का मतलब प्लानिंग से ज्यादा अवेयरनेस है अवेयरनेस के आप किस स्टेज पर खड़े हैं आप किस चीज से खुश हैं और किस चीज से थके हुए हैं जब इंसान अपने इमोशंस और अपनी लिमिट्स को समझना शुरू करता है तो बैलेंस नेचुरली बिल्ड होना शुरू हो जाता है आप खुद महसूस करने लगते हैं कि कहाँ स्लो होना है और कहाँ थोड़ा ज्यादा एफर्ट चाहिए हर चीज को कंट्रोल करना मुमकिन नहीं होता लेकिन रिस्पॉन्ड कैसे करना है ये हम सीख सकते हैं तो दोस्तों प्रोग्राम सुन रहे हैं आप बियॉन्ड द जॉब टाइटल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सरवर मिर्जा आपके साथ कहीं भी मत जाइएगा क्योंकि अभी आगे हमें बहुत कुछ समझना बाकी है बस मैं यूं गया और यूं वापस आया देखते और सुनते रहिए एफएम 107 दिल से देसी
1: हर इंसान के पीछे एक कहानी है एक जज्बा है एक ख्वाब है जहां उसके साथ सिर्फ जॉब टाइटल ही नहीं बल्कि जिंदगी के रंगों का सफर है एक प्रोग्राम जहां आप जानेंगे वो बातें जो दिल को छू जाएंगी जहां कामयाबी का मतलब सिर्फ आपकी कुर्सी या ओहदा ही नहीं बल्कि असर है जो आप दुनिया पे छोड़ते हैं एक नई रूहानी मुलाकात एक नया जज्बा एक नई सोच के साथ
0: अवेयरनेस जिंदगी को रिएक्टिव से प्रोएक्टिव बनाती है और जब लाइफ प्रोएक्टिव हो जाए तो स्ट्रेस कम और क्लैरिटी ज्यादा होती है डेली रूटीन की अगर बात करें। अक्सर लोग सोचते हैं कि जब जिंदगी सेट हो जाएगी तब हम खुद पर फोकस करेंगे, लेकिन सच ये है कि जिंदगी कभी फुल्ली सेट नहीं होती, हमेशा कुछ ना कुछ चल रही होता है, ये हम जानते हैं, हम देख ही रहे हैं। इसलिए जरूरी ये है कि हम वेट करना छोड़ दें और अभी से बैलेंस बनाना शुरू करें। जब जागो जब सवेरा, छोटे छोटे स्टेप्स बहुत पावरफुल होते हैं। रोज थोड़ा सा वक्त अपने लिए, अपनों के लिए और अपनी ग्रोथ के लिए निकालना ही काफी है। जिंदगी परफेक्ट नहीं होती मगर मीनिंगफुल जरूर हो सकती है। जब हम इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो प्रेशर कम हो जाता है और जीना थोड़ा आसान लगने लगता है, अंदर से सुकून मिलता है। पर्पस और ग्रोथ का सबसे खूबसूरत असर ये होता है कि इसका फायदा सिर्फ आपको नहीं बल्कि आपके आसपास के लोगों पे भी बेहद असर डालता है। पॉजिटिव एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। जब आप इमोशनली बैलेंस्ड होते हैं तो आपका रवैया भी हल्का और पॉजिटिव होता है। आप छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करते, बेहतर सुनते हैं और समझदारी से रिस्पॉन्ड करते हैं। इस तरह आप घर पे, ऑफिस पे और सोसाइटी के हर जगह बेटर एनर्जी स्प्रेड करते हैं। भाई ग्रोथ सिर्फ सेल्फ इम्प्रूवमेंट नहीं होती बल्कि कलेक्टिव इम्प्रूवमेंट बननी चाहिए। जब एक इंसान बेटर होता है या बेहतर होता है तो उसके साथ जुड़ी हुई जिंदगियां भी पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करने लगती हैं, क्वाइटली विदाउट फोर्स, क्योंकि आप अपनों को अच्छे मशवरे दे सकते हैं, उनकी अच्छी तरह हेल्प कर सकते हैं। जब अपने आप को बैलेंस और सीधा रखेंगे तो दूसरों के जब भी तो काम आ सकते हैं, तो इसलिए उनको भी फिर बेहतरी मिल सकती है इंशाल्लाह ताला। तो जिंदगी को सिर्फ वीकेंड का इंतजार बना देना बहुत आम सी बात हो गई है, लेकिन जब हम सिर्फ दो दिन खुश होने का प्लान बनाते हैं और बाकी दिन सिर्फ गुजार देते हैं तो जिंदगी भारी लगने लगती है। 360 डिग्री लिविंग का मतलब ये है कि हर दिन में कुछ ना कुछ मीनिंगफुल हो, चाहे वो एक अच्छा कन्वर्सेशन हो, थोड़ी सी वॉकिंग हो या कोई नई चीज सीखना हो। हर दिन का अपना एक छोटा सा मकसद होना चाहिए दोस्तों। जब हम हर दिन को सिर्फ एंड करने के बजाय फील करना शुरू कर देते हैं तो जिंदगी धीरे धीरे बेहतर होने लगती है, और ये चेंज जोरदार नहीं मगर बहुत गहरा और लॉन्ग लास्टिंग होता है विद इन आवर सेल्फ्स। दोस्तों जिंदगी एक रेस नहीं जहां सिर्फ जीतना मकसद हो, ये एक सफर है जिसमें हर शख्स का पेस अलग होता है। आपको किसी और की स्पीड फॉलो करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अपनी जिंदगी के डिसीजंस अपनी सिचुएशंस के मुताबिक लीजिए। जब हम अपनी वैल्यूज, अपनी हेल्थ और अपनी लिमिट्स को रेस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं तो अंदर से सुकून मिलता है, बैलेंस मिलता है। और बैलेंस का मतलब ये नहीं कि सब कुछ इक्वल हो बल्कि ये कि सब कुछ मैनेजेबल हो। जब जिंदगी मैनेजेबल लगने लगे तो हम बिना स्ट्रेस के ग्रो कर पाते हैं, और इसी ग्रोथ में वो सुकून छुपा होता है जिसका हम बरसों से इंतजार कर रहे होते हैं खामोशी के साथ। तो इस पॉइंट पर रुककर सोचना बहुत जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी से वाकई क्या चाहते हैं। भाई कोई और क्या चाहता है, सोसाइटी क्या चाहती है या लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं मुझसे, ये सब सेकेंडरी चीजें नहीं बननी चाहिए। असल सवाल ये है कि आप अंदर से किस किस्म की जिंदगी जीना चाहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इंसान खुद से ऑनेस्ट होता है ना, सच्चा होता है या हो जाता है तो जवाब धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाते हैं। शायद फौरन क्लियर ना हो लेकिन डायरेक्शन मिल जाएगा, और डायरेक्शन मिल जाना ही काफी होता है शुरुआत के लिए। बैलेंस, पर्पस और ग्रोथ एक दिन में नहीं आती लेकिन जब आने लगते हैं तो जिंदगी को बहुत मीनिंगफुल बना देते हैं। तो दोस्तों हर इंसान के पास अपनी कहानी होती है, अपनी स्ट्रगल होती है और अपनी जर्नी होती है, इसलिए कंपैरिजन जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। जब हम दूसरों की हाइलाइट्स को अपनी बिहाइंड द सीन से कंपेयर करते हैं तो हमेशा खुद को कम महसूस करते हैं। भाई ग्रोथ का मतलब ये भी है कि हम अपनी जर्नी को एक्सेप्ट करें। आज हम जहां खड़े हैं वो भी किसी वक्त आपका ख्वाब था, हैं? ये याद कर लीजिए बस। इस बात को याद रखना शुक्र के एहसास को जिंदा रखता है। जब शुक्र आता है तो कंप्लेंट्स जो हैं वो कम हो जाती हैं, और जब कंप्लेंट्स कम हो जाती हैं तो जहन हल्का और जिंदगी ज्यादा इंजॉयबल लगती है रोज रोज के मोमेंट्स में। तो दोस्तों पर्पस के साथ जीने का एक फायदा ये भी होता है कि डिसीजंस लेना आसान हो जाता है। आप कंफ्यूज नहीं रहते कि हाँ कहें या ना। आप इजीली समझ जाते हैं कि कौन सी चीज आपकी जिंदगी में फिट होती है और कौन सी सिर्फ टाइम वेस्ट कर रही है। जब इंसान को अपनी डायरेक्शन पता होती है तो वो डिस्ट्रैक्शन से जल्द बाहर आ जाता है। हर मौका एक्सेप्ट करना जरूरी नहीं, कभी कभी किसी चीज को छोड़ देना भी ग्रोथ होती है। भाई पर्पस आपको बाउंड्रीज बनाना सिखा देता है और हेल्दी बाउंड्रीज होना बैलेंस्ड जिंदगी के लिए बहुत जरूरी होती है। वरना हम हर जगह एनर्जी शिफ्ट करके खुद को थका देते हैं बिना रियलाइज किए। जिंदगी में ग्रोथ सिर्फ अचीवमेंट से मेजर नहीं होती, कभी कभी ग्रोथ ये होती है कि आप पहले से ज्यादा काम हो जाएं, सुकून में आ जाएं। पहले जो बात इरिटेट करती थी अब आप उस पर मुस्कुरा देते हैं, ये भी प्रोग्रेस है। इमोशनली मैच्योरिटी भी सेल्फ ग्रोथ का अहम हिस्सा है। जब आप चीजों को पर्सनल लेना कम कर देते हैं और सिचुएशन को समझना शुरू कर देते हैं तो कन्फ्लिक्ट्स कम और क्लैरिटी बढ़ जाती है। इस मैच्योरिटी के साथ रिलेशनशिप मजबूत होती है और काम भी बेहतर होता है। ग्रोथ का मतलब मजबूत होना है, लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा आप सख्त हो जाएं, एकदम कड़क हो जाएं। हैं? कभी कभी सॉफ्ट होना ही असल स्ट्रेंथ होती है जो जिंदगी को बैलेंस में रखती है मसलसल तरीके से। अगर हम सिर्फ अपनी जॉब तक लिमिटेड रहते हैं तो हम अपनी जिंदगी के बहुत से पहलू मिस कर रहे हैं। लर्निंग हमें हर रोल के लिए परफेक्ट करती है, याद रखिए। चाहे हम पेरेंट हों, लीडर हों या मेंटर, सीखना हर जगह काम आता है ना? तो रिस्पॉन्सिबल और अवेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये अवेयरनेस हमें गलत डिसीजन से बचाती है। जब हम सीखते रहते हैं तो हम हर सिचुएशन को लेसन के तौर पर देखते हैं, और ये अप्रोच जिंदगी को बोझ नहीं बल्कि एक जर्नी बनाती है जहां हर मोड़ पर कुछ नया मिलता है। तो दोस्तों जिंदगी खुद एक स्कूल है और हर दिन एक नया लेसन लाता है। बियॉन्ड वर्क सीखना हमें ये समझाता है कि लर्निंग सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं है। हर एक्सपीरियंस, हर मुलाकात, हर चैलेंज कुछ ना कुछ सिखाता है। सवाल सिर्फ ये है कि हम सीखने के लिए कितने रेडी हैं भाई। जो इंसान सवाल पूछता रहता है वो आगे बढ़ता रहता है। लर्निंग हमें क्यूरियोसिटी और ह्यूमिलिटी दोनों सिखाती है। जब हम ये मान लेते हैं कि हमें सब कुछ नहीं आता, तब ही हम सीखना शुरू करते हैं, और यही माइंडसेट ग्रोथ का दरवाजा खोलता है। कुछ लोग सीखने को सिर्फ प्रमोशन या सैलरी से जोड़ते हैं, लेकिन असल ग्रोथ इससे कहीं ज्यादा है। काम के अलावा सीखना इंसान को इवॉल्व करता है। आप हर साल अपना बेहतर वर्जन बन सकते हैं अगर आप सीखने का सिलसिला जारी रखें। तो साहब सीखना जो है वो सोच को बढ़ाता है, वसी करता है। जब सोच बदलती है तो डिसीजन भी बेहतर होते चले जाते हैं, और ये बेहतर डिसीजन ही लॉन्ग टर्म सक्सेस का रीजन बन सकते हैं। लर्निंग का फायदा सिर्फ आज नहीं बल्कि कल भी होगा। जो लोग आज सीखते हैं वो कल लीड कर सकते हैं। यही डिफरेंस है ग्रो करने वालों और रुक जाने वालों में। तो जनाब काम के अलावा सीखना फ्यूचर के लिए तैयारी होती है। फ्यूचर हमेशा प्रेडिक्टेबल नहीं होता, लेकिन प्रिपेयर्ड हो सकता है। लर्निंग सीखना हमें मेंटली मजबूत बनाता है ताकि हम अनसर्टेनिटी का सामना कर सकें। जो लोग सीखते रहते हैं वो डर के बजाय सॉल्यूशंस पर फोकस करते हैं, और यही वो आदतें हैं जो हर सिचुएशन में काम आती हैं, है ना? काम के अलावा ग्रो करना बहुत कुछ सिखाता है। जब आप अपनी स्किल्स पर भरोसा करते हैं तो आप किसी एक सोर्स पर डिपेंडेंट नहीं रहते। यही इंडिपेंडेंस ही असल फ्रीडम है। भाई सीखना आपको ये फ्रीडम देता है कि आप अपनी जिंदगी के डिसीजन खुद ले सकें। सीखने का एक खूबसूरत असर ये भी होता है कि आप दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन सकते हैं। जब लोग आपको सीखते हुए देखते हैं तो वो भी मोटिवेट होते हैं, है ना? तो काम के अलावा सीखना एक चेन रिएक्शन क्रिएट करता है। आपके बच्चे, आपके कलीग्स, आपके दोस्त सब आपसे कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो लर्निंग सिर्फ पर्सनल ग्रोथ नहीं बल्कि कलेक्टिव ग्रोथ का जरिया है। जो इंसान सीखने को अपनी आदत बना लेता है वो मुआशरे को भी पॉजिटिव बना देता है, और यही पॉजिटिव मुआशरे की खूबसूरती और हेल्दी सोसाइटी की बुनियाद होती है, जहां लोग एक दूसरे को ग्रो करते देखते हैं बिना किसी परेशानी के। अपनी पहचान को सिर्फ एक डेस्टिनेशन तक लिमिट करना अपने साथ नाइंसाफी है। काम वगैरह के अलावा जो भी चीज आप सीखते हैं वो हमें यह एहसास दिलाती है कि हम बहुत कुछ बन सकते हैं। हर इंसान के अंदर पोटेंशियल होता है भाई, लेकिन वो पोटेंशियल

पोटेंशियल, वो कुव्वत, वो ताकत सिर्फ सीखने से बाहर आती है. जब हम सीखते रहते हैं तो हम अपनी जो हुदूद हैं, जो लिमिट्स हैं, उनको तोड़ देते हैं. और ये प्रोसेस कभी इंस्टेंट नहीं होगा, लेकिन बहुत पावरफुल होगा जब भी होगा. तो लर्निंग पेशेंस और कंसिस्टेंसी सिखाती है. जो इंसान थोड़ा थोड़ा रोज सीखता है, वो धीरे धीरे बहुत आगे निकल जाता है. और यही साइलेंट ग्रोथ होती है जो बाद में लाउड रिजल्ट्स देती है. तो जनाब, हर दिन अपनी जिंदगी को थोड़ा सा बेहतर बनाने का मौका दीजिए. इस मौके के लिए परफेक्ट मॉर्निंग रूटीन या बहुत टाइम नहीं चाहिए, सिर्फ इंटेंशंस चाहिए. और इंटेंशन के आज मैं थोड़ा सा बेहतर सुनूंगा, थोड़ा सा पेशेंस रहूंगा और थोड़ा सा अपने लिए भी वक्त निकालूंगा. भाई, जब इंटेंशंस क्लियर हो तो एक्शंस नेचुरली फॉलो करते हैं. ग्रोथ प्रेशर से नहीं, इंटेंशन से आती है. जब हम खुद पर बहुत ज्यादा लोड डाल देते हैं तो प्रोसेस मुश्किल हो जाता है. लेकिन जब हम नरमी से खुद को गाइड करते हैं तो ये आदत बन जाती है. और आदत ही जिंदगी को खामोशी से बदलने की शुरुआत है. तो जनाब, बैलेंस और ग्रोथ का सबसे अहम रूल ये है कि खुद को वक्त वक्त पर पॉज देना सीखिए. हर वक्त बिजी रहना प्रोडक्टिविटी की निशानी नहीं होती. कभी कभी रुकना भी जरूरी होता है ताकि हम देखें कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं. भाई, पॉज लेना मतलब हार मान लेना नहीं होता, बल्कि पॉज लेने से सफाई क्लियरिटी मिलती है. जब आप रुक कर सांस लेते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, तो आप ज्यादा बेहतर डिसीजंस ले पाते हैं. जिंदगी सिर्फ स्पीड का नाम नहीं, समझ का भी नाम है. जिस दिन हम ये समझ लेते हैं, उस दिन जिंदगी थोड़ी हल्की और मैनेजेबल लगने लगती है. तो इस पॉज के बाद आने वाली मूवमेंट ज्यादा पर्पसफुल होती चली जाएगी. भाई, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां सब कुछ कंट्रोल से बाहर लगने लगता है. ऐसे में जो भी हमारे मकासिद हैं, जो भी हमारी ग्रोथ हैं, हमें संभाल सकती हैं. अगर आप जानते हैं कि आप किस चीज के लिए खड़े हैं, तो मुश्किल वक्त भी आपको पूरे तरीके से तोड़ नहीं पाएगा. अगर मकसद आपको याद दिलाता रहे कि ये फेज भी गुजर जाएगा, तो वो गुजर जाता है. जो ग्रोथ है आपको मजबूत बनाती है ताकि आप इस प्रोसेस से निकल पाए. हर मुश्किल एक सबक छोड़ देती है. जब हम उस सबक को समझ लेते हैं तो दर्द का बोझ हल्का हो जाता है. जिंदगी परफेक्ट नहीं होती, लेकिन मैनेजेबल बन सकती है. जब हर फेस को सीखने का मौका बना लिया जाए तो ये बहुत ही जबरदस्त चीज है. 360 डिग्री लिविंग का मतलब जिंदगी के हर हिस्से को वैल्यू देना होता है. काम, रिश्ते, सेहत और खुद की ग्रोथ सब अपनी जगह इंपॉर्टेंट है. जब हम सिर्फ एक पे फोकस करते हैं तो बाकी जो एरियाज हैं वो वीक हो जाते हैं. तो वीक एरियाज पर फिर स्ट्रेस पैदा करने लगते हैं. लेकिन जब हम थोड़ी सी अटेंशन सब जगह बांट देते हैं तो सिस्टम बैलेंस में रहता है. बैलेंस परफेक्ट नहीं होता भाई, कभी उतार हैं, कभी चढ़ाव हैं. लेकिन जब इंटेंशंस क्लियर हो तो इम्बैलेंस टेम्पररी होता है. यही वो अप्रोच है जो जिंदगी को ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाती है. और फ्लेक्सिबिलिटी ही आज के दौर में मेंटल हेल्थ और लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए सबसे जरूरी स्किल होती जा रही है, जो हमें सर्वाइव करना और ग्रो करना दोनों सिखाती है और इसमें मदद करती है. तो इस पूरे सफर में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है दोस्तों, कि खुद के साथ ऑनेस्ट रहिए, सच्चे रहिए. अगर आप थके हुए हैं तो इस बात को मान लेना कमजोरी नहीं है. अगर आप कंफ्यूज हैं तो सवाल करना बिल्कुल ठीक है. भाई, ग्रोथ तब स्टार्ट होती है जब हम प्रिटेंड करना छोड़ देते हैं. जब हम खुद से झूठ बोलना बंद कर देते हैं तो रियल सॉल्यूशंस मिलना शुरू हो जाते हैं. जिंदगी एक परफॉर्मेंस नहीं, एक एक्सपीरियंस है, याद रखिए. और इस एक्सपीरियंस को फील करना जरूरी होता है. जब हम हर चीज को सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए जीना शुरू कर देते हैं, तब बैलेंस नेचुरल हो जाता है. और इसी बैलेंस में वो सुकून होता है जो पैसे, टाइटल या वैलिडेशन से नहीं मिलता. तो दोस्तों, आज के इस सफर का नतीजा ये है कि जिंदगी सिर्फ 9 से 5 तक महदूद नहीं होनी चाहिए. जिंदगी का असली मजा तब आता है जब हम उसे हर एंगल से जीते हैं. करियर जरूरी है, लेकिन फैमिली, सेहत, पैशन और ग्रोथ भी उतनी ही अहमियत रखती है.
जब हम हर पहलू को थोड़ा सा वक्त देते हैं तो जिंदगी बैलेंस्ड और मैनेजेबल हो जाती है, और यही बैलेंस एक दिन में

0: से नहीं बनता, लेकिन हर दिन थोड़ी सी कोशिश से मुमकिन हो जाता है। उम्मीद है कि आज की बात आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। बस एक बात क्लियर है, हमारी पहचान सिर्फ हमारी नौकरी नहीं है, हमारी जो वर्थ है, हमारे जज्बात, हमारे एक्शंस और रिलेशनशिप से डिफाइन होते हैं। अपने आप से ये सवाल पूछिए, मैं अपनी जिंदगी को किस तरह मीनिंगफुल बना रहा हूँ। आप जितनी भी रोल्स प्ले करते हैं, घर पर, ऑफिस में, सोसाइटी में, सब इम्पोर्टेंट हैं। अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए, अपनी वैल्यू समझिए और अपनी ग्रोथ पर फोकस कीजिए। याद रखिए, आपकी ह्यूमन वर्थ किसी टाइटल से नहीं, आपकी इंसानियत से आती है। तो इसी के साथ आज के इस प्रोग्राम बियॉन्ड द जॉब टाइटल से प्रोग्राम साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी और मुझे सरवर मिर्जा को अगली मुलाकात तक के लिए इजाजत दीजिए। देखते और सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: पेरेंटिंग सिर्फ परवरिश नहीं, ये समझ और प्यार का सफर है। ये शो बात करता है मॉडर्न पेरेंटिंग, रोज के चैलेंजेस और उन फैमिली वैल्यूज की जो बच्चों को बेहतर इंसान बनाती है। सिंपल बातें, रियल एक्सपीरियंसेस और हर वालिदैन के लिए रहनुमाई। पेरेंटिंग को नए अंदाज से समझिए और सुनिए आरजे महविश के साथ पेरेंटिंग जर्नी में एवरी ट्यूजडे मॉर्निंग 10 to 11 AM ओनली ऑन FM 107।

0: आते हैं, क्या माइंडसेट्स होते हैं, क्या अप्रोच होती है,
1: ये जानना बहुत जरूरी है। इस शो में बात होगी लीडरशिप, सेल्फ डेवलपमेंट और डिसीजन मेकिंग पर, जो आपको एम्पावर करेगी। हर गेस्ट होगा एक पावर हाउस ऑफ मोटिवेशन और हर एपिसोड एक नई कहानी, एक नई इंस्पिरेशन। जरूर सुने शो पावर टॉक्स हर सैटरडे दोपहर 1 बजे से आरजे नाजिया के साथ, ओनली ऑन FM 107। पावर टॉक्स, हर लफ्ज में ताकत, हर बात में मोटिवेशन।
2: हे बच्चों, आर यू रेडी गेम्स, मस्ती, स्टोरीज और सुपर फन के लिए?
3: FM 107 पर आता है एक ऐसा शो जहां बोर होने का कोई चांस नहीं।
4: ये शो कौन सा है?
2: द सुपर किड शो।
3: Sunday to Thursday, 1:30 PM से 3 PM तक, only on FM 107, दिल से देसी। I love the Super Kid Show. Super.

0: एक अच्छी दोपहर वो होती है जहां अपनों का साथ हो और दिलों की बात हो।
1: दिलों की बात हो
0: तो अपने अपने कुर्सी की पेटियां बांध लें क्योंकि अब आफ्टरनून का माहौल बदलने वाला है।
1: बदलने वाला है।
0: पेश है आफ्टरनून एक्सप्रेस।
2: जहाँ इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट का होगा एक बेहतरीन संगम आरजे नाजिया और आरजे सरवर के साथ।
0: हर टॉपिक पर होगी खुलकर बात, हंसी मजाक, लाइव इंटरेक्शन
2: और बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स।
0: चाहे आप घर पर हो या अपनी कार में, बनाइए अपनी आफ्टरनून को यादगार।
2: तो ट्यून इन करें आफ्टरनून एक्सप्रेस संडे टू थर्सडे आरजे नाजिया और आरजे सरवर के साथ
0: सुबह 11 बजे से दोपहर के 1 बजे तक सिर्फ एफएम 107 पर। दिल से देसी।
3: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: दोस्तों, हमें अपनी और अपनों की हिफाजत को यकीनी बनाने और मुमकिना खतरात से बचने के लिए बंद जगहों पर लकड़ी को जलाने और कोयले को जलाने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि लकड़ी और कोयले को जलाने से जहरीली गैस यानी कार्बन मोनोऑक्साइड उसमें से खारिज होती है, जो आपकी सेहत के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन सकता है, और जो सफोकेशन और चोकिंग यानी दम घुटने या सांस लेने में परेशानी का सबब बनती है। FM 107 आपसे गुजारिश करता है कि आप अपना और अपनों की सेहत का खास ख्याल कीजिए।
0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil Se Desi.
1: FM 107 presents Your Health Matters. Your Health Matter with RJ Shruti.
2: कभी नोटिस किया है जब तक हेल्थ ठीक होती है ना हम उसे काफी लाइटली लेते हैं जैसे वो हमेशा साथ रहेगी और जैसे ही बॉडी या माइंड थोड़ा सिग्नल देता है तब अचानक याद आता है ओ सेहत भी एक चीज होती है सच तो ये है कि आपकी हेल्थ सही में काफी ज्यादा मैटर करती है जिसे हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं लेकिन इसको प्रायोरिटी बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है जब सब कुछ ऑलरेडी बिगड़ चुका होता है तब हम इसे प्रायोरिटी पे लाते हैं जैसे पहले शायद हम कभी अच्छा खाना नहीं खाएंगे जंक फूड की तरफ आकर्षित रहेंगे बट जैसे ही हमारी हेल्थ डिटोरिएट होने लगती है वैसे ही हम स्विच करते हैं टू डाइटिंग हेल्दी ईटिंग जो एक्चुअली एक लाइफस्टाइल होना चाहिए हम काम के लिए तो टाइम निकाल लेते हैं दूसरों के लिए अवेलेबल रहते हैं डेडलाइंस मीट कर लेते हैं पर जब बात खुद पे आती है तब हम कहते हैं ये पार्क की वॉक ना कल से स्टार्ट करूंगा जिम अगले महीने से पक्का करता हूं हेल्थ बाद में पर ये हेल्थ बाद में वाला टॉपिक नहीं है सेहत वो फाउंडेशन है जिसके ऊपर पूरी जिंदगी खड़ी होती है आप चाहे कितने भी सक्सेसफुल क्यों ना हो अगर रात को चैन की नींद आपको नहीं आ रही है गड़बड़ लग रही है पेट में दिल की धड़कनें बढ़ रही है दिमाग में अलग अलग तरह के थॉट्स आ रहे हैं आप भले कितने ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना दिखो लाइफ में कितने ही ज्यादा सक्सेसफुल क्यों ना रहो सक्सेस हमेशा अधूरी लगेगी अगर आपका बॉडी आपके साथ नहीं है तो और हेल्थ सिर्फ बीमारी का नाम नहीं होना नहीं होता है वो एक एहसास होता है जब सुबह उठकर आपको लगता है कि आज का दिन बढ़िया अच्छा जाने वाला है जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हेल्थ वो इत्मीनान है जब दिल और दिमाग दोनों थोड़ा सा साथ दे रहे हो दोनों थोड़ा सा साथ दे रहे हो रिसर्च ये भी कहती है कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेस पुअर स्लीप और सेल्फ निग्लेक्ट बॉडी को खामोशी से अफेक्ट करते हैं कोई लाउड अलार्म नहीं बजता बस धीरे धीरे एनर्जी कम होती जाती है पेशेंस घटते जाता है आप ज्यादा चिड़चिड़ा जाएंगे और आपको लगेगा कि ये तो काफी नॉर्मल है सभी तो ऐसे जीते हैं पर सच तो ये है कि ये एक नॉर्मल लाइफ नहीं ये एक एग्जॉस्टेड लाइफ है अपनी हेल्थ को इग्नोर करना डेडिकेशन ना होना तो थोड़ी मेहरबानी खुद पे कीजिए और अपने हेल्थ को प्रायोरिटी पे रखिए और जब आप अपने हेल्थ का ख्याल रखते हो ना तो आपके आसपास के जितने भी लोग हैं आपके पेरेंट्स हो आपका पार्टनर हो आपके फ्रेंड्स हो इनफैक्ट प्रोफेशनली भी लोग आपसे इंस्पायर होते हैं टू बी अ बेटर ह्यूमन इसलिए याद रखिए हेल्थ कोई एक्स्ट्रा ऑप्शन नहीं है हेल्थ कोई लग्जरी नहीं है हेल्थ वो बेस है जिसके बिना बाकी सब शेकी हो जाता है तो आज सिर्फ इतना याद रखिए काम इम्पोर्टेंट है लोग इम्पोर्टेंट है सपने इम्पोर्टेंट है लेकिन आपकी सेहत उन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जब आप ठीक होते हो तब भी जिंदगी ठीक लगती है और हाँ योर हेल्थ ट्रूली मैटर
0: योर हेल्थ मैटर योर हेल्थ मैटर ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी आप सुन रहे हैं FM 107
3: दिल से देसी

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्पोर्ट्स हाइलाइट्स में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर आफताब बलोच के बारे में, जो पाकिस्तान क्रिकेट का एक अहम नाम रहे। आफताब ने 1975 ओडीआई वर्ल्ड कप में खेलकर कौमी टीम की नुमाइंदगी की और अपनी बैटिंग और ऑलराउंड स्किल से लोगों का

दिल जीता। इनफैक्ट उन्होंने कई एक्सपर्ट्स को मुतासिर भी किया था। उन्होंने कराची के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट में बेहतरीन कारकर्दगी दी, जहां उनका 428 रन का रिकॉर्ड अब तक याद रखा जाता है। लेकिन दोस्तों 1970 की दिहाई में पाकिस्तान टीम वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बैटिंग टीम, और उस टीम में जगह बनाना थोड़ा मुश्किल था, और इसीलिए आफ्ताब बलोच के बारे में हम ज़्यादा जानते नहीं हैं। इसी वजह से इंटरनेशनल लेवल पर उनका करियर ज़्यादा लंबा ना हो सका, लेकिन जो असर उन्होंने छोड़ा वो आज भी क्रिकेट लवर्स के जहन में ताज़ा है। आफ्ताब बलोच की कहानी हमें याद दिलाती है कि टैलेंट और मेहनत हमेशा याद रखे जाते हैं, चाहे सफ़र कितना भी छोटा हो। उम्मीद है आपको आज का ये स्पोर्ट्स हाईलाइट पसंद आया होगा। अगली बार एक और स्पोर्ट्स स्टार के साथ हम हाजिर होते हैं। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: FM 107 पेश करते हैं प्रोग्राम
2: फ्रॉड अवेयरनेस।
3: आराम से आप कोई वेबसाइट विजिट कर रहे हैं और बाजू में एक पॉपअप आता है, लिखा है उसमें ऑनलाइन आईफोन 17 प्रो मैक्स सिर्फ 4000 रियाल में, लिमिटेड स्टॉक, लास्ट 10 मिनट्स। और इसमें आप क्लिक करते हैं और कर बैठते हैं अपनी जिंदगी की एक और गलती। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वेद और यह है फ्रॉड अवेयरनेस। इस तरह की किसी भी वेबसाइट में पेमेंट तो आप कर देते हैं, लेकिन डिलीवरी, सेलर और वेबसाइट, थोड़े दिनों के बाद सब कुछ गायब हो जाता है। फेक वेबसाइट्स, फेक इंस्टाग्राम पेजेस, फेक फेसबुक सेलर्स, सब एक ही चीज करते हैं, पैसे लो और गायब हो जाओ। आपकी पेमेंट हुई और ये लोग छूमंतर हो जाते हैं। दुनिया भर में लाखों लोग प्रोडक्ट के इंतजार में रह जाते हैं और अपने पैसे गवा बैठते हैं। कई दफा इस तरह के ईमेल्स भी आते हैं आपको, लिमिटेड पीरियड ऑफर, कोई लुभावनी या ट्रेंडिंग चीज का प्राइस बहुत कम करके दिखाया जाता है और आप उस पे क्लिक करते हैं एंड उस क्लिक के साथ ही आप काफी सारी मालूमात शेयर कर देते हैं। सो अवॉइड, तो ऐसी वेबसाइट्स को क्लिक करने से बचें। तो आखिरकार हम कैसे

0: से अपने आप को बचा सकते हैं। नंबर वन, सिर्फ ट्रस्टेड एप्स और वेबसाइट से ही शॉपिंग करें। COD यानी कैश ऑन डिलीवरी करें, जिससे सामान जब आएगा तभी आपको पैसे देना है। सामान नहीं आया, नो पैसे। अगर कहीं पे बहुत ही ज्यादा अच्छी डील दिख रही है तो एक बार ब्रेक लगाओ, सोचो समझो, ध्यान से देखो क्या ये सही वेबसाइट है, क्योंकि ऐसी चीजों में आदमी लालच में पड़ जाता है और बड़े बुजुर्गों ने कहा है, लालच बुरी बला है। रैंडम इंस्टा व्हाट्सएप सेलर से थोड़ा बच के रहो, तो कभी कभी जो सस्ता है वो आपके लिए महंगा पड़ सकता है। ऑनलाइन शॉपिंग करो लेकिन दिमाग के साथ।
1: सतर्क रहे, सावधान रहे। फ्रॉड अवेयरनेस
2: ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.
1: Values are values. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Main hoon Nazia aapke saath and welcome to the segment called Our Values. देखिए गर्मियां तो पूरी तरह से आ चुकी हैं और इस गर्मियों में मतलब गर्मियों में जो भी आप काम कर रहे हो तो आप कर ही रहे हैं लेकिन अपना ख्याल आप रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं। पहले तो आप मुझे ये बताइए, जरा सोचिए कि आज आपने दिन भर में अभी तक कितनी ग्लास पानी पी लिया।

बहुत कम पानी पीता हूँ या कम पिया है, तो आज अब आपको मेरे साथ जुड़ना है और सुनना है। इस समर्स में आपको 100% अपने आप को हाइड्रेटेड रखना ही रखना है, विद नो चॉइसेस लेफ्ट। देखिए, समर्स का जो मौसम है वो अपने साथ धूप लेकर आता है, गर्मी, पसीने का सिलसिला, अरे में हम बॉडी ज्यादा मेहनत करती है और अपना टेम्परेचर नॉर्मल रखने के लिए ज्यादा मशक्कत करती है। पसीना निकलना एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन इसके साथ बॉडी से पानी, जो बॉडी में जो सॉल्ट है वो भी निकल जाता है। इसीलिए गर्मियों में हाइड्रेशन यानी पानी का सही इस्तेमाल बहुत जरूरी है। अब हाइड्रेशन सिर्फ प्यास बुझाने का भी नाम नहीं है, बल्कि सेहत को बैलेंस में रखने का एक अहम तरीका है, या कह सकते हैं एक अच्छी आदत है। पहले तो ये जानते हैं कि हाइड्रेशन क्यों जरूरी है। देखो, हमारी बॉडी का तकरीबन 60% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल होता है। पानी हर फंक्शन में किरदार अदा करता है, चाहे डाइजेशन हो, चाहे ब्लड सर्कुलेशन हो, या फिर बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करना हो, सब कुछ। समर्स में अगर बॉडी को प्रॉपर पानी ना मिले तो इससे वीकनेस हो जाती है, थकान हो जाती है, चक्कर आते हैं, हेडेक होता है और कभी कभी डिहाइड्रेशन भी हो जाता है। दोस्तों, हाइड्रेशन जो है वो दिमाग के लिए भी बड़ा जरूरी है, पता है आपको? जब आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है तो कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाता है और मूड आपका खराब होता है। आप इरिटेटेड से फील करते हो, शायद सही डिसीजंस नहीं लेते, डिस्टर्ब हो जाते हैं, आपको वजह भी समझ में नहीं आ रही होती है। कहते हैं बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, गर्मी तो है ही, बट आपकी बॉडी आपसे कुछ मांग रही है, सिर्फ पानी। हाँ, कितना इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आप देखते हैं कि कई बार आपकी स्किन बहुत डल हो जाती है, या फिर आप जो है जो भी कुछ खा रहे हैं, आपका स्टमक जल्दी अपसेट हो रहा है, आप ठीक तरीके से डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप ये भी महसूस करते हैं कि आपको फ्लू हो रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही रही है, आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो रही है, तो उसका रीजन भी है कहीं ना कहीं डिहाइड्रेशन, यानी आपकी बॉडी उस तरह से हाइड्रेटेड नहीं है। इसीलिए हाइड्रेशन को सिर्फ एक पानी पीने की आदत ना समझे, बल्कि इसे अपने रूटीन का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा बना लीजिए। अब आप अपने आप को हाइड्रेटेड कैसे रख सकते हैं? देखिए, सबसे पहली और सिंपल आदत है कि रेगुलर पानी पीना, जिस पर हमने बात की। ज्यादातर लोग तब पानी पीते हैं जब प्यास लगती है, लेकिन प्यास लगना डिहाइड्रेशन का सबसे पहला सिग्नल होता है, पता है आपको? बेहतर क्या है? बेहतर ये है कि थोड़ा थोड़ा पानी दिन भर में पीते रहिए, चाहे आपको प्यास लगे या ना लगे, प्यास का वेट ना करें। सुबह उठकर एक ग्लास पानी पीना बहुत फायदेमंद होता है, ये बॉडी को एक्टिवेट करता है और ओवरनाइट डिहाइड्रेशन को दूर करता है। इसी तरह खाने से पहले और बाद पानी जो है, मतलब बीच में आप पानी, खाने के बीच में कह सकते हैं, पहले पीना बहुत अच्छा होता है। और समर्स में तो भाई बहुत सारे नेचुरल ड्रिंक्स भी हैं। अगर आप पानी पी पी के बोर हो रहे हैं, सो यू कैन गो फॉर नींबू पानी, कोकोनट वाटर है, सत्तू है, या फिर कोई और आपने होममेड ड्रिंक अगर आपके जहन में है, सो प्लीज गो फॉर दैट। इससे क्या होगा कि हाँ, एक चीज है कि इसमें बहुत ज्यादा शुगरी या बहुत ही वैसे ड्रिंक्स जो है उनसे आप परहेज कीजिए। कोशिश ये कीजिए कि जितने भी नेचुरल है या जो नेचुरल ड्रिंक्स हैं उन पर ही आप स्टिक करें। आपकी बॉडी को हाइड्रेटेड रखेंगे, आपकी एनर्जी क्रैश होने से बचाएंगे और आप भी बेहतर फील करेंगे। देखिए, हाइड्रेशन जो है वो सिर्फ पानी से नहीं होता, कई बार खाने से भी होता है। गर्मियों में पानी से भरपूर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी आते हैं जो आपकी सेहत के लिए बड़े फायदेमंद है, जैसे तरबूज हो गया, खरबूजा है, खीरा है, नारियल है, स्ट्रॉबेरी है, ऑरेंजेस है, ये सारे नेचुरली हाइड्रेट करते हैं। ये फूड विटामिन्स और मिनरल्स के साथ पानी भी प्रोवाइड करते हैं, जो ओवरऑल हेल्थ के लिए बेहतरीन है। ज्यादा नमक और स्पाइसी खानों से परहेज करना चाहिए, क्योंकि ये बॉडी से पानी ज्यादा निकाल देते हैं। हल्की, फ्रेश और सीजनल चीजें गर्मियों के लिए ज्यादा मुनासिब होती हैं। अब हाइड्रेशन को अपनी आदत कैसे बनाया जाए? देखिए, हाइड्रेशन को हैबिट बनाने के लिए कुछ छोटी स्ट्रेटजीज पर काम करना पड़ेगा। पहले अपने साथ हमेशा वाटर बॉटल कैरी करें, एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही इफेक्टिव तरीका है। फोन्स पर आजकल तो आराम से आप रिमाइंडर्स भी लगा सकते हो कि आपने कब पानी पिया, कब और पीना है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं।

0: सकते हैं, समथिंग व्हाटएवर यू फील लाइक। तो बस मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि समर्स जो है वो सिर्फ गर्मी का मौसम नहीं है बल्कि आपकी सेहत का इम्तिहान भी है, और यहाँ तो गर्मियाँ और भी ज्यादा होती है। तो अगर हम हाइड्रेशन को अपनी प्रायोरिटी बना लें तो हम थकान, इलनेस और डिहाइड्रेशन से बच सकते हैं। पानी पीना एक सिंपल सी आदत है लेकिन इसके फायदे बहुत गहरे और लंबी मुद्दत तक रहने वाले हैं। याद रखिए दोस्तों, हाइड्रेटेड रहना मतलब सेहतमंद रहना। गर्मियों में अपनी बॉडी का ख्याल रखें, पानी को अपना दोस्त बनाएं और सेहत के साथ हर दिन उसे जोड़ें। इससे आप हेल्दी रहेंगे, आपकी माइंड हेल्दी रहेगा और आपकी बॉडी भी फिट महसूस करेगी। चलिए इसी बात के साथ मुझे और शकीब अहमद हम दोनों को इजाजत दीजिए। टेक केयर, सुनते रहिए एफएम 107 दिल से देसी।
1: साइंस कैन बी फन? नाह, साइंस विल बी फन, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स होंगे तभी तो थ्योरीज फैक्ट्स बनेंगी, है ना? तो बस दुनिया बदलते देखिए हमारे साथ, क्योंकि हम करेंगे फन साइंस एक्सपेरिमेंट दोहा वाले कबीर के साथ, एक इजी एंड सेफ एनवायरनमेंट में। सुनिए और देखिए हमारे साथ ये खास शो जूनियर साइंटिस्ट, हर संडे दोपहर 3 से 4 बजे सिर्फ FM 107 पर। दिल से देखिए।

0: FM 107 से अब पेश खिदमत है तिलावत कलाम पाक। मतलूआ आयात का उर्दू तर्जुमा तिलावत के फौरन बाद पेश किया जाएगा।
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

क्या तू उनसे कुछ मांग रहा है? तेरे लिए तो तेरे रब का दिया ही बेहतर है और वो बेहतरीन राजक है। तू तो उनको सीधे रास्ते की तरफ बुला रहा है, मगर जो लोग आखिरत को नहीं मानते वो राह रास्त से हट कर चलना चाहते हैं। अगर हम इन पर रहम करें और वो तकलीफ जिसमें आजकल ये मुब्तला है दूर कर दें, तो ये अपनी सरकशी में बिल्कुल ही बहक जाएंगे। इनका हाल तो ये है कि हमने उन्हें तकलीफ में मुब्तला किया, फिर भी ये अपने रब के आगे न झुके और न आजजी इख्तियार करते हैं। अलबत्ता जब नौबत यहां तक पहुंच जाएगी कि हम इन पर सख्त अजाब का दरवाजा खोल दें, तो यकायक तुम देखोगे कि इस हालत में ये हर खैर से मायूस है। वो अल्लाह ही तो है जिसने तुम्हें सुनने और देखने की कुव्वतें दी और सोचने को दिल दिए, मगर तुम लोग कम ही शुक्रगुजार होते हो। वही है जिसने तुम्हें जमीन में फैलाया और उसी की तरफ तुम समेटे जाओगे। वही जिंदगी बख्शता है और वही मौत देता है। गर्दशे लालो नहार उसी के कब्जे कुदरत में है। क्या तुम्हारी समझ में ये बात नहीं आती? मगर ये लोग वही कुछ कहते हैं जो इनके पेश रो कह चुके हैं। ये कहते हैं, क्या जब हम मर कर मिट्टी हो जाएंगे और हड्डियों का पिंजर बनकर रह जाएंगे तो हमको फिर जिंदा करके उठाया जाएगा? हमने भी ये वादे बहुत सुने हैं और हमसे पहले हमारे बाप दादा भी सुनते रहे हैं। ये महज अफसाना हाय पारीना है।